मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 53 सेकेंड्स हुए हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि विदा ले चुकी है और सुबह अपनी हथेली में रोशनी का जादू लिए धरती पर नव चेतना का संचार कर रहा है। आकाश में गुलाबी सुनहरी रेखाएं इंद्रधनुषी छटा बिखेर कर प्रकृति को सुरम्य बना रही हैं। दोस्तों, नव चेतना के साथ नव ऊर्जा लिए हम भी आ चुके हैं स्टूडियो लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।

हमारे श्रोता जो रेडियो सेट को ऑन कर चुके हैं और दिनचर्या में लग गए हैं, उन्हें इंतजार होगा देश दुनिया की गतिविधियों को।

जानने का। तो चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, प्रातः के 6 बजने ही वाले हैं। सुन लेते हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सम्पन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान

0: पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 किलोहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। श्रोताओं, समय है कृषि चर्चा कार्यक्रम का। आज की कृषि चर्चा में आइए सुनते हैं खरीफ में भूमि और बीज शोधन विषय पर डॉक्टर चंद्र प्रकाश नारायण गौतम से की गई भेंट वार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ उत्पादन की तैयारी में हैं, जहां खरीफ फसलों की बुआई या रोपाई करने जा रहे हैं, तो बीज शोधन, भूमि शोधन और पौ जड़ उपचार कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर CPN गौतम साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां खरीफ फसलों की बुआई या रोपाई करने जा रहे हैं किसान भाई बहन, तो खरीफ फसलों का बीज शोधन, भूमि शोधन और पौ जड़ उपचार कैसे करें?
3: बीज शोधन, भूमि शोधन और पौर जड़ उपचार के माध्यम से फसलों में लगने वाले जो भी हमारे हानिकारक रोग और कीटों के समस्या का समाधान किया जा सकता है। खेत में बोने से पहले भूमि की तैयारी करते हैं। उसी भूमि की तैयारी में अंतिम जुताई के दौरान हम कई प्रकार के हमारे जो जैविक रसायन हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ट्राइकोडर्मा हरिडिनियम है, स्यूडोमोनास है और बिवेरिया वैसियाना है,
2: मेटाराइजियम
3: है, तो इस प्रकार के हमारे बहुत सारे जो जैविक फफूद हैं, इनका प्रयोग हम भूमि शोधन के लिए करते हैं। और ये भूमि शोधन जो हमारे मुख्य रूप से जो मृदा जनित हमारे जो रोग होते हैं या भूमि में रहने वाले जो हमारे कीट होते हैं, उनके लिए हम भूमि शोधन का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें ट्राइकोडर्मा की, तो ट्राइकोडर्मा द्वारा 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को 20 से 25 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके रख देते हैं और छायेदार स्थान में रखने के बाद में हल्का पानी का छींटा लगाते हैं और 8 से 10 दिन बाद उस गोबर के ढेर को खेत की अंतिम जुताई के दौरान मिट्टी में मिला देते हैं,
2: पूरे खेत में
3: बिखेर देते हैं, फिर उसके बाद में हम जुताई कर देते हैं।
2: तो जैसे आपने ट्राइकोडर्मा की बात की, उसी तरह बवेरिया बेसियाना है, मेटाराइजियम है या स्यूडोमोनास है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं?
3: बिल्कुल कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैटिसिलियम क्लाइडोस्पोरियम हमारा एक सूक्ष्म जीव है जो बहुत ही लाभदायक है और इसका प्रयोग मुख्य रूप से अगर हम फसलों में करते हैं तो खासकर जो हमारा जो रूट नॉट निमेटोड जो सब्जियों में लगता है या अन्य फसलों में जो लगता है,
2: सूत्रकृमि
3: के लिए भी ये बहुत ही एक रामबाण जो हमारा जैविक फफूद है। इसका प्रयोग जो है कि 2 किलोग्राम 20 से 25 किलोग्राम गोबर में मिला करके और बिल्कुल ट्राइकोडर्मा की तरह जैसे उपयोग में लाते हैं, वैसे ही अगर हम कर दें तो हमारे सब्जी की फसलों में जो निमेटोड की समस्या का समाधान हो सकता है।
2: जहां दीमक की समस्या है या भूमिगत कीटों की, तो वहां बिवेरिया बैसियाना भी फायदेमंद होगा डॉक्टर?
3: हाँ जी बिल्कुल, बिवेरिया बैसियाना बाजार में उपलब्ध है और राजकीय कृषि बीज भंडार पे भी उपलब्ध होता है, सरकार इसे सब्सिडी देती है, तो इसको जरूर किसान भाई यूज करें और ट्राइकोडर्मा का तो प्रयोग किसान भाइयों को जरूर करना चाहिए।
2: कहीं कहीं कुछ रोग दोख इस तरह के हैं या हानिकारक कीट हैं जहां रासायनिक बीज शोधन भी जरूरी है?
3: जी, रासायनिक बीज शोधन भी बहुत जरूरी है। इसके लिए अगर हम आजकल खरीफ फसलों की अगर हम बात करें तो धान में जो मुख्य रूप से आपने देखा होगा कि धान में जो सीथ ब्लाइट नामक जिसको हम बोलते हैं पर्ण छंद नामक बीमारी आती है, तना विगलन नामक बीमारी आती है, इसके अलावा झुलसा नामक बीमारी आती है, इसके लिए कार्बेंडाजिम 50% WP की दवा 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के अनुसार अगर हम बीज का शोधन करते हैं तो धान में लगने वाले जो विभिन्न रोग हमने जो बताया है उससे इसका समाधान हो सकता है।
2: डॉक्टर साहब, कहीं कहीं जीवाणु झुलसा रोग की भी समस्या आती है, तो उसके लिए इस समय बीज शोधन धान में?
3: धान के लिए जहाँ जहाँ जीवाणु झुलसा जिसको हम बैक्टीरियल लीव ब्लाइट बोलते हैं, इसके लिए भी हम इसमें कार्बेंडाजिम हमारा 50% WP जो 40 ग्राम लेते हैं और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 7.5 ग्राम लेते हैं, इनको हम 40 लीटर पानी में घोल बना करके और 1 एकड़ में लगभग 20 से 25 किलोग्राम धान का बीज लगता है, उसमें पूरे दवा को घोल में

0: मिला करके और धान के बीज को उसी में भिगो देते हैं और लगभग 10 से 12 घंटे तक भिगो कर रखने के बाद में पुनः उसको छान करके अलग कर देते हैं और अंकुरण आने पे धान की नर्सरी डाल देते हैं। तो इस प्रकार से धान में लगने वाले समस्त प्रकार के जो हमारे रोग हैं उनका समाधान हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 8858 42 30 73, 8858 42 30 73। एक तीर से कई शिकार जिसको कहते बीज उपचार, और ट्राई करो काहे को डरना इसको कहते ट्राइकोडर्मा।
1: डॉक्टर CPN गौतम साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ फसलों में बीज शोधन, भूमि शोधन और पौध जड़ उपचार कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ये आकाशवाणी लखनऊ है और आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो गलती पर पश्चाताप करके स्वयं को सुधार ले वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। आइए सुनते हैं आज का सुविचार पश्चाताप। वाचन स्वर सत्यानंद वर्मा का है।
3: कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य ही वो प्राणी है जो कर्म करने के पूर्व विचार कर सकता है। यद्यपि विचार के बिना कर्म असंभव है, किंतु मनुष्य का विचार विवेकपूर्ण होता है। पशु भी कर्म करते हैं, किंतु उनके विचार में विवेक नहीं होता। अतः पशुओं में कर्म के पश्चात पश्चाताप नहीं हो सकता। मनुष्य विवेकपूर्ण विचार करके कर्म करता है, किंतु यदि उसके किसी कर्म का दुष्परिणाम होता है तो मनुष्य उसे समझ सकता है, अनुभव कर सकता है। इस अनुभव से ही पश्चाताप उत्पन्न होता है। पश्चाताप मनुष्यता के बहुत से गुणों में से एक गुण है, जिससे मनुष्य अपने द्वारा की गई त्रुटियों का सुधार कर सकता है। भूलवश की गई त्रुटियों का यदि मनुष्य पश्चाताप करता है तो व्यवहारिक रूप में ये परिलक्षित होता है कि पश्चाताप करने से की गई त्रुटि की पुनरावृत्ति नहीं होती। अर्थात पश्चाताप के पश्चात उस विशिष्ट कार्य की त्रुटि से वो मुक्त हो जाता है। अनुभव के अभाव में जिस त्रुटि का वो पश्चाताप कर लेता है, उस त्रुटि से बचने का अभ्यास उसे जीवन पर्यंत बना रहता है। पश्चाताप के पश्चात त्रुटि क्षमा योग्य हो सकती है। अतः यदि उस त्रुटि के फलस्वरूप हुई हानि के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा क्षमादान दिया जाता है तो ये क्षमा उस दोषी व्यक्ति के आचरण को और अधिक शुद्ध एवं अनुकरणीय बनाने में सहायक होता है। यदि किसी कार्य निष्पादन में जानबूझकर कोई त्रुटि की जाती है तो मनुष्य को पश्चाताप करने का अवसर नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि की गई त्रुटि का विपरीत फल उसे पूर्व में ही ज्ञात होता है। उस विपरीत फल के दोष से बचने का विचार भी वो पहले से कर चुका होता है। अतः पश्चाताप का भाव उसके मस्तिष्क में आता ही नहीं। किंतु यदि किसी कार्य के निष्पादन में जानबूझकर की गई त्रुटि का परिणाम सोचे हुए परिणाम से भी अधिक भयंकर होता है, जिसकी कल्पना भी नहीं की गई होती है, तब ऐसी परिस्थिति में पश्चाताप का भाव आ सकता है। इस परिस्थिति में यदि पश्चाताप किया जाए और सक्षम अधिकारी द्वारा न्यायोचित दंड उस मात्रा में प्राप्त हो जितने अपराध का उसने पूर्व में ही विचार किया हो, तो पश्चाताप व्यक्ति के आचरण के शुद्धिकरण में सहायक हो जाता है। मनुष्य के निरंतर संपर्क में रहने वाले पशुओं में भी पश्चाताप के भाव देखे जाते हैं। भावावेश, भय अथवा क्रोधवश पालतू पशु द्वारा की गई हानि के पश्चात उसके द्वारा प्रेम प्रदर्शन करना पश्चाताप ही तो है, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। पश्चाताप वो अग्नि है जिसमें जल कर दोषी व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका आचरण तपे हुए स्वर्ण के समान और अधिक दैदीप्यमान हो जाता है। मनुष्य का संग जब पशुओं को पश्चाताप के गुण से युक्त कर सकता है तो स्वयं मनुष्य इस सद्गुण से वंचित

0: कैसे रह सकता है।
1: पश्चाताप। अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार, वाचन स्वर सत्यानंद वर्मा का था। पश्चाताप करने का एक और माध्यम है ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की पूजा। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

प्रभु प्रभु भक्ति में ही शक्ति है और प्रभु सुमिरन में ही अनंत साहस है। निष्ठा विनम्रता से की गई सच्ची पूजा ही भक्त को ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कराने में सहायक होती है। तो अपने जीवन में ऊर्जा, उत्साह और निर्भयता का संचार करने के लिए आइए प्रभु का सुमिरन करें।

नाम है। माँ की गोद में सारा जग सुकून पाता है, माँ की छाँव में ईश्वर सदैव प्राप्त होते हैं और भक्त शरण में रहते हैं। कहते हैं ममता की छाँव है माँ, दुआओं का गांव है माँ, जितना कहें उतना कम है, अनमोल वरदान है माँ।

कहते हैं कि भक्ति एक ऐसा सफर है जिसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ईश्वर की पूजा जो प्रेरणा का स्रोत भी है, अंधेरों में लड़ना सिखाती है और उजालों में जीना बताती है। हिम्मत के हर गीत में, हर सुर में प्रभु सुमिरन साथ रहता है।

राम के भक्त रुद्र के अवतार, अंजनी के लाल और दुर्जनों के काल हैं। साधु जन के साथ हैं और निर्बलों की आस हैं, सद्गुणों का मान, ये हैं वीर हनुमान। आइए करें इनका गुणगान।

747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और प्रोग्राम चल रहा है नमस्ते लखनऊ, जिसे आप सुन रहे हैं वैशाली के साथ। और अब आइए करते हैं प्रभु श्री राम की भक्ति, सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनेंगे भाग 202 में तीर्थराज प्रयाग में भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचकर भरत के पुलकित होने तथा प्रभु श्री राम लक्ष्मण और माता सीता के प्रति चिंतित होने का प्रसंग।

तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचकर भरत पुलकित हैं। हृदय में श्री राम सीता और लक्ष्मण के लिए उमड़ते स्नेह से आंखों में आंसू उमड़ आए हैं। निर्दोष भाव से वे भरद्वाज जी के सम्मुख अपने उद्गार प्रकट करते हैं।

उन्हें अपनी माता कैकेयी की करनी का कोई विषाद नहीं है और न ही पिता के निधन का शोक है, क्योंकि दिवंगत महाराज का पुण्य और सुयश समस्त जगत में विदित है। जिन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र पाए और पुत्र विरह में नाशवान शरीर त्याग दिया, ऐसी पुण्यात्मा के लिए शोक करना तो उसकी मर्यादा के प्रति अपमान होगा। भरत को सोच इस बात का है कि राम लक्ष्मण तथा सीता मुनियों का वेश धारण कर वन वन फिर रहे हैं, वलकल वस्त्र पहनते हैं, कंदमूल का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछा कर सोते हैं और वृक्षों की छाया में सर्दी गर्मी वर्षा और हवा के झोंके सहते हैं। इसी दुख से भरत की छाती फटती है, न भूख लगती है न नींद आती है। इस दुख का निदान उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। निदान मात्र एक है, श्री राम को अयोध्या लौटा लाना।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे ए हरिहरन, आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक सतीश भाटिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।

आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। इस समय आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। KHz पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। इदानीं वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस

0: आज की स्वास्थ्य चर्चा में नीना सोनकर आप सभी को जानकारी देंगी जीवन की डोर आपके रक्त की एक बूंद विषय पर।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ मानवता का प्रतीक है बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच एक सेतु भी है और वो है रक्तदान। 14 जून हर साल विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन समर्पित है उन लाखों लोगों को जो स्वेच्छा से निस्वार्थ भाव से रक्तदान करते हैं और दूसरों के जीवन को बचाने का माध्यम बनते हैं। ये दिन हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि रक्त अब तक ऐसा कोई कृत्रिम विकल्प नहीं जिसके बिना जीवन बचाया जा सके। रक्तदान एक सेवा है, लेकिन ये सेवा मात्र एक कार्य नहीं, ये विश्वास, साहस और सहानुभूति का प्रतीक है। जब कोई अस्पताल में जरूरतमंद मरीज रक्त की कमी से जूझ रहा होता है तो आपके रक्त की एक बूंद उसके लिए नई सांस बन सकती है। सड़क दुर्घटना हो, प्रसव के दौरान रक्तस्राव हो, थैलेसीमिया, कैंसर या कोई जटिल ऑपरेशन, ये सभी ऐसी स्थितियां हैं जहां रक्त की आवश्यकता होती है और यदि समय पर रक्त ना मिले तो हालात गंभीर हो सकते हैं। भारत जैसे देश में जहां हर साल लाखों यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है वहां स्वैच्छिक रक्तदाताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सिर्फ परिवार या मित्र ही हमेशा उपलब्ध हों ये जरूरी तो नहीं। इसीलिए जागरूक समाज की भूमिका बनती है कि वो रक्तदान को केवल जरूरत पड़ने पर नहीं बल्कि एक नियमित, नैतिक और स्वास्थ्यदायी अभ्यास की तरह अपनाए। रक्तदान से जुड़ी कुछ भ्रांतियां आज भी लोगों को रोकती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि रक्त देने से शरीर कमजोर हो जाता है या स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, जबकि वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए रक्तदान न केवल सुरक्षित है बल्कि लाभदायक भी है। ये शरीर में नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करता है, रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है और कहीं न कहीं मानसिक सुकून भी देता है कि हमने किसी की जिंदगी में रोशनी की लौ जलाने का काम किया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो पुरुष हर 3 महीने और महिलाएं हर 4 महीने में रक्तदान कर सकती हैं। इससे शरीर को कोई भी हानि नहीं होती बल्कि नियमित रक्त जांच, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन और अन्य परीक्षण के जरिए अपने स्वास्थ्य का आकलन भी हो जाता है और रक्तदान के तुरंत बाद थोड़ा आराम, तरल पदार्थ और पोषक आहार लेने से शरीर सामान्य रूप से कार्य करता रहता है। आज जब हम शहरों से लेकर गांव तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार देख रहे हैं तब ये और जरूरी हो जाता है कि हर क्षेत्र में पर्याप्त रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए मोबाइल ब्लड डोनेशन वैन, रक्तदान शिविर और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है और ये तभी संभव है जब हम सभी इसमें सहभागी बने, क्योंकि रक्त ना जाति देखता है, ना धर्म देखता है और ना ही उम्र, ये बस बहता है और जीवन देता है। आज का ये दिन उन गुमनाम नायकों को सलाम करने का भी अवसर है जो हर साल नियमित रक्तदान करते हैं बिना किसी प्रचार प्रसार के। ऐसे लोग समाज में एक अदृश्य शक्ति बनते हैं जिनकी वजह से अस्पतालों में नन्हे बच्चों की जान बचती है, माताओं का जीवन सुरक्षित होता है और बुजुर्गों को राहत मिलती है। ये सिर्फ रक्त नहीं, विश्वास, सहानुभूति और मानवता का संचार है। श्रोताओं हम सभी के पास समय समय पर अवसर आता है जब हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। रक्तदान ऐसा ही एक अवसर है जो छोटा लगता है लेकिन उसका असर बहुत दूरगामी होता है। आइए आज विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर हम ये प्रण लें कि हम भी रक्तदान करेंगे, न सिर्फ जरूरत पड़ने पर बल्कि एक नियमित आदत के रूप में। अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों को भी प्रोत्साहित करेंगे और इस परोपकार की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक यूनिट रक्त किसी की जान बचा सकता है, किसी माँ को उसके बच्चे से मिलने का मौका दे सकती है, किसी युवा को फिर से सपने देखने की शक्ति दे सकती है। ये केवल शारीरिक देन नहीं बल्कि दिल से दिल का रिश्ता है। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए और जीवन देने वाले इस सुंदर कार्य रक्तदान के लिए अपने दिल और बाजू को खोलिए। नीना सोनकर को दीजिए।

जीवन की डोर आपके रक्त की एक बूंद। अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में इस विषय पर जानकारी दे रही थी नीना सोनकर।

श्रोताओं, अब समय है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आज शाम 6:30 से आप सुनेंगे आईसीसी विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत एजबेस्टन बर्मिंघम में भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक। न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण का प्रसारण समय होगा सुबह 10:10। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

सुबह 9:15 पर सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल में रक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों से आत्मनिर्भरता और बढ़ती सैन्य शक्ति पर चर्चा करेंगे शैलेंद्र शर्मा। उर्दू कार्यक्रम के तहत सुबह 9:30 पर समात फरमाइएगा मोहम्मद उमैर से वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर और गर्मी में रखे हिफाजत इस विषय पर चर्चा। इसके अलावा कलाम शायर में आप सुनेंगे मोहम्मद कलीम फतेहपुरी और फारूख आदिल से उनका ताज़ा कलाम। हेलो डॉक्टर फोन इन कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 3:30 पर। आज इस कार्यक्रम में विषय है अपेंडिक्स लक्षण उपचार और इससे जुड़ी भ्रांतियां। विशेषज्ञ होंगे प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार भट्ट, संचालन सुभाष खन्ना का होगा। संस्कृत कार्यक्रम में दिन में 3:15 पर सुनना ना भूलें आचार्य विनोद कुमार मिश्रा, प्राचार्य शिव प्रसाद संस्कृत विश्वविद्यालय छितवापुर लखनऊ से की वार्ता न मातुः पर दैवतम। सुबह 7:31 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा उस्ताद अली अहमद हुसैन का राग तोड़ी में शहनाई वादन। नन्हे मुन्ने अपना पसंदीदा कार्यक्रम बालमंच सुनेंगे दोपहर 12:00। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर नीतू बत्रा की वार्ता का विषय होगा बुजुर्ग हमारे घर की शान, हम सब करें इनका सम्मान। हेल्थ टिप्स में अनुपमा मिश्रा बताएंगी योग के बाल सुलभ आसन, रखें स्वस्थ तन मन। इसके अलावा बच्चे सुनेंगे ममता उपाध्याय की लिखी लघु नाटिका दादी की सीख। दिन में 1:15 पर आज इतवार है मैं सुनना ना भूले नीलम राकेश की लिखी झलकी मच्छर का चक्कर, प्रस्तुत करता होंगे अतिश कुमार श्रीवास्तव। दिन में 1:30 पर अक्षवट कार्यक्रम में सुनिएगा चार दीवारी का सन्नाटा, दुर्व्यवहार के वो जख्म जो दिखाई नहीं देते विषय पर डॉक्टर अमित सक्सेना समाजशास्त्री एवं अध्यक्ष वृद्धाश्रम से की गई भेंटवार्ता, भेंट करता होंगी डॉक्टर अलका चौधरी। खरीफ फसलों में स्मार्ट उर्वरक प्रयोग, इस विषय पर सुनिएगा यतेंद्र कुमार से की गई भेंटवार्ता विज्ञान और किसान कार्यक्रम में। दिन में 2:30 पर भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। दिव्यांगों के लिए संतुलित आहार, ये विषय है डॉक्टर पूनम तिवारी से की गई भेंटवार्ता का, सुनिएगा संकल्प कार्यक्रम में 4:00। भेंट करता होंगे देवाशीष। आज शाम 5:10 पर युवा तरंग कार्यक्रम में हमारे युवा साथी सुनेंगे आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर नीरज कुमार गुप्ता से की गई भेंटवार्ता, संक्रामक रोग कारण लक्षण और निदान, इस विषय पर आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर सोशल सिग्नल क्रम में ओबी आधारित जानकारी का विषय होगा डिजिटल आदतें और सामाजिक व्यवहार, स्क्रीन आदतें और सामाजिक व्यवहार। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम जिन्हें आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ से 747 kHz पर। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में कार्यक्रम विविधा लेकर।

नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल है, एक मरीज ऑपरेशन टेबल पर है और डॉक्टर को इंतजार है एक यूनिट रक्त का। हर दो सेकंड में किसी न किसी को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। जब किसी इंसान की जिंदगी मौत से लड़ रही होती है तो रक्त उसके लिए उम्मीद बन जाता है। क्या आप जानते हैं, एक यूनिट रक्त से 3 लोगों की मदद की जा सकती है, क्योंकि रक्त के विभिन्न घटक जैसे प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स अलग अलग मरीजों के दिए जा सकते हैं। तो आज की विविधा में बात विश्व रक्तदाता दिवस की, जो न केवल किसी की जान बचाता है बल्कि इंसान के अंदर मानवता की सच्ची भावना को भी जीवित रखता है। जीवन की धारा रक्तदाता। रक्तदाता के शरीर में बहने वाला लाल रंग का अमृत जब किसी जरूरतमंद की नसों में पहुंचता है तो उसके चेहरे पर फिर से उम्मीद की किरण लौट आती है। यही कारण है कि रक्तदान को महादान कहा गया है। दोस्तों, हम रोज अपने जीवन में कई छोटी बड़ी मदद करते हैं। दुर्घटनाओं, ऑपरेशन, प्रसव, कैंसर, थैलेसीमिया और अन्य गंभीर बीमारियों के कारण हमारे देश में हर वर्ष लाखों लोगों को रक्त की जरूरत होती है। विशेषकर थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को हर महीने रक्त चढ़ाना पड़ता है और ऐसे में अगर समय पर रक्त न मिले तो स्थिति गंभीर हो सकती है। इसीलिए WHO द्वारा साल 2004 में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाने की शुरुआत की गई, क्योंकि 14 जून को महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइनर का जन्म हुआ था, जिन्होंने 1901 में ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी। इसी खोज ने सुरक्षित रक्त चढ़ाने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक आधार दिया। इसी योगदान के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। आज जब हम ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव या AB पॉजिटिव जैसे ब्लड ग्रुप की बात करते हैं दोस्तों, तो उसके पीछे वही महान खोज है जिसने करोड़ों लोगों की जान बचाने का रास्ता खोला। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उन लोगों को धन्यवाद कहने का दिन है जो बिना किसी स्वार्थ के अपना रक्त देकर किसी अनजान व्यक्ति को जीवन दान देते हैं। वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स, यानी मानवता की एक बूंद रक्त दान करें, जीवन बचाएं। ये थीम है साल 2026 की, जो हमें याद दिलाती है कि रक्तदान सिर्फ मेडिकल प्रक्रिया नहीं है, ये रक्तदाता की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। एक बूंद रक्त में होती है दया, संवेदना, जिम्मेदारी और किसी बीमार व्यक्ति के लिए जीने की नई संभावनाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी रक्तदान किया है? अगर हाँ तो आप हीरो हैं सच में, और अगर नहीं तो डरिए मत, रक्तदाता बनिए, रक्तदान करिए। हाँ, पहली बार थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन जो खुशी महसूस होती है ना, वो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। रक्तदान केवल सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारी मानवता की मिसाल है, और इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। क्या आप जानते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने में सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है। रक्तदान की प्रक्रिया केवल 10 से 15 मिनट की होती है, लेकिन इसका प्रभाव किसी के पूरे जीवन पर पड़ता है। हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है और रक्तदान के समय लगभग 350 से 450 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी,

परंतु दोस्तों ये एक भ्रम है, बल्कि नियमित रक्तदान से शरीर में नया रक्त बनने की प्रक्रिया सक्रिय होती है, जिससे स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। रक्तदान करने से पहले बस कुछ बातों का ध्यान रखें। अच्छी नींद लें, हल्का और पौष्टिक भोजन करें, खाली पेट रक्तदान न करें, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और अपनी हेल्थ हिस्ट्री ईमानदारी से बताएं। रक्तदान के बाद कुछ देर आराम करें, बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम तुरंत नहीं करें और अगर चक्कर या कमजोरी महसूस हो तो तुरंत मेडिकल स्टाफ को बताएं। दोस्तों, हम मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते हैं, गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, मस्जिद में दुआ मांगते हैं, चर्च में प्रार्थना करते हैं, लेकिन रक्तदान एक ऐसी सेवा है जहां आपकी दुआ किसी की नसों में बहने लगती है। विश्व रक्तदाता दिवस पर सैल्यूट है उन सभी रक्तदाताओं को जो बिना नाम, बिना पहचान और बिना किसी उम्मीद के किसी की जिंदगी बचाने आगे आते हैं। आपका एक यूनिट रक्त किसी आईसीयू में उम्मीद बन सकता है, किसी माँ की सुरक्षा, किसी बच्चे की मुस्कान और किसी परिवार की अधूरी खुशी को पूरा करता है। तो दिल से आभार हर उस रक्तदाता को जो मानवता की धड़कन बनकर दूसरों का जीवन बचाते हैं। आइए हम भी रक्तदान करें, रक्तदाता बनें और जीवन बचाएं। आज की विविधा में बस इतना ही। मिलेंगे इसके अगले अंक में अन्य विषय के साथ। कीजिए स्वीकार वैशाली का प्यार भरा नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकू नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की

0: 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा नए भारत के रूप में दुनिया में लोहा मनवा रहा हमारा देश। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात, वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश, कहा स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जिलों में हुए संवाद कार्यक्रम, प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज भारत नए भारत के रूप में दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी पीढ़ी नए भारत का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री कल आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपील की कि नए भारत के साथ नए उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ना होगा।
1: हमारा देश भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मना रहा है। 2014 के पहले का भारत कैसा भारत था, आप में से हर व्यक्ति जानता है। वह भारत जो अपनी पहचान के लिए तब मोहताज था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन हमारी पीढ़ी देख रही है।
0: मुख्यमंत्री ने कल ही गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यही नया भारत है, जो गरीबों का कल्याण करता है और सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देता है। उन्होंने क्षेत्र में बनी सड़क परियोजनाओं की प्रगति को लेकर कहा कि कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी।
1: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी। और प्रगति होगी, नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
0: कल सुबह मुख्यमंत्री वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। 2 दिवसीय अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान, कृषि, एमएसएमई, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय ज्ञान परंपरा पर विस्तार से अपने विचार रखे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान परिसर में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 200 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर व्यापक जन भागीदारी के साथ सामूहिक योग के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों पर आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कल अमरोहा में मंडलीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पेंशन, शादी अनुदान सहित अन्य योजनाओं की शिकायतों, लंबित प्रकरण, नए आवेदनों की स्थिति और विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन की जानकारी ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदेश के मंत्री संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वाराणसी में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से संवाद किया। गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा

0: सुशासन और जल कल्याण को शासन का मूल आधार बनाया। इसी क्रम में जनपद हापुड़ में प्रदेश के वन पर्यावरण मंत्री केपी मलिक ने पत्रकारों से वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव के जन कल्याण के कार्य किए हैं।
1: आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था, रोटी कपड़ा मकान, इनकी आम आदमी को जरूरत होती है, उस सारी व्यवस्था भारत सरकार उत्तर प्रदेश ने की है। और पक्षपात के पहले निष्पक्षता के साथ ही है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करने का काम किया।
0: वहीं डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि देश ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है।
2: प्रधानमंत्री का 12 साल का कार्यकाल रिफॉर्म का था, परफॉर्म का था, ट्रांसफॉर्म का था, और जिसका परिणाम है कि पिछले 12 सालों में भारत के 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे वो उससे ऊपर आए।
0: गाजीपुर में जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की एक रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आज आयोजित होने वाली राजकीय इंटर कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए व्यापक एवं विशेष व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों एवं अन्य यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकता पड़ने पर एग्जाम स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान कल असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमा राम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। दुर्घटनाग्रस्त विमान नियमित उड़ान पर था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमान हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं आज से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, नए भारत के रूप में दुनिया में लोहा मनवा रहा हमारा देश। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जिलों में हुए संवाद कार्यक्रम। प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: असली शिक्षा एक

असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।

0: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: मीडियम वेव तेज होती।
3: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का 747 किलो हर्ट्स पर। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून इन किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र, और प्रोग्राम चल रहा है नमस्ते लखनऊ, जिसे आप सुन रहे हैं वैशाली के साथ। और समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उस्ताद अली अहमद हुसैन और साथी का राग तोड़ी में शहनाई वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अली अहमद हुसैन और साथी का राग तोड़ी में शहनाई वादन। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आकाशवाणी लखनऊ से, जिसे संपन्न करने का वक्त हो चला है। तो दीजिए अनुमति वैशाली को नमस्कार। श्रोताओं बने रहिए 747 किलोहर्ट्स पर और सुनते रहिए आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। कुछ ही पलों में सुबह के 8 बजने वाले हैं, सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण

0: छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन

0: जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
3: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
4: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
5: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
2: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
6: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लाम रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधिविधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधिविधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंग

0: के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुँचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2-3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening.

0: स्वामी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और खवातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दो मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने दौरे के पहले मरहले के तहत फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। फ्रांस में अपने कयाम के दौरान वो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों के साथ मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे और आइंदा G7 समिट से कबल वो सदर मैखों के साथ बाहमी तआवुन के अहम शोबों और आलमी उमूर पर दोतरफा बातचीत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम स्लोवाकिया का दौरा करेंगे जहाँ वो स्लोवाक क्यादत के साथ तो तरफा मीटिंगें करेंगे। कल मारूफ होटल नीक्रेस्को में मुनक्किदा एक कम्युनिटी इस्तकबालिया तकरीब में भारतीय बिरादरी की बड़ी तादाद ने वजीर आजम का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वजीर आजम मोदी ने भारतीय बिरादरी के अफराद से पुरजोश अंदाज में खुशगवार मुलाकात की और रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों से महजूज हुए। इन प्रोग्रामों में भारतीय क्लासिकी रक्स की मुख्तलिफ शक्लें जिनमें कथक ओडिसी और भरतनाट्यम शामिल हैं पेश की गईं। ये रक्स फ्रांसीसी और इतालवी फनकारों ने पेश किए। ये पुरजोश इस्तकबालिया भारत और फ्रांस के दरमियान मजबूत सकाफती और अवामी रवाबित की अक्कासी करता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के सदर इमानुअल मैखों के साथ नीस में पैलेस देस एक्सपोजिशन में भारत इनोवेट्स प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में भारत के स्टार्टअप और इख्तराई इको निज़ाम को उजागर किया जाएगा जहां तकरीबन 120 स्टार्टअप्स आलमी सरमायाकारों और टेक्नोलॉजी कायदीन के सामने अपनी इख्तराआत पेश करेंगे। तकरीब के बाद वजीर आजम मोदी और सदर मैखों विला कैरलोस में दो तरफा बातचीत करेंगे। यह इस साल भारत और फ्रांस के ताल्लुकात को खसूसी आलमी स्ट्रेटजिक शराकत दारी की सतह तक बढ़ाने के बाद पहली मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दिफा टेक्नोलॉजी तजारत और इख्तरा के शोबों में ताउन के अलावा अहम इलाकाई और आलमी हालात वाक़यात पर भी तबादले ख्याल किए जाने का इम्कान है। इसके बाद वजीर आजम अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत स्लोवाकिया के लिए रवाना हो जाएंगे। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान।
0: स्लोवाकिया में भारत की सफीर अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान इश्तराक और तआवुन के नए मौके फराहम करेगा और इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने में भी मुआविन साबित होगा। मोहतरमा अपूर्वा श्रीवास्तव स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में आकाशवाणी के नुमाइंदे के साथ गुफ्तगू कर रही थी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते फ्रांस में मुनक्किद होने वाली G7 समिट के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अमरीकी इंतजामिया के एक सीनियर अहदेदार के मुताबिक इन मुलाकातों में इक्तिसादी तरक्की सप्लाई चेन्स मसनूई जहानत सरमायाकारी में इश्तराक और आलमी सलामती से मुतालिक मुख्तलिफ चैलेंजों पर तबादला ख्याल मुतवक्के है। सदर ट्रंप बुध के रोज वजीर आजम मोदी के साथ एक दो तरफा मीटिंग करेंगे जिसके बाद वो एक जोहराने में शिरकत करेंगे। इस जोहराने में G7 मुल्कों के रहनुमा शराकतदार और टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव्स भी शरीक होंगे। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि उन्होंने एक ऐसे जदीद मसनूई हीटिंग निज़ाम को तैयार करने के लिए एटमी तवानाई के महकमे के साथ इश्तराक किया है जो चांद की सतह पर उतरने वाले खलाई जहाज को चांद के बेहद ठंडे मौसम से महफूज रख सके। बेंगलुरु में CSIR राइस कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए इसरो के सरबराह ने बताया कि शमसी तवानाई वाले चंद्रयान 3 मिशन का खलाई जहाज विक्रम चांद पर महज 14 दिन ही काम कर पाया।

0: इसरो अब एटमी तवानाई के महकमे के साथ एक ऐसे खलाई जहाज को तैयार करने के लिए काम करेगा जो 200 दिन तक चांद की सतह पर काम कर सकेगा। पिछले 12 बरसों के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश कयादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों के तहत भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस अरसे के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बा इख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदामात किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम उन इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं जो मोदी सरकार ने शहरियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए किए हैं।
1: इस्लाहात के 12 साल, एतमाद के 12 साल बन चुके हैं। चाहे वो GST हो, फेसलेस टैक्स का निज़ाम हो या डिजिटल इंडिया, हर पहल ने शहरियों को ये एहसास दिलाया है कि वो मुल्क की तामीर में शरीक हैं। मरकजी बजट 2025-26 में आमदनी टैक्स स्लैब्स और टैक्स की शरहों में जामे तब्दीलियां की गई हैं ताकि तमाम टैक्स दहिंदगान को फ़ायदा पहुँच सके। नए टैक्स निज़ाम के तहत सालाना 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स वाजिबुल अदा नहीं है। 88% टैक्स दहिंदगान को आमदनी 12 लाख रुपए तक है और वो बराह रास फवायद हासिल कर रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद माली साल 2022 में 6,90,00,000 से बढ़कर माली साल 2025 में 9,20,00,000 हो गई है। अगले सिलसिले के GST निज़ाम ने टैक्स के अमल को मजीद आसान बना दिया है और शहरियों के रहन सहन को सहल बनाया है। टैक्स का ढांचा अब बुनियादी तौर पर 5% और 18% के स्लैब्स पर मुश्तमिल है, जिसके नतीजे में टैक्स दहिंदगान की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। इस साल अप्रैल में GST की वसूली 2.42 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो अब तक की आला तरीन सतह है। आकाशवाणी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स समीर दीक्षित ने कहा कि GST इस्लाहात मुल्क के सबसे अहम पॉलिसी फैसलों में से एक है। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया है और इस टेक्नोलॉजी को सियासत और पॉलिसी साजी दोनों शो में मुअसर तरीके से इस्तेमाल किया है। 5G खिदमात सिर्फ 22 महीने में मुल्क के 99.6% अजला तक पहुंच चुकी हैं। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97.07% कमी आई है, जिससे इंटरनेट ज़्यादा सस्ता और काबिल रसाई हो गया है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज शिमाल मशरकी भारत के मुख्तलिफ इलाकों अंडमान और निकोबार जजायर, केरला, माही, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान जनूब मगरबी मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के मजीद कुछ इलाकों और जनूबी छत्तीसगढ़ के बाज हिस्सों में पहुंचने के लिए हालात साजगार हैं। मुवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में महकमाए डाक की जानिब से ड्रोन पर मबनी मेल ट्रांसमिशन खिदमात के आगाज का ऐलान किया है। मस्कूरा खिदमात मंडी के सदर पोस्ट दफ्तर और रिहारधर शाख के पोस्ट दफ्तर के बीच शुरू की गई हैं। इस पहल का आगाज मरकजी वजीर के ग्रामीण डाक सेवकों और डाक असिस्टेंटों के साथ तबादला ख्याल के दौरान मौसूल हुए फीडबैक के तनाजुर में किया गया है। इस मीटिंग के दौरान दूरदराज के इलाकों में ज्यादा तेज और मुअस्सर कनेक्टिविटी की जरूरत को उजागर किया गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए आज एक मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे और इसके फौरन बाद अहम गुजरगाह आबनाए हुरमुस को तमाम ममालिक के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने ये ऐलान एक सोशल मीडिया पोस्ट में किया है। इसके साथ ही ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ये मुआहिदा तवक्कुआत के मुताबिक पायाए तकमील तक ना पहुंच सका तो मजीद हमलों का ऑप्शन भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि तवक्को है कि ये अमल कामयाब होगा, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो उनके पास आखिरी मुतबादिल भी मौजूद है। अमरीकी सदर ने मुजव्वजा मुआहिदे का मुवाजना साल 2015 के ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से भी किया। ईरानी हुकाम ने ईरान के मरहूम रहबरे आला आयतुल्ला अली खामिनेई की

0: आखिरी रसूमात के शेड्यूल का ऐलान किया है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आयतुल्ला अली खामिनेई की आखिरी रसूमात की तकरीब तेहरान में इमाम खुमैनी इबादतगाह के मकाम पर 4 और 5 जुलाई को मुनक़िद की जाएगी। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वज़ीर मुमलिकत प्रताप राव जाधव ने आज खून अतिया करने वालों के आलमी दिन के मौके पर मुल्क के लोगों से अपील की है कि वो रज़ाकाराना तौर पर खून अतिया करें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जाधव ने कहा कि अतिया किए जाने वाले खून के हर कतरे में किसी ज़रूरतमंद को सेहतियाब करने और एक ख़ानदान की खुशियों को वापस लाने की ताकत होती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो आगे आएँ, ज़िम्मेदाराना तौर पर खून अतिया करें और कीमती जानों को बचा में अपना रोल अदा करें। मर्दों के क्रिकेट में कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज़ के बारिश से मुतासिरा पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। जीत के लिए 195 रन के निशाने का पीछा करते हुए भारत ने 22 ओवर्स 5 गेंदों में जीत हासिल कर ली। कप्तान शुभमन गिल ने 66 गेंदों में नॉट आउट 84 रन बनाए। शुभमन गिल को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 17 जून को खेला जाएगा। ख्वातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज बर्मिंघम में एजबेस्टन के मकाम पर ग्रुप ए के मुकाबले में भारत रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीबुर रहमान।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोज़ा दौरे से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। रोज़नामा इनकलाब की सुर्खी है, G7 ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात को मिलेगी नई क़ुव्वत। तजारत, टेक्नोलॉजी, इख्तरा और आलमी उमूर समेत मुख्तलिफ मौजूआत पर तबादला ख्याल का इम्कान। फौज के नायब सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला आर्मी चीफ मुकर्रर किए जाने की खबर को सभी अखबारों ने अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोज़नामा इनकलाब ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को नुमाया तौर पर शाये किया है। अखबार लिखता है, मुस्तकबिल के दिफाही चैलेंजेस से निमटने के लिए तीनों अफवाज के दरमियान बेहतर तालमेल ज़रूरी। G7 इजलास के मौके पर अमरीका और ईरान के दरमियान अमन माहदे पर दस्तखत का इम्कान। माहदा होने की सूरत में दस्तखत डिजिटल तौर पर होंगे।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि खलाई तहकीक का भारतीय इदारा इसरो चांद पर उतरने वाला ऐसा खलाई जहाज तैयार कर रहा है जो 200 दिन तक काम कर सकेगा। भारतीय महकमाए मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों में जनूब मगरबी मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जनूबी इलाकों तक पहुँचने के लिए हालात साजगार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने का मुआहिदा आज तय पा जाएगा और इसके फौरन बाद सभी के लिए आबनाए हुर्मुज को खोल दिया जाएगा। और धर्मशाला में बारिश से मुतासिरा पहले एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हरा दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 का वक्त हुआ है। ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत का। श्रोताओं, अगर आप सुनना चाहते हैं अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों को तो हमें ईमेल लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। आप सभी को वैशाली का प्यार भरा नमस्कार। और आज सबसे पहला जो मेल हमने लिया है, भेजने वाले हमारे श्रोता हैं जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से मेल भेजा है लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगतापनी। और आपने लिखा है, नमस्कार, आपका हर पल खुशियों भरा हो। तो यही संदेश और

ऐसी शुभकामनाएं हमारी भी आपके लिए हैं और आपको भी प्यार भरा नमस्कार। गुजरात गांधीग्राम से मेल भेजा है प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी ने, और इन्होंने भी नमस्कार लिखा है और अपना फरमाइशी फिल्मी नगमा हमें लिख भेजा है। ये हैं रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, और इन्होंने अपनी फरमाइश हमें लिख भेजी है। शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से मेल है संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता का, और आप भी अपना पसंद का गीत सुनना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ के माध्यम से आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम में। और एक और मेल है, ये हैं बुलढाणा बड़शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा ताई, दीपाली, श्लोक कुमार, और इस्लामपुर महाराष्ट्र बुलढाणा से मेल है सहदेव दामोदर, शशिकला और सुमेत कुमार का, और आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी, उषा खन्ना की आवाज़ में बिन फेरे हम तेरे फिल्म का ये गीत।

0: कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते

0: बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: चंडीगढ़ सिटी से मेल भेजा है सतीश, अनेजा, बिमला, अनेजा और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने, और इन्होंने नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन लिखा है। आपका नमस्कार स्वीकार है और ये मेल भेजा है। ये लिख रही हैं कि इन्हें इनका पसंदीदा गीत सुनवा दिया जाए, और ये हैं रश्मि झरना राजकोट गुजरात से, और इन्होंने लिखा है नमस्कार। एक मेल है दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा का, और ये अपना पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं। और एक और मेल है, ये भेजने वाले हमारे श्रोता हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, PS नहावकर, निर्मला, विशाल और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य, इन्होंने मेल भेजा है। एक और मेल है, इसे भेजने वाले श्रोता हैं अनारकली बाजार जगराव से, सुनील, कमल, दीपिका, गाविया और सुचा सिंह पाठक जी, इन्होंने मेल हमें भेजा है। और इन्हें आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम बेहद पसंद आते हैं। गांव और डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमजीत कौर और इनके बहुत सारे मित्र बंधु हैं, इन्होंने मेल भेजा है। और ये सभी सुनना चाहते हैं आशा भोसले का गाया वो कौन थी फिल्म का ये गीत।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से।
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से वैशाली के साथ। और ये श्रोता हैं, लिखते हैं नमस्कार, और बलिया उत्तर प्रदेश से इन्होंने मेल भेजा है। फातिमा वली, सोनम, आसमा, डब्लू और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने एक मेल और है। ये हैं यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खटसे, विनोद खटसे, इन्होंने मेल भेजा है। नमस्कार लिखा है, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। और ये हैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ, अर्चनाताई, हीरामण शेंडे, प्रणय, प्रसिद्धि, प्रतिभा और इनके बहुत सारे परिवार के सदस्य हैं। 67 सेक्टर मोहली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह और अमनदीप। और कालका से मेल भेजा है शिवचंद्र बजाज, साहिल बलाज, बिट्टा बजाज ने, और इन्होंने अपनी फरमाइश हमें लिख भेजी है। एक मेल और है मालियान सरदना मेरठ से, अनिल जैन और संयम जैन, इनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों का। और आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले का गाया गीत। फिल्म है प्रोफेसर प्यारेलाल।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपके मेल आपके

एक गीत में जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से। और अब जो मेल भेजा है ये हमारे श्रोता हैं इटावा से, ओम नारायण कुशवाहा और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने हमें मेल भेजा है और नमस्कार भी लिख भेजा है इन्होंने। दुर्गा कॉलोनी हांसी से मेल है राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू का। इन्होंने भी लिखा है बहुत बहुत आभार और इन्हें कार्यक्रम बेहद पसंद आते हैं। और अब जो ये मेल है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर, राजू जाधव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, सर्वद, प्रणाली, सानवी, कल्पना देशमुख का। और एक मेल और है इसे भेजने वाले हमारे श्रोता हैं आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, एकांश, सुमित, ध्वनि, परी, शैलेश। और एक मेल और है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से ही अभिजीत, सरिता, प्रणीता, सिद्धांत, टुक टुक और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों का। और आप सभी सुनना चाहते हैं क्रोधी फिल्म का गीत जिसे गाया है सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर ने।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत, जो आधारित होते हैं हमारे श्रोताओं के ईमेल पर। अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपने फरमाइशी फिल्मी नगमों को, तो हमें ईमेल लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: नागचुन रोड, संजय कॉलोनी, खंडवा से अब्दुल गफ्फार, जियाउल हक, मोहम्मद उमर, राजेंद्र कटारे और भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, पायल जोशी ने हमें मेल लिख भेजा है और अपना फरमाइशी गीत ये सुनना चाहते हैं। एक मेल और है, ये गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी, मनीष और रामदेवरा से मेल है, दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से मेल है खुदाबख्श खलीफा और उनके बहुत सारे साथियों का। आप सभी अपने फरमाइशी फिल्मी नगमे को सुनना चाहते हैं। जलालाबाद वेस्ट से मेल है सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा का और आप सभी सुनना चाहते हैं ये वादा रहा फिल्म का गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: श्रोताओं, इसी के साथ आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। दीजिए अनुमति हमें। नमस्कार, हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
2: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल में रक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों से आत्मनिर्भरता और बढ़ती सैन्य शक्ति पर खास चर्चा। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा।
3: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले हैं। सरकार के प्रयास विजन से न केवल दुश्मनों के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान चलाए गए, बल्कि सेना का मनोबल बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, स्वदेशी हथियारों के निर्माण को गति मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू हुए हैं। आज भारत आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन, आधुनिक सैन्य क्षमता और वैश्विक रणनीतिक प्रभाव के नए दौर में कैसे आगे बढ़ रहा है, पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिन्होंने देश को चुनौतियों से मुकाबले के लिए मजबूत किया है, आज इन्हीं मुद्दों पर

0: चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कर्नल आरपी सिंह जी, सेवानिवृत्त हैं, और वायुसेना के पूर्व अधिकारी अनुपम तिवारी जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद
0: आरपी सिंह जी। सर, आपसे पहले जानना चाहेंगे, अगर 2014 से 2026 तक के रक्षा क्षेत्र के बदलावों को देखें तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? सैन्य आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा की सोच को कैसे आगे बढ़ाया गया?
1: पहले के कई युद्धों का परिणाम कारगिल में देखने को मिला था, कारगिल वॉर में, जहाँ पे माउंटेन वॉरफेयर में भारत की सेनाएं सक्सेसफुल हुई थी और काफी कुछ वो 72 के बाद वहाँ पे माउंटेन्स में सक्सेस मिली थी। इसी तरह से उसमें उसी समय पे जो आपके स्वामीनाथ कमीशन हुआ था, उस समय के बाद से जो परिवर्तन आया था, अब वो देखने को मिला इसी पिछले 12 सालों में। सबसे बड़ी सफलता इसमें ये मिली है कि भारत की सेनाओं तीनों अंगों का काफी कुछ विकास हुआ, माउंटेन्स एरिया तक भी जाकर के उनके आधुनिकीकरण का हुआ है। इसी तरह से सी चेंजेस में, मतलब समुद्र के किनारे भी ये काफी चेंजेस हुए। भारतीय सेनाएं पूरे बॉर्डर के ऊपर जाने में सक्षम है, रोड और उनकी तकनीकों का विकास हुआ है। भारत का जो सबसे पहला उस समय सोचा गया था कि तीनों सेनाओं के नीचे एक थिएटर कमांड बने, उसकी भी एक पहल की गई इसी दौरान में। उसके अलावा जो है, आपने सुना होगा कि उससे पहले से काफी चल रहा था कि इन सर्विस क्लास के अंदर वन रैंक वन ओपी आए, वो इसी दौरान में इस बात को भी 2017 के अंदर लाया गया, जिससे कि तीनों सेनाओं के जो भी ऑल रैंक्स थे उनके ऊपर ये बदलाव देखा गया। और उसके अलावा जो है, जनरल बिपिन रावत जो पहले सीडीएस भी नियुक्त हुए 2019 में, अभी तीसरे सीडीएस भी नियुक्त हो चुके हैं। और उसके अलावा जो है, ज्वाइंटनेस कमांड जो बनने की उम्मीद की जा रही कि इस नियर फ्यूचर के अंदर थ्रेटर कमांड्स भी आ जाएंगे। इसमें एक चीज और की गई है कि भारत को जो पहले हम लोग जितने भी अमुनिशन हथियार इम्पोर्ट करते थे, चाहे रशिया से, चाहे अमेरिका से, चाहे इसराइल से या फ्रांस से, अब उसको हम आत्मनिर्भर बनने के उसमें आ गए हैं। और इसी दौरान में ये एक तरह से प्राइवेट सेक्टर को पूरी छूट दी गई है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया दोनों के ऊपर कार्य हो। इसी में डिफेंस कॉरिडोर, दो डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए हैं, और ये जान के आपको बड़ी खुशी होगी कि इन डिफेंस कॉरिडोर में एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के अंदर है और इस उत्तर प्रदेश के अंदर 6 districts हैं। और उनका जो अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो अभी इनके प्रोडक्ट्स जो हैं, बल्कि हाल के जो ऑपरेशंस हुए हैं उसमें भी इस्तेमाल किए गए हैं। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि आपके बगल में अमेठी के अंदर AK-203 जो बनाई जा रही है वो अब बाहर एक्सपोर्ट हो रही है, और भारतीय सेना के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी दी जा रही, ब्रह्मोस मिसाइल्स भी बनाई जा रही। तो इस तरह से करके आप देखेंगे कि जो चेंजेस आए हैं, एक तरह से आत्मनिर्भरता की पूर्ण रूप से हुआ है।
0: बिल्कुल सर। अनुपम सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सर ने जिक्र किया आत्मनिर्भर भारत की बात, रक्षा क्षेत्र में खासतौर पर और बड़े अंतर के साथ हम इसे महसूस कर रहे हैं। पहले दूसरे देशों पर निर्भरता थी, लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत की बात रक्षा निर्यात के जरिए भी हो रही है। रक्षा क्षेत्र के लिए ये कितना जरूरी था, सरकार के प्रयासों में अब कितना अंतर आप देख रहे हैं, जब हम मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड की भी बात कर रहे हैं?
2: शैलेंद्र जी, सर की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखें, रक्षा के ऊपर अक्सर बातें हुआ करती थी, लेकिन अभी बदला क्या है, हमको बदलाव समझना चाहिए। अभी नीतिगत बदलाव हुए, रक्षा निर्यात की नीति ही बदल दी गई है, और इसी नीति का फायदा है जो हम आज ये देख रहे हैं कि 2010-11 के आसपास जो हमारा 1500 करोड़ का जो निर्यात होता था रक्षा संसाधनों का, वो अब 24,000 करोड़ का हो गया है, यानी कि 16 गुना बढ़ोतरी हुई है पिछले एक दशक के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि हमने आयात पर निर्भरता घटाई है, और ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, वो भी इसी नीति की वजह से हुआ है। हमारा 70% तक रक्षा का सामग्री 2010-11-12 तक बाहर से आता था, यानी कि हमारी सेनाएं 3/4 तक विदेशी सामानों पर डिपेंड करती थी। अभी एक दशक के अंदर उसको घटा के 50% तक तो ला ही दिया गया है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज हम 50% आयातित सामान के ऊपर निर्भर है और बाकी हम खुद बना रहे हैं। भारत ने अब शुरुआत करी है, लेकिन शुरुआत में ही जब हम निर्यात में 16 गुने का जंप देख रहे हैं तो इससे एक हौसला बढ़ता है, इससे एक विश्वास बढ़ता है, और इससे लगता है कि भविष्य अच्छा है। संशय नहीं है कि अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे 2047 तक अपनी रक्षा जरूरतों का अधिकांश भाग हम खुद पूरा करेंगे। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि एयरक्राफ्ट के इंजन, जैसे कुछ अत्याधुनिक सेंसर्स हैं, उनके ऊपर अभी काम होना बाकी है, और उस पे थोड़ा अगर हम स्पीड अप करेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है वो बहुत जल्द साकार होती हुई दिखाई देगी।
0: आरपी सिंह सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत जो ये स्वदेशी हथियार मिल रहे हैं सेना को, इसकी वजह से जमीन पर कितना अंतर आया?
1: नहीं, देखिए, भारत की स्थिति आत्मनिर्भरता में इतनी अच्छी सक्षम हो रही है कि इसका तो पहला रिजल्ट मैंने देखा हाल में ही आप सिंदूर के अंदर, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल कितनी सक्सेसफुल थी और वो भारत में ही बनती है, जबकि वो रशियन इक्विपमेंट

0: है, लेकिन उसका जो है इतना यहाँ पे एक तरह से मारक क्षमता हो गई है कि वो हर जल थल नब तीनों जगह से मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल्स है, जिसको इतने सक्सेसफुल हुआ कि उसके बाद पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े कि भाई ब्रह्मोस मिसाइल कहीं भी जाकर के कहीं भी मार सकती है। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए आकाश में भारत का जो तेजस एयरक्राफ्ट जो है काफी सक्सेसफुल है और उसकी मारक क्षमता काफी डीप है, जो कि पाकिस्तान और चाइना तक काफी हुआ है इसलिए और सक्सेसफुल है। दूसरा अभी जो है प्रचंड जो हैप्टर बनाया गया, हेलीकॉप्टर बनाया गया, वो भी जो है एक तरह से अटैक हैप्टर्स है, जिसको कि इसमें पूरे के पूरे इस्तेमाल करने में एक तरह से है। तो इस एयरोनॉटिक्स के अंदर एचएल के साथ मिलकर के, एयरबस के साथ मिलकर के भारत की जो आधुनिकीकरण में मेक इन इंडिया जो चल रहा है वो आगे काफी बढ़ता जा रहा, और इसके अंदर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी हिस्सेदारी ले रही हैं, वो भी आगे आ रहे हैं, चाहे रिलायंस का हो, चाहे अडानी का हो, चाहे टाटा का हो, और चाहे इसमें आपका ये भारत फोर्स वाले हों, तो इससे जितनी प्राइवेट कंपनी है उसमें भी आ, इसी में भारत फोर्स ने क्या किया है, कल्याणी के 155 के आर्टिलरी गन जो एसपी गन्स हैं वो भी बनाने लगे हैं, जिसकी दूर की मारक की क्षमता एक्यूरेसी पूरी वो है। अभी इसी में मैंने देखा एक ट्रायल हो रहा है कि जिससे होम ऑन टारगेट को लेकर के डिजिटली वो लॉक इन करके फायरिंग करने के है। इसी में अम्निशन के ऊपर भी जा रहे हैं काफी उससे, जिससे अम्निशन को टारगेट को होम ऑन करने की है, मिसाइल्स भी बनाने लगे हैं, और इसके अलावा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, एआई की टेक्नोलॉजी है, और वो सब चीज भी आगे बढ़ रही है। तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके आगे फील्ड में आगे बढ़ती जा रही,
1: हम हमले के लिए तो नए हथियार, डिफेंस सिस्टम भी हमारा मजबूत हुआ है जिस तरह से हमने देखा।
0: जी हाँ, डिफेंस सिस्टम भी इसके साथ जो ऑफेंस सिस्टम बनता है तो हमें डिफेंस भी बनाना पड़ता है। अगर कोई फायरिंग अगर आ रहा है, कोई अटैक आ रहा है, तो हमें आरटी गन्स चाहिए दूर तक के मारक क्षमता के लिए, उसके लिए आरटी गन्स बना रहे हैं। दूसरी चीज, जितने भी हम ड्रोन बना रहे हैं तो हम उसके लिए एंटी ड्रोन भी हमको मैकेनिज्म बनानी है। जितने भी हमको जैसे आपके S-400 जो रशियन बना रहे हैं उसको रोकने के लिए, तो वो भी हम उसके चार्ज तो हमने उसके ऑलरेडी बैटरीज खड़ा कर चुके हैं, वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उनके साथ डील ये हो रही कि हम भी हमें भारत के अंदर भी बनाना शुरू कर दें। जो हमने इनके साथ जो इसके जो एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए जो भी हमने रडार्स बनाने शुरू किए भारत के अंदर बनाए, जो हमारे सेटेलाइट्स हैं जो इसरो के हैं जो कि ऑलरेडी एयर में है, तो वो पहले ही बता देते हैं कि जो आपके जो एनिमी के एयरक्राफ्ट जो भी है उनको पकड़ने की क्षमता रखते हैं और उनको डाइवर्ट करने की क्षमता रखते हैं। इस तरह से करके भारत के जितने भी आधुनिकीकरण हो रहे हैं और भारत के अंदर ही बन रहे हैं, उसको पूरे के पूरे सक्सेसफुल हो रहे हैं और आगे के आगे चलते जा रहे हैं। विदेशी कंपनियां जो हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको बताया ब्रह्मोस हो गया, चाहे आपके AK-203 हो गया, आपके इजराइल्स की कंपनी हो गई जो स्नाइपर राइफल्स बना रहे हैं या कॉम्बैट वेपन्स बना रहे हैं, उनकी जो है भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स हो रहे हैं उसी को जो है भारत पूरा बना रहा है, अपने मेक इन इंडिया बना रहा है।
1: जैसे पहले सर था कि टेक्निक ट्रांसफर की बात होती थी, अब मैन्युफैक्चरिंग की भी बात,
0: अब मैन्युफैक्चरिंग ही हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही साथ यहाँ पे, जबकि अभी रफेल का भी यही हुआ है कि रफेल भी अब इंडिया के अंदर बनेगा, उसकी पूरी की पूरी सामान जो है इंडिया में बनेगी, बस मेन कंपोनेंट उनका होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे प्रोग्रेसिव जा रही है, और हो सकता है कि भारत जो है 2047 तक एक पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर के, बल्कि एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज हो जाएंगी, जो कि भारत देश हो जाएगा जो दूसरों को देगा। तो इसमें आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया में यही फर्क है कि भारत के अंदर दोनों चीजें बन रही है।
1: बिल्कुल सर, रक्षा क्षेत्र में पिछले 12 साल में सरकार की उपलब्धियों और आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण और सैन्य सुधारों पर बात करने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू वेरी मच।
3: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल में रक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों से आत्मनिर्भरता और बढ़ती सैन्य शक्ति पर खास चर्चा। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।
4: सामयिक चर्चा अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, और अब आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में देश गान 747 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम। आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश के तहत आज उर्दू कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर चर्चा मोहम्मद उमेर से। इसके अलावा सुनेंगे चर्चा गर्मी में रखें हिफाजत मौजू पर, और आज के कलामे शायर में सुनेंगे मोहम्मद कलीम फतेहपुरी और फारुख आदिल से उनका ताज़ा कलाम।
1: उर्दू प्रोग्राम के साथ एक बार फिर हाजिर हैं आपका मेज़बान मोहम्मद उमेर। आदाब कबूल फरमाएं सामईन। आज 14 जून है और आज खून के अतिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सामईन, खून का अतिया इंसानियत की खिदमत का अजीम जरिया है। ये ऐसा नेक अमल है जिससे किसी ज़रूरतमंद इंसान की जान बचाई जा सकती है। हादसों में ज़ख्मी होने वाले मरीज़, ऑपरेशन से गुजर रहे लोग, थैलीसीमिया के मरीज़ और कई दीगर बीमारियों से जूझ रहे अफराद को अक्सर खून की ज़रूरत पड़ती है। खून के अतिया से न सिर्फ किसी की ज़िंदगी बचती है बल्कि समाज में हमदर्दी, मोहब्बत और इंसानी भाईचारे का पैगाम भी फैलता है। सेहतमंद अफराद के लिए खून का अतिया महफूज

0: माना जाता है और इससे जिस्म में नया खून बनने का अमल भी जारी रहता है। याद रखिए, खून का कोई कारखाना नहीं होता है और न ही इसे मसनूवी तौर पर तैयार किया जा सकता है। इसलिए हर सेहतमंद शख्स का फ़र्ज है कि वो वक्त ज़रूरत खून का अतिया करके किसी की ज़िंदगी में उम्मीद की नई किरण पैदा करे। लेकिन इतनी अहमियत के हामिल होने के बावजूद आज भी लोग इस अहम मसले पर बेदार नहीं हैं। सामईन, आज 14 जून को दुनिया भर में खून का अतिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन उन लोगों को खिराज तहसीन पेश करने का मौका है जो अपनी खुशी से खून का अतिया देकर दूसरों की ज़िंदगी बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। खून का एक यूनिट किसी हादसे के शिकार, ऑपरेशन के मरीज या किसी संगीन बीमारी से जूझ रहे इंसान के लिए नई जिंदगी का सबब बन सकता है। खून का कोई मस्नूई बदल मौजूद नहीं, इसलिए इसकी ज़रूरत सिर्फ इंसानों के ज़रिए ही पूरी की जा सकती है। आइए हम सब इस दिन ये अहद करें कि अगर हमारी सेहत इजाज़त दे तो हम भी खून के अतिये के इस नेक काम में हिस्सा लें और इंसानियत की खिदमत का ज़रिया बने। याद रखिए, आपका दिया हुआ थोड़ा सा खून किसी की पूरी ज़िंदगी बचा सकता है। सामईन, इस अहम गुफ्तगू के बाद माहौल को तब्दील करते हैं। आपको लेकर चलते हैं शेर व अदब की महफिल में, जहाँ कलाम शायर के तहत अपने ताज़ा कलाम के साथ हाजिर हैं शायर जनाब मोहम्मद कलीम फतेहपुरी।
1: गजल का मतलब समाज फरमाएं तुमने।

0: शायर के तहत महजूज हो रहे थे शायर जनाब मोहम्मद कलीम फतेहपुरी के खूबसूरत कलाम से। अब बात एक और अहम मसले पर। गर्मी का मौसम अपने साथ तेज़ धूप और बढ़ा हुआ दर्ज हरारत लेकर आता है, ऐसे में अपनी सेहत की हिफाजत करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ज़्यादा गर्मी और लू से बचने के लिए दिन भर में खूब पानी पीजिए और जिस्म को पानी की कमी से महफूज रखिए। दोपहर के वक्त ख़ासतौर पर 12 बजे से 4 बजे तक बेवजह धूप में निकलने से परहेज़ कीजिए। अगर बाहर जाना ज़रूरी हो तो हल्के रंग के सूती कपड़े पहनिए, सिर को टोपी या अंगोछे से ढकिए और धूप से बचाव का इंतज़ाम कीजिए। ताज़ा फल, सब्ज़ियाँ और पानी से भरपूर ग़िज़ा इस्तेमाल कीजिए। बच्चों, बुज़ुर्गों और बीमार अफराद का ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि गर्मी का असर इन लोगों पर ज़्यादा पड़ सकता है। याद रखिए, थोड़ी सी एहतियात आपको और आपके ख़ानदान को गर्मी की परेशानियों से महफूज रख सकती है। तो सेहतमंद रहिए, पानी पीजिए और गर्मी में अपनी हिफाजत कीजिए। सामाइन, इस अहम गुफ्तगू के बाद अब आपको फिर लेकर चलते हैं शेर व अदब की महफिल में, जहां इस बार कलाम शायर के तहत अपने ताज़ा और खूबसूरत कलाम के साथ हाजिर हैं शायर जनाब फारूक आदिल।
1: मुलाजा फरमाएं।
2: मुल्क की तर्जुमान है उर्दू,

मैं चढ़कर मसलहत के पर्वतों पर, मैं चढ़कर मसलहत के पर्वतों पर, बखीलों को भी दानी लिख रहा हूँ।

हूँ। और बतौर खास ये भी शेर, खिरद की गोद में बैठा हुआ मैं, खिरद की गोद में बैठा हुआ मैं।

0: मोहब्बत की कहानी लिख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।
1: सामाईन, अभी आप कलाम शायर के तहत महजूज हो रहे थे शायर जनाब फारूक आदिल साहब के खूबसूरत कलाम से। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें अपनी राय से मुत्तला ज़रूर करें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी हमें अपने तासुरात भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157। तो सामईन, इसी के साथ आज का ये उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद उमैर को दे इजाज़त। आदाब।
2: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम, पेशकश आकाशवाणी के लखनऊ मरकज की थी। आज इस कार्यक्रम में आपने सुना वर्ल्ड ब्लड डोनर डे और गर्मी में रखें हिफाजत, इस मौजू पर चर्चा कर रहे थे मोहम्मद उमैर। कलामी शायर में आपने सुना मोहम्मद कलीम फतेहपुरी और फारूक आदिल से उनका ताज़ा कलाम। मेज़बानी की थी मोहम्मद उमैर ने और पेशकश आसिफ इकबाल की थी। इसी के साथ उर्दू कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं 747 किलो हर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज सुनेंगे पूजा तोमर के गाए अवधि लोक गीत। सबसे पहले पूजा तोमर के स्वर में प्रस्तुत है गंगा गीत।

गंगा जी की महिमा। अभी आपने पूजा तोमर के स्वर में गंगा गीत सुना और अब प्रस्तुत है कहरवा स्वर पूजा तोमर का।

पूजा तोमर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे कहरवा। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग अब संपन्न होता है। अगर आप पूजा तोमर के गाए अवधि लोकगीतों का आनंद लेना चाहते हैं तो सुन सकते हैं कार्यक्रम दिन में 2:45 पर लोक माधुरी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे मीनू खरे और रश्मि श्रीवास्तव के स्वर में देवी गीत। इसे सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर ने।

और अब आइए सुनते हैं किरण गौतम के स्वर में चकिया सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद किशोर कुमार दीपक कुमार जावेंद्र कुमार वर्मा ने।

0: अभी आप किरण गौतम के स्वर में चकिया सुन रहे थे। इसी के साथ आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। पुनः ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:20 से। 747 किलो हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। स्विट्जरलैंड में जनसंख्या 1 करोड़ तक सीमित करने के लिए जनमत संग्रह आज। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने मोरक्को के विरुद्ध 1-1 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इको सिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया जाएंगे और वहां

0: शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: अमरीकी राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि फ्रांस में प्रस्तावित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश और भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। व्हाइट हाउस के अनुसार G7 शिखर सम्मेलन में अमरीकी आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर मित्र देशों के साथ सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता की सफलता की आशा है।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 जुलाई को तेहरान और 7 को पवित्र शहर कोम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। स्विट्जरलैंड में जनसंख्या सीमित करने के प्रस्ताव पर आज जनमत संग्रह हो रहा है। इस प्रस्ताव में देश की आबादी 1 करोड़ तक सीमित रखना है। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो स्विट्जरलैंड जनसंख्या पर रोक लगाने वाला यूरोप का पहला देश बन जाएगा। देश की वर्तमान जनसंख्या 90 लाख से अधिक है, जबकि एक दशक पहले यह 80 लाख से कुछ अधिक थी। आबादी का 1/4 से अधिक हिस्सा विदेशी मूल के लोगों का है। यह प्रस्ताव देश के सबसे बड़े राजनीतिक समूह स्विस पीपल्स पार्टी ने रखा है। इटली की राजधानी रोम में कल प्रवासियों के मुद्दे पर विरोध और समर्थन में अलग अलग प्रदर्शन हुए। प्रवासियों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने की मांग वाली एक पहल को संसद में चर्चा के लिए आवश्यक 50,000 हस्ताक्षर मिल गए हैं। विरोध और समर्थन दोनों प्रदर्शनों में हजारों लोग शामिल हुए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि किसी प्रकार की हिंसा की सूचना नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेने की पाकिस्तान सरकार की आशंकाओं के बीच विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों का बातचीत का प्रस्ताव ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अस्वीकार कर दिया है। कमेटी ने कहा है कि बातचीत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने कभी अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। समाचार एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तानी सरकार के लिए मौजूदा विरोध प्रदर्शनों से निपटना कठिन होता जा रहा है। इस बार विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी प्रवासी भी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन और अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। म्यांमा में कल रात 3.8 तीव्रता का भूकंप आया। भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। एक सप्ताह पहले भी म्यांमा में 3.5 तीव्रता का भूकंप आया था। म्यांमा मध्यम और तीव्र भूकंप तथा सुनामी के संकट के लिए संवेदनशील माना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायण ने

0: बेंगलुरु में बताया कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा था। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्कॉटलैंड ने 28 साल बाद विश्व कप में जीत दर्ज करते हुए हैती को 1-0 से हरा दिया है। जॉन मैकगिन के पहले हाफ में किए गए गोल के बदौलत स्कॉटलैंड ग्रुप सी में शीर्ष पर पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। वहीं ग्रुप बी में कतर और स्विट्जरलैंड का मुकाबला भी 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। आज ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया और तुर्की के बीच मैच खेला जा रहा है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। मैनचेस्टर में कल स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हरा दिया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का भी उद्घाटन करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी के लिए खोल दिया जाएगा। स्विट्जरलैंड में जनसंख्या 1 करोड़ तक सीमित करने के लिए जनमत संग्रह आज। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने मोरक्को के विरुद्ध 1-1 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
2: राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश। आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्वागत है आप सभी का आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम में। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाएंगे संजोली पांडे के स्वर में खेमटा। इसे सुनने के लिए हमें पत्र भेजा है दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, नीतू वर्मा, प्राची वर्मा ने।

गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर, जयतेग और पूरा बेरक परिवार, इन्होंने हमें पत्र लिख भेजा है और फरमाइश की है विवेकानंद व्यास के स्वर में विदेशिया सुनने की।

और अब दिग्विजय नाथ सिंह के स्वर में आइए सुनते हैं पूर्वी। सुनने के लिए पत्र भेजा है गांव नरहरपुर पोस्ट सिमरी पुरुषोत्तमपुर जिला सुल्तानपुर से राजेश कुमार, राकेश कुमार, अनुराग, अंशुल, अंजलि, आस्था और केशरी मिश्र ने।

आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। और अब आइए सुनते हैं रश्मि चौधरी के स्वर में लोक भजन। इसे सुनने के लिए पत्र भेजा है प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष भारतीय रेडियो श्रोता संघ। इनके परिवार के और भी सदस्य हैं, शिवबख्श सिंह, शीतल तरंग, गोविंद सिंह, ग्राम कैथनपुरवा, पोस्ट सातनपुरवा, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश से इन्होंने पत्र हमें भेजा है। तो आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये लोकगीत। स्वर है रश्मि चौधरी का।

और अब प्रस्तुत है अक्रम अंजाना के स्वर में छपरैया। इसे सुनना चाहा है हमारे श्रोता ग्राम राजा कटरा पोस्ट अहमदपुर राम सनेही घाट बाराबंकी से मोहम्मद तालिब और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने।

संजू मिश्रा के स्वर में आइए सुनते हैं गंगा गीत। और इसे सुनने के लिए पत्र भेजा है बनियापारा धमतरी से शंकरलाल मखीजा, स्वाति।

डॉक्टर अंजू भारती के स्वर में अब प्रस्तुत है कहरा। और हमारे श्रोता हैं जिन्होंने पत्र भेजा है, ये गांव भड़भूजी जिला आगर मध्य प्रदेश से हैं रघुनाथ मालदीप, रीना, सुषमा, दुर्गा, परी, आयुष, सुभाष, सुषमा, मधुबाला, ओम प्रकाश और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अंजू भारती के स्वर में कहरा, और अब प्रस्तुत है रविशंकर देहाती के स्वर में किसानी गीत, और सुनना चाहा है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर, मेहरा जहां और इनके बहुत सारे मित्र बंधुओं ने।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। सुबह के 11 बज रहे हैं और अब पेशो खदमत है आपका पसंदीदा प्रोग्राम जो कि है फ़ोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। और आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुमैया सईद। स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं, ये फिल्म संगीत फ़ोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम है, तो जल्दी से हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 0522-2238825। और आइए देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो,
1: नमस्कार दीदी जान।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: अरे कहते हैं न दौलत की तमन्ना है, न दौलत की तमन्ना है न शोहरत की आरजू, और आपसे बात हो जाए तो सबसे बड़ी जुत जू। दीदी जान आपको ग्राम कल्पा जिला सतना ईदन गार्डन अशोक वाटिका से चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना का नमस्कार आदाब सलाम और प्रणाम।
0: नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप?
1: अरे ये मान के चलिए आपसे बात हो गई तो मुझको लगता है कि मेरे को अनमोल हीरा मिल गया। हीरे की तो कुछ कीमत होगी, आपको फोन लगाए तो समझ लो कि इसकी कोई कीमत नहीं है। और मैं बता दूं ये फोन आज आपकी भाभी जान ने जामुन में चढ़ के लगाया, वो जीत गई मैं हार गया, बात कर लो।
2: जी दीदी जान नमस्कार।
0: नमस्ते नमस्ते
2: जी दीदी, हम जामुन में चढ़ रहे हैं उसी में लिए फोन लगा रहा है तो लग ही गया।
0: अरे वाह क्या बात है, तो जामुन के पेड़ पे चढ़ के आपने फोन लगाई है?
1: ये दीदी जान पेड़ में ही चढ़ के लगाया करते हैं, तभी तो लखनऊ को फोन लग पाता है, नहीं तो नहीं लग पाता। ये जामुन में चढ़ी और फोन लगा डाला।
0: अरे वाह क्या बात है, इतनी मोहब्बत। हाँ
1: इनकी क्वालिटी है आपकी भाभी जान की, ये पेड़ में बहुत गजब का चढ़ती है बंदरिये की तरह और नदी में तैरती है मगर की तरह।
0: अच्छा चलिए ये बताइए कि क्या करते हैं आप?
1: और इनसे पूछ से मैं दीदी जान बता दूं, मैं नाइट में डंफर चलाता हूं, वो नहर बन रही है और कपड़े काट देता हूं, तो आपकी भाभी जान पैंट शर्ट सिलती है।
2: जी दीदी जान, हम पैंट भी सिल लेते हैं और शर्ट भी सिल लेते हैं।
0: क्या बात है, आप तो टेलर हैं। और ये बताइए कि गाना कौन सा सुनेंगे आप दोनों?
1: आप गाना दीदी जान जब बात ही हो गई है, और एक बात और बता दूं थोड़ी सी, क्योंकि आप माफ कर देना गलती हो, तो सभी श्रोताओं से हाथ जोड़कर निमन निवेदन है कि कृपया जो

0: है तो वो फोन में बात किया करें, गाना सुना करिए और अपने गांव घर की जो बातें हैं अच्छी अच्छी दीदी जान बताया करें और नाम ना बांचना चालू कर दें। जिन श्रोताओं के फोन लग जाते हैं टोटल नाम बांचना चालू कर देते हैं जिससे समय जाया होता है और कार्यक्रम की रोचकता घटती है। मैं बता दूं प्रेमदास बाबा जी के साथ में गाना सुनूंगा डॉन फिल्म का और हम लोग गुनगुना लें तब तो मजा आएगा दीदी जान।
1: चलिए आपको सुनवाते हैं।
0: यह मुंबई नगरिया तू देख बबुआ, यह मुंबई नगरिया तू देख बबुआ, यह कल्पा नगरिया तू देख बबुआ, यह लखनऊ नगरिया तू देख बबुआ। जय वाला दीदी जान।
2: जय हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की और जय हो बंबई धाम की। ई है

0: आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे?
1: हेलो हेलो,
2: किसी को दौलत का नशा तो किसी को शोहरत का नशा, जैसे बादलों को है रिमझिम का नशा, किसी को जवानी का नशा तो हम श्रोताओं को है फोन लगाने का नशा। नशे में कौन नहीं दीदी जी, हमको बताओ जरा। नमस्कार बहन जी।
1: कौन बोल रहे हैं जी? नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
2: जी मैं कोई कलाकार नहीं बल्कि आपका श्रोता हूँ और परमानेंट सुनता हूँ
1: जी।
2: तो मैं अपना परिचय बता दूं, जिला बांदा चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह आपसे रूबरू हो रहा हूँ।
1: जी दिनकर जी, कैसे हैं आप?
2: बिल्कुल मस्त हैं। और दीदी जी पहला फोन कटा,
1: मैं
2: पहली कॉल मेरी पूरी बेल गई तो चांद मोहम्मद जी का लग गया, और चांद मोहम्मद जी के पहली कॉल के बाद उनका कटा तो फिर मेरी पुनः कॉल लग गई।
1: अच्छा चलिए बढ़िया है। और ये बताइए कि क्या सुनेंगे आज आप?
2: आज मुझे मेरे महबूब तुझे सलाम गाना के बोल हैं तो सुनूंगा, और दो तीन हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जो उनके नाम लूंगा, प्रेम दास बाबा जी हैं और हमारे देवी शंकर शुक्ला जी हैं, ये भी 70 साल के हैं।
1: अच्छा।
2: और हमारे जो है एक छोटे से बच्चे हैं सावस्ती से हिमांशु जी और फूलचंद पाल जी हैं और विजय पांडे जी हैं, ये उर्दू के शायर हैं, इनके साथ सुनूंगा। और दीदी जी आपको भी इसमें बेडिकेट कर रहा हूँ ये गीत।
1: थैंक यू सो मच। और कुछ कहना चाहेंगे श्रोताओं से?
2: बिल्कुल यही कहना चाहूंगा कि श्रोताओं को जो है कि अपने कान पर बिजी रहें और अपने देश के लिए और अपने राष्ट्र के लिए जरूर कुछ कार्य करते रहें।
1: क्या बात है, चलिए आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। नमस्ते
2: जी। नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: आकुलिया, जिला उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल से गणेश। हेलो,
0: हेलो जी, बता रहे थे आप, कौन बोल रहे हैं?
1: आवाज जा रहा है मैम?
0: हाँ, अब आ रही है, बताइए
1: जी, पश्चिम बंगाल से गणेश दास बात करूँ मैं आपसे।
0: जी। गणेश जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे मैम, आप बताइए, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। और क्या करते हैं आप?
1: मैं एक किसान हूं और साथ में करियाने की छोटा सा दुकान है, गांव से बिलोंग करता
0: किराना?
1: हूं मैं।
0: अच्छा, चलिए बढ़िया है। और क्या क्या लगा रखा है आपने खेत में?
1: नहीं, खेतों में अभी हाल फिलहाल जो है मतलब कहते हैं धान और मक्का यानी कि कर चुका है, अब जो है अगला
0: अच्छा,
1: फिर धान लगाने की तैयारी है, बस हो रहा है।
0: और किराने की दुकान में आप क्या क्या रखते हैं?
1: हाँ, क्या दुकान की बात बोलिए आपने? दुकान में
0: जी
1: जो
0: जी
1: है मतलब करियाना सामान A to Z मतलब। जी,
0: चलिए, बहुत बढ़िया है। और फैमिली में कौन कौन है आपके?
1: फैमिली में सभी कोई है, माता जी, भैया, भाभी, छोटे भाई और उनके श्रीमती जी, और साथ में जो मेरा भी परिवार है, दो प्यारे बच्चे भी है, गुड़िया।
0: चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे
1: जी,
0: आज आप?
1: फिल्म का नाम है जिगर, गाने का बोल है मोहब्बत है खुशबू।
0: मोहम्मद अजीज की आवाज़।

0: और आइए देखते हैं हमारे आज के अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना बोल रहा हूँ।
0: जी लतीफ जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा है मैडम, आप ठीक हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। और क्या करते हैं आप?
1: बस अभी तो प्रोग्राम सुनता हूँ मैडम। हाँ
0: अच्छा,
1: जी,
0: और कश्मीर में कैसा मौसम है?
1: यहाँ पे मौसम अभी तो आज यहाँ पे धूप ही है,
0: आज
1: कल
0: धूप
1: यहाँ
0: है।
1: पे थोड़ा बारिश ही पानी बरसता था।
0: अच्छा, तो अभी इस मौसम में भी टूरिस्ट घूमने आते होंगे, है ना? कुछ
1: बहुत
0: ज़्यादा ही,
1: सारे यहाँ पे सोनामर्ग में बहुत सारा रश लगा है आजकल
0: बहुत रश
1: टूरिस्टों
0: लगा है।
1: का।
0: तो कैसा लगता है आपको?
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा, और कारोबार पे भी असर पड़ता होगा इस चीज़ का जब
1: हाँ
0: टूरिस्ट
1: सही
0: आते हैं।
1: बात है, यहाँ दुकानदारों, रेडियो वालों को, पटरी वालों को बहुत रोजगार मिलता है टूरिस्टों से।
0: चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और क्या सुनना चाहेंगे आज आप?
1: बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में।
0: अच्छा, नाजायज फिल्म का ये गाना
1: हाँ
0: है
1: ये
0: ना?
1: वाला सुनना है।
0: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए।
1: और
0: आइए,
1: मेरे साथी और रमेश प्रजापति,
0: ठीक है, उनको भी और सभी हमारे श्रोताओं के लिए।
1: इंदौर से टेलर वाला, धन्यवाद
0: जी ठीक है, आइए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना।
1: आपका।
0: धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ,
0: हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: चमन सिंह,
0: चमन सिंह जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: बाराबंकी से। हाँ,
0: बाराबंकी से बोल रहे हैं। अच्छा, क्या करते हैं चमन सिंह जी? आवाज़ें बहुत आ रही हैं आपके पीछे से। हेलो।
1: लड़के घर में है वही बोल रहे हैं।
0: अच्छा,
1: अब दूर
0: और
1: जा चले हैं, लड़का हो बहुत बड़ा सा है, दूर निकल रहे हैं।
0: क्या करते हैं आप?
1: खेती वेती करते हैं। हाँ,
0: खेती करते हैं। अच्छा, किस चीज़ की
1: खेती
0: खेती करते
1: किसानी
0: हैं?
1: काम है। खेती
0: किस चीज़ की खेती करते हैं?
1: गन्ना
0: गन्ना।
1: है, धान,
0: अच्छा,
1: यही खेती करते हैं।
0: और कौन सा गाना सुनेंगे आज आप?
1: चांद के पार चलो,
0: अच्छा, कौन सी फिल्म का गाना है ये?
1: चलिए हम तो नाम है यानी से हम।
0: फिल्म का नाम भी है ये, चांद के पार चलो,
1: हाँ,
0: है ना? चलिए, किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे आप? चलिए, ठीक है, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं?
1: मोहम्मद राशिद।
0: मोहम्मद राशिद जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैम।
0: ठीक हैं। कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जिला कौशाम्बी, तहसील सिराथू, कड़ा ब्लॉक, पोस्ट जीता, गांव दौलतपुर, कसार।
0: अरे अच्छा। और क्या करते हैं आप?
1: घर पर रहते हैं मैम, सरफरोश
0: घर पे रहते हैं। कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज आप?
1: का।
0: सरफरोश का। और ये बताइए पहले, सरफरोश का कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: जो हाल दिल का इधर हो रहा है।
0: अच्छा, और सिर्फ यही प्रोग्राम सुनते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित, या कोई और भी प्रोग्राम सुनते हैं?
1: बिल्कुल सुनते हैं मैम आपका कार्यक्रम, सारे
0: सारे सुनते हैं?
1: सुनते हैं मैम।
0: क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है।
1: आप एक दिन और आए थे मैम, हम लगा रहे थे आपसे बात करने के लिए, लगा ही नहीं कॉल, लेकिन आज अच्छा हुआ, खुश नसीबी जो लग गया आपसे बात हो गई।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सुनते हैं फिर आपकी पसंद का ये गाना। आपको किसी
1: मैम
0: को?
1: थोड़ा डेडिकेट करना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ले लीजिए नाम।
1: ये है गाना में, रायबरेली से पिंकी रिंकी, और सीतापुर से बड़ी मस्जिद पास समा परमीन, साजिया अंसारी, साहिबान अंसारी, सीतापुर से यासमीन बानो, और कानपुर से पूनम, कानपुर से चमनगंज से साबिर भाई, बाराबंकी कटरा से तालिब अंसारी, बाबू अंसारी, फैज अंसार, फैज भाई, और वो जावेद अख्तर, जितने
0: अरे वाह,
1: बार आज सुनना है सभी के लिए।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आइए सुनते हैं आपकी
1: ओके
0: पसंद का
1: मैम।
0: ये गाना। नमस्कार।

0: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो
1: हेलो दीदी, नमस्कार
0: हेलो नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी। किराम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश, भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं दीदी, और कल हमारे इधर अच्छी बारिश भी हो गई है दीदी, तो मौसम बड़ा सुहावना हो गया है।
0: अरे वाह क्या बात है, आजकल तो हर जगह जब बारिश होती है तो क्या ही मौसम हो जाता है ना।
1: जी, गर्मी से पूरी
0: गर्मी
1: तरह से
0: में
1: राहत मिल गई है दीदी, थोड़ी बहुत उमस की गर्मी है लेकिन ज्यादा नहीं है
0: चलिए अच्छी बात है। और ये बताइए कि क्या करते हैं आप?
1: दीदी। खेती किसानी करते हैं, और अभी अच्छी बरसात हो जाएगी दीदी, बुआई करेंगे सोयाबीन मक्का धान इनकी।
0: अरे वाह क्या बात है, चलिए। और
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन
1: दीदी,
0: सा
1: फिल्म
0: गा?
1: का नाम है, मैंने आपको बताया था, अंगारा, और गाने के बोले धीरे धीरे बोलना। और दीदी कुछ दोस्तों को याद कर सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: शिवा लोहट जी है, रमेश प्रजापति जी है, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, केसरी सिंह राजपूत जी, राम बाबू शर्मा जी, भरत सिंह अहिवार जी, मांगीलाल चंदेल जी, सावनकर गंगाधर जी, पूरन वर्मा जी, राकेश जी हैं, पूनम दीदी है कानपुर से, बहन संगीता देवनाथ जी, आशुतोष देवनाथ जी, अविनाश तेली जी, गुंजन तिवारी जी, अयोध्या से, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे दीदी, आपको
0: चलिए
1: डेलीकेट रहेगा।

0: देखेंगे, कश्ती अगर मिली है तो किनारे भी मिलेंगे। हेलो मैम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं?
1: नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं बहुत अच्छी हूँ। और क्या ही शायरी आपने पढ़ी, बहुत ही खूबसूरत सी थी।
0: जी,
1: बिल्कुल।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कार्यक्रम में मेरा कॉल आज लग गया, बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे बात हो रही है मैम,
1: बिल्कुल,
0: और
1: हमें भी
0: मैं
1: बहुत
0: पूरा
1: अच्छा लग रहा
0: प्रोग्राम
1: है।
0: सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी श्रोताओं के गाने तो बहुत अच्छे लग रहे हैं।
1: चलिए, क्या बात है। और क्या करती हैं पूनम जी आप?
0: जी मैम, मैं भी फोन ही प्रोग्राम करती हूँ रेडियो
1: अच्छा।
0: आर्यन पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सभी श्रोताओं से जब बातें आती होती हैं, और सभी के विचार आकाशवाणी लखनऊ में साझा करते हैं श्रोता, और हम सभी सुनते हैं, अच्छा लगता है मैम। और आपसे मेरी आज बात हो रही है काफी समय बाद, तो बहुत
1: जी
0: खुशी
1: जी
0: हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आज आप?
0: मैम मुझे गीत सुना दीजिए, फिल्म का नाम है आफसाना प्यार का, और इसी का टाइटल सॉन्ग है, सुनाइएगा मैम। और जानना चाहेंगे मैम आप क्या का फिलहाल, हम दोनों पड़ोसी ही हैं, मौसम कैसा है?
1: मौसम यहाँ कभी बस ऐसे ही लगा पड़ा है, कभी बहुत अच्छी सी सुहाना सा मौसम हो जाता है, कभी धूप हो जाती है। अभी जब मैं आ रही थी स्टूडियो में तो तब भी धूप थी, अब का मुझे पता नहीं है कि कैसा है बाहर।
0: जी, तो ये जो प्रकृति है, धूप छाँव का खेल अभी फिलहाल खेल रही है, कभी छाँव कभी धूप कभी बादल कभी
1: बिल्कुल।
0: सूरज महाराज की तपन तेज हो जाती है, तो ऐसा भी चलता रहेगा बस कुछ दिन तक, इसके बाद बारिश शुरू हो जाएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जी
1: बारिश का ही इंतज़ार है। और जिस तरह से
0: तो
1: आपको है अपने गाने का, तो आइए सुनते हैं आपके
0: मैम
1: पसंद
0: कुछ
1: का ही
0: दोस्तों के
1: गाना।
0: नाम ले लेती हूँ, पहले आप है मेरी प्यारी दोस्त, आप और हमारी
1: थैंक यू।
0: दोस्त रिंकी पिंकी जी है, गुंजन तिवारी जी है, और समा परवीन जी है, अनु पांडे जी है, अविनाश जी है, भगवान सिंह परमार जी है, राम बाबू शर्मा जी है, गुलचंद पाल जी है, रमेश प्रजापति जी है, प्रेम सिंह ससोतिया जी हैं, और राजेंद्र गंगवार जी सुन रहे हैं, राजू भाई भी सुन रहे हैं आपको, और जितने श्रोता सुन रहे हैं लाइव, आपको सभी को गीत सुनाना चाहती हूँ।
1: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
0: जी बहुत शुक्रिया मैम।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: गुड मॉर्निंग
0: गुड मॉर्निंग,
1: जी। मैं
0: नाम
1: अनूप
0: बताइए
1: कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ।
0: जी. अनूप
1: मेरा
0: जी,
1: गांव का नाम है राम कृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट है श्री भूमि, असम से ताल्लुकात है ना। हेलो,
0: जी, बहुत बढ़िया. और जी, क्या करते हैं आप अनूप जी?
1: बात थोड़ा धीमी से आ रहे हैं आपका आवाज,
0: अब आ
1: मतलब
0: रही है?
1: हाँ अभी अभी ठीक ठाक है जी। ईमानदारी से कहूँ तो वाकई मैं साइन बोर्ड लिखता हूँ, और फिर भी क्या होता है, कभी कभी मैं पंडिताई पूजा पाठ भी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा सरनेम है भट्टाचार्य, और इसी के वास्ते मैं दोनों काम कर लेता हूँ, साइन बोर्ड
0: हाँ,
1: और दूसरी साइड में पूजा पाठ, है ना
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है. ये बताइए कि क्या सुनना
1: जी।
0: पसंद करेंगे
1: जी
0: आज आप?
1: जी तो किसी का अपना बनाओ, तो किसी को अपना बनाओ तो दिल से बनाओ, जुबान से नहीं। किसी को गुस्सा करो तो जुबान से करो, दिल से नहीं,
0: क्या बात है.
1: क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश करता है जिसमें कोई गांठ नहीं होती, है ना जी।
0: क्या बात है. चलिए, और गाने का नाम बता दीजिए, कौन सा सुनेंगे?
1: जी आज ये फिल्म का नाम है यारा ना, अमिताभ बच्चन जी का फिल्म है, और गाने का बोल ऐसे है, किशोर कुमार जी ने गाया है, ऐसे में गाना है, छू कर मेरा मन को किया तूने क्या इशारा, तोमार होलो शुरू आमार होलो सारा, ऐसे करके
0: क्या
1: गाने हैं।
0: बात
1: कुछ
0: है,
1: दोस्तों को
0: बहुत खूबसूरत
1: फटाफट
0: गाया
1: याद
0: आपने
1: करता हूँ,
0: जी.
1: पहले प्रेमजीत चक्रवर्ती जी, बसंतीलाल सूर्यवंशी जी, सतीश भाई, और कुछ कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी है, और है लोकेंद्र वर्मा जी है, और है हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे जी
0: चलिए.
1: जी और हमारे दोस्त थे अनवर बिहारी भाई के लिए,
0: बहुत
1: श्रीकांत
0: बहुत
1: जोशी जी के लिए,
0: शुक्रिया.
1: और ढेर सारे श्रोता अभी सुन रहे हैं इस मन भावन प्रोग्राम सबके लिए, है ना
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में कॉल करने के लिए. आइए, सुनते हैं आपकी
1: जी।
0: पसंद का
1: थैंक
0: गाना.
1: यू।
0: वेलकम.

0: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। दोपहर के 12:01 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बाल मंच।

0: मौज है, मस्ती है, नानी का घर है, आजकल दिन रात खुशियों की नजर है।
1: बीत रहे हंसते गाते कितने प्यारे ये दिन, छुट्टी के दिन अधूरे सैर सपाटे के बिन।
0: आ चुके हैं हम लेकर आपका कार्यक्रम मनपसंद
1: बाल मंच। बाल मंच के बाल साथियों, आज के कार्यक्रम में आपके साथ हैं
0: मैं अनुषा त्रिपाठी
1: और मैं आपकी राजलक्ष्मी दीदी। स्वीकार कीजिए हमारा
0: जय हिंद। आज जब मैं आकाशवाणी स्टूडियो आ रही थी तो रास्ते में मैंने एक आदमी को देखा जिसके चोट लग गई थी और उसके खून बह रहा था।
1: अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, जब किसी को चोट लगती है और खून बहता है तो उसका इलाज जल्दी से जल्दी होना चाहिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो सकती है।
0: गड़बड़? कैसी गड़बड़ दीदी?
1: अनुषा, कई बार ज्यादा खून बह जाने पर व्यक्ति की जान भी जा सकती है। पता है रक्त मतलब खून हमारी जिंदगी का मुख्य आधार होता है।
0: अच्छा दीदी।
1: हाँ, खून हमारे फेफड़ों तक ऑक्सीजन और पाचन तंत्र से पोषक तत्वों को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा शरीर के तापमान को संतुलित रखने में भी सहायता करता है।
0: अच्छा, खून हमारे शरीर के अंदर इतने सारे काम करता है।
1: हमारे शरीर में हमारे वजन का लगभग 7-8% खून रहता है। अगर ये इससे कम हो जाता है तो कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं और कई बीमारियों में इसे चढ़ाना भी पड़ता है।
0: जी दीदी, मेरी दादी जी का जब ऑपरेशन हुआ था उन्हें खून चढ़ाया गया था।
1: हाँ, और पता है ये खून एक इंसान से निकाल कर दूसरे इंसान में चढ़ाया जाता है, मगर हाँ ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए और जो खून दे रहा उसे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए।
0: अच्छा दीदी।
1: अनुषा, खून को लैब में नहीं बनाया जा सकता है, इसीलिए डोनेशन के सहारे ही एक दूसरे को दिया लिया जाता है। इस बात की याद दिलाने और ब्लड डोनेशन को सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल 14 जून को पूरी दुनिया में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है।
0: दीदी मैंने भी पढ़ा है इस दिवस को पहली बार 2004 में मनाया गया था।
1: बिल्कुल सही कहा अनुषा। और एक बात, ये दिन कार्ल लैंड स्टीनर के जन्मदिन यानी 14 जून को मनाते हैं।
0: अच्छा,
1: आप सब तो जानते ही होंगे कि लैंड स्टीनर ने ही ब्लड ग्रुप्स सिस्टम की खोज की थी। उन्होंने खून के 4 समूह बताए थे, ए बी ए बी और ओ। इस खोज के बाद खून की कमी से होने वाली बीमारियों को दूर करने में बहुत मदद मिली थी।
0: दीदी जब रक्त हमारे लिए इतना जरूरी है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा।
1: हमें उन

लोगों का भी सम्मान करना है जो जरूरत पड़ने पर दूसरों को अपना खून डोनेट करते हैं, उनका जीवन बचाते हैं। अपने लिए तो सभी जीते हैं, हमें दूसरों के लिए भी जीना आना चाहिए।

0: वाह दीदी, बहुत ही प्यार और इंस्पिरेशन से भरा गीत सुनवाया आपने।
1: अभी तो हमारे पास और भी बहुत सारी प्रेरणादायक बातें हैं।
0: वो तो हमेशा ही रहती है दीदी, तो अब क्या सुनवाएंगी आप हमको?
1: अनुषा, कल मतलब 15 जून को हम मनाएंगे विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस।
0: मतलब दीदी?
1: अनुषा, आज बड़े बूढ़ों के साथ बुरा व्यवहार पूरी दुनिया में एक सामाजिक समस्या बन गया है। उनकी अच्छे से देखभाल हो और उनके मानवाधिकारों की रक्षा हो, इसीलिए दिवस मनाया जाता है।
0: ओह, लेकिन दीदी हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं करते। हमारे यहाँ तो मेरे दादा दादी नाना नानी का बहुत अच्छे से सम्मान करते हैं और उन्हें बहुत अच्छे से हम लोग प्यार भी करते हैं। हमारे घर पर तो ऐसा कुछ नहीं होता।
1: अनुषा, हमारे देश में तो हमेशा से ही बुजुर्गों का सम्मान किया जाता आ रहा है। पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध ने कुछ लोगों को भटका दिया है, जिसके चलते आज इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
0: जी दीदी,
1: लेकिन जहाँ बड़े बूढ़ों के साथ ऐसा होता है वो ना हो, डॉक्टर नीतू बत्रा दीदी से सुनते हैं ये वार्ता। बुजुर्ग हमारे घर की शान, हम करें इनका सम्मान।
2: गुड आफ्टरनून बच्चों, खूब सारा प्यार और ढेर सारा दुलार। आज मुझे आप सबके बीच बातचीत करने का मौका मिला है और इसलिए मैं बहुत खुश भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम नीतू बत्रा है और मैं एक समाजशास्त्री हूँ और मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन सोशल जेरेंटोलॉजी है। अब आप पूछेंगे ये कौन सी पढ़ाई है? तो ये जो पढ़ाई है ना बच्चों, ये सीनियर सिटीजन्स के बारे में है या ओल्डर पॉपुलेशन के बारे में है या आप समझ लीजिए बुजुर्गों के बारे में है। हम उनको आजकल एक नए शब्द से भी पुकारते हैं, वो है समृद्ध जन। हम इस पढ़ाई में उनके जीवन की चुनौतियाँ या चैलेंजेस, जो कि सामाजिक चुनौतियाँ हो सकती हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं, फिनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं या हेल्थ रिलेटेड इनके स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ भी हो सकती हैं, और उनसे संबंधित पॉलिसी और प्रोग्राम्स जो कि सरकार चलाती है उसके बारे में पढ़ते, समझते और रिसर्च करते हैं। और इसी सिलसिले में जब हम रिसर्च करने ओल्ड एज होम गए, आपको पता है इस लखनऊ शहर में भी 8 से 10 केयर होम्स या ओल्ड एज होम्स हैं, जहाँ पर बहुत से बुजुर्ग रहते हैं। जैसे किसी के बच्चे बाहर चले गए एजुकेशन की वजह से, जॉब की वजह से, तो वो वहाँ पर चले जाते हैं जब उनको कोई देखभाल करने

0: वाला नहीं होता, या कुछ बच्चे अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखते, इस कारण भी वो लोग केयर होम्स में रहते हैं। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। जब हमने उनसे बात की ना, तो कुछ लोग तो बहुत खुश थे, लेकिन कुछ लोग थोड़े उदास भी थे। क्यों? देखिए, ये हमारा शरीर है, ये एक बायोलॉजिकल एजिंग होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं और हमारी एनर्जी भी कम हो जाती है। लेकिन बहुत से बाबा दादी नाना नानी तो बहुत एक्टिव रहते हैं, पर कुछ वीक भी हो जाते हैं, और कुछ लोग ऊंचा भी सुनने लगते हैं, उनको काम करने के लिए हेल्प भी चाहिए होती है, और वो जल्दी थक जाते हैं। उनका मन होता है कोई उनको पानी पिला दे, कोई उनका तौलिया धूप में डाल दे, तबीयत खराब होने पे दवाई दे दे, या चाय बनाकर पिला दे, या उनका मोबाइल चार्जिंग में लगा दे, या मोबाइल के ऐप समझने में हेल्प कर दे, या वो जब अकेले हों तो उनसे कोई आके दो बातें कर लें। बाबा दादी नाना नानी को पता है किससे कहानियां सुनाने में बड़ा मजा आता है। आपके घर में भी बाबा दादी नाना नानी होंगे, क्या आप उनकी हेल्प करते हैं? और आप उनसे बात तो करते ही होंगे। आज जो हम बात कर रहे हैं ना, वो 15 जून की बात कर रहे हैं, जिसको इंटरनेशनली एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है, और ये जून का महीना इंटरनेशनल एल्डर अब्यूज अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। ये ऑफिशियली 2011 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रिकग्नाइज किया गया था। इसमें कई प्रकार के अब्यूज की बात की गई है। अब्यूज का मतलब गाली देना ही नहीं होता है। अब्यूज कई तरह के होते हैं, फिजिकल अब्यूज, इमोशनल या साइकोलॉजिकल या मानसिक, फिनेंशियल अब्यूज, सोशल अब्यूज और डिजिटल अब्यूज। जैसे किसी की बात को अनसुना कर देना, बातों पर ध्यान ना देना, उनकी बातों को ना सुनना, इग्नोर करना, उनको समय ना देना, ये सब साइकोलॉजिकल या इमोशनल अब्यूज में आते हैं। तो हमको पता है आप सब बड़े व्यस्त रहते हैं, आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं जिनके पास बहुत सारी पढ़ाई का काम है, होमवर्क करना होता है, और बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी जाना होता है और पार्टिसिपेट करना होता है। इन तमाम कामों के बीच शायद हम जानबूझकर नहीं, लेकिन अनजाने में हम अपने बाबा दादी और नाना नानी के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। कहीं मिस हो जाता है कि हमें उनका ध्यान रखना है, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना है, और पापा मम्मी की लाइफ भी बड़ी बिजी बिजी सी होती है। तो क्या कुछ ऐसे पल निकल सकते हैं जिसमें हम साथ रहें, उनसे बात करें? इसी सिलसिले में मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। अब ये कविता है या कुछ शब्द, ये आप बताइएगा, आपके साथ शेयर करती हूँ। बच्चों, तुम सूरज हो, चांद हो और तारे, अपने दादा दादी और नाना नानी के, छूट गए वो थोड़ा पीछे इस नई दुनिया में, तुम पहचान बनो, तुम साथ बनो उनका, जानो कुछ उनसे उनके खेल पुराने, जानो उनसे कुछ उनके खेल पुराने, गुल्ली डंडा क्रिकेट हॉकी कबड्डी और पुलिस चोर, जिसको तुम कहते हो हाइड एंड सी, कहते थे वो उसको छुपन छुपाई, बताओ कुछ अपने खेल खिलौने, वीडियो गेम मोबाइल गेम की दुनिया का सफर, सोशल मीडिया की रंग बिरंगी दुनिया, ये अनूठे ऐप जो झटपट पहुंचा देते हैं सामान, छेड़ो कुछ अपनी बातें, जानो कुछ उनकी बातें, यही होगी उनके लिए सबसे बड़ी सौगात, ये सौगात जो है आपकी हो सकती है कुछ आपका समय उनको देने की, हो सकती है उनको सम्मान देने की, उनके छोटे मोटे कामों को कर देने की, और कुछ वक्त उनके साथ बिताने की, उनके किस्से और कहानियां सुनने की। और बच्चों, आपको पता है एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर भी है, 14567, 1 के आगे 4567, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप देखें कि कोई बाबा दादी, कोई नाना नानी, कोई बुजुर्ग किसी परेशानी में है, ये नेशनल हेल्पलाइन है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, या किसी भी बुजुर्ग के साथ अगर कोई दिक्कत है तो उन्हें आप ये नंबर बता सकते हैं। मुझे लगता है कि आप सब बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं और अपने दादा दादी और नाना नानी के साथ ऐसे ही खुश से रहेंगे।
1: वाह दीदी, डॉक्टर नीतू बत्रा दीदी ने तो बहुत ही बढ़िया ढंग से हमें अपने बड़ों का सम्मान करने के बारे में बताया, इसके लिए दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अनुषा, हमारी जो संस्कृति थी ना, वो ऐसी ही थी कि हम अपने बड़ों बूढ़ों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। इन्हीं विचारों को लेकर ममता उपाध्याय दीदी ने लिखी एक नाटिका, जिसका शीर्षक है दादी की सीख।
1: हमारे सभी दोस्त सुने ये नाटिका।
3: आहा, लगता है दादाजी मार्केट से आ गए, देखता हूँ मेरे लिए क्या लाए हैं।
4: अरे

0: चिंटू, तुम अभी घर ही पर हो? शाम के 5 बज रहे हैं, दोस्तों के साथ खेलने नहीं जाओगे? अरे
1: बस जाने ही वाला था दादाजी, लाइए थैला मुझे दे दीजिए।
0: नहीं, बहुत भारी है।
1: अरे दीजिए ना दादाजी, मैं 10 साल का हो गया हूँ, आराम से उठा लूंगा। और देखिए ना आप कितने थक गए हैं।
0: अच्छा भाई, ये ले लो थैला और किचन में मम्मी को दे दो। और हाँ चिंटू, इसमें तुम्हारे फेवरेट चॉकलेट्स हैं और एक टी शर्ट भी है, निकाल लेना तुम।
1: यू आर ग्रेट दादाजी, थैंक यू वेरी मच।
2: अरे चिंटू बेटा, किचन की ओर जा रहे हो तो मेरे लिए एक गिलास पानी ले आना।
1: ओके दादी जी।
2: सुनो जी, ये रोज रोज चॉकलेट लाना अच्छी बात नहीं। कपड़े खिलौने भी चिंटू के पास बहुत सारे हैं, ये सब लाकर तुम चिंटू की आदत बिगाड़ दे रहे हो।
0: अरे बच्चा है, खुश हो जाता है ये सब पाकर।
2: बच्चे को खुश करने से ज्यादा जरूरी है उसे अच्छे संस्कार देना।
1: अच्छा दादी जी, दादाजी को फिर भड़का रही हैं। मैं 2 गिलास पानी लाया था, लेकिन अब 1 गिलास पानी मैं दरवाजे के पीछे रख दूंगा। लीजिए दादाजी पानी।
2: मेरे लिए पानी नहीं लाए चिंटू।
1: ओ भूल गया, आप मम्मी से मांग लीजिए।
2: अरे बेटा, दौड़ कर तुम ही ला दो ना।
1: नहीं, मैं खेलने जा रहा हूँ, देर हो रही है मुझे। बाय दादाजी।
0: लो ये पानी तुम पी लो, मुझे ज्यादा प्यास नहीं लगी है।
2: देखा आपने, चिंटू अक्सर मुझसे ऐसा ही व्यवहार करता है। मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन वो बस दादाजी दादाजी रटता रहता है। आप उसकी सभी डिमांड पूरी करते रहते हो।
1: ओह नो, अब मैं क्या करूं? मम्मी को बुखार हो गया है, पापा ऑफिस की मीटिंग में व्यस्त हैं, और दादाजी 2 दिन के लिए बड़े दादाजी के पास कानपुर गए हुए हैं। अब मुझे स्टेडियम कौन ले जाएगा? आज प्रैक्टिस में नहीं गया तो फाइनल टीम की लिस्ट से मेरा नाम कट जाएगा। स्टेडियम 10 किलोमीटर दूर है, मुझे कोई अकेले जाने भी तो नहीं देगा।
3: दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान।
1: पता नहीं ये गाना कौन बजा रहा है, पक्का पड़ोस वाली आंटी ये गाना सुन रही होंगी रेडियो पर। दादी से कहूं? अरे नहीं, मैं दादी का कहना नहीं मानता हूँ, तो वो मेरी बात क्यों मानेंगी? अरे दादी तो इधर ही चली आ रही हैं।
2: अरे चिंटू, तुम बड़े परेशान दिख रहे हो, क्या बात है बेटा?
1: कुछ नहीं दादी, स्टेडियम जाना था फाइनल प्रैक्टिस के लिए, मम्मी को बुखार आ गया, अब मैं किसके साथ जाऊं?
2: मैं ले चलती हूँ ना, तुम फटाफट तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी बुक कर रही हूँ।
1: आप ले चलेंगी दादी?
2: अरे क्यों नहीं चिंटू, मैं तुम्हारी दादी हूँ, तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? लो गाड़ी आ भी गई।
1: आई एम सॉरी दादी।
2: सॉरी किस बात की बेटा?
1: मैं आपकी कोई बात नहीं मानता हूँ दादी, आप कुछ करने को कहती हैं मैं अक्सर मना कर देता हूँ।
2: लेकिन तुम ऐसा क्यों करते हो?
1: मैंने कई बार सुना आप दादाजी से कहती हैं कि चिंटू की हर बात मत मानो, तो मुझे लगा कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करती।
2: अरे बेटा, मैं तुम्हारे दादाजी से ये सब इसलिए कहती हूँ जिससे तुम समझदार और व्यवहार कुशल बनो, और सिर्फ घर वालों से ही नहीं बाहर वालों से भी प्यार और सम्मान पाओ।
1: दादी आई लव यू, आप ग्रेट हो।
4: बच्चों अभी आपने सुनी ये नाटिका दादी की सीख, आलेख और प्रस्तुति ममता उपाध्याय दीदी की थी। इसमें भाग लिया नीतिक गुप्ता ने, ओम प्रकाश शर्मा भैया ने और पुनीता वर्मा दीदी ने।
5: दीदी सचमुच नाटिका सुनकर तो हमने यही सीखा कि अपने बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए।
4: बिल्कुल अनुषा, उनसे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। वे हमारे लिए वट वृक्ष जैसे होते हैं। जैसे अभी दादी ने समय आने पर चिंटू की सहायता की, हमें हमेशा उनका कहना मानना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अनुषा हमें अपनी अच्छी परंपराओं को नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों?
5: बिल्कुल दीदी, मेरी मम्मी भी यही कहती है, हम सबको परिवार में मिलजुल कर रहना चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए।
4: बिल्कुल, तभी तो सच्ची खुशियाँ मिलेंगी।

0: मजा आ गया दीदी।
1: अनुषा, जैसे गीत सुनकर मन को अच्छा लगता है वैसे ही दिमाग तरोताजा हो और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए?
0: दीदी, हेल्दी खाना, साफ पानी, पूरी नींद लेना, अच्छी आदतें, यही सब कुछ।
1: बिल्कुल, और अब तो योग दिवस भी आने वाला है।
0: जी दीदी, अगले संडे को ही तो है।
1: हाँ, सही कहा अनुषा। हम बच्चे कौन कौन से आसन करें जिनसे हम स्वस्थ रहें, हमारी याददाश्त बढ़े और हमारा मन पढ़ाई लिखाई में ज्यादा लगे, इसके बारे में आज हमें बताने जा रही हैं अनुपमा मिश्रा दीदी। दीदी योग प्रशिक्षक हैं, तो सभी दोस्त सुने ये वार्ता, बाल सुलभ आसन, स्वस्थ रखें तन मन।
2: बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है, आप लोगों ने अब तक कौन कौन से आसन सीखे हैं? आप तो रोज योग करते होंगे, है ना? रोजाना योग करने से हमारे शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ होता है, क्योंकि योग ही एक ऐसा माध्यम है तन से मन को जोड़ता है। आज हम आपको कुछ ऐसे आसनों के बारे में बताते हैं जिनसे आपका शरीर, मन, दिमाग सब स्वस्थ रहेंगे। तो आप सब सुनने और मेरे साथ ये क्रियाएं करने को तैयार हैं, है ना? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले बात करें सूर्य नमस्कार की। इसकी 12 क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले हमें सुबह उठकर सूर्य के सामने खड़े होकर नियमित रूप से सूर्य नमस्कार के 12 आसन करने हैं, इसका पूरा लाभ उठाना है। इसके बाद आता है हमारे शारीरिक विकास के लिए कौन कौन से आसन करने हैं, तो आपको ये आसन करने होंगे। सबसे पहले करते हैं वृक्षासन। तो वृक्षासन में हम पहले दाहिने पैर को उठा के अपने बाएं पैर के जांघ के किनारे लगाते हैं और दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और सामने अपने किसी एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और जितनी देर भी हम रुक पाए करते हैं। फिर उसके बाद आराम से नीचे पैर उतारते हैं, फिर दूसरे पैर को भी उसी तरह से दोहराते हैं। तो ये वृक्षासन होता है, ये शरीर का संतुलन सुधारता है, पैरों की मांसपेशियों को मजबूत रखता है और लंबाई बढ़ाता है। इसके साथ साथ दूसरा है ताड़ासन। ताड़ासन जब करेंगे तो ताड़ासन में दोनों पैरों के बीच लगभग 1-1.5 फुट की दूरी रखेंगे और दोनों हाथ को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथों को अपने कंधे के समानांतर रखेंगे और शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांस को रोके रहेंगे जब तक हम कर पाए करेंगे, उसके बाद आराम से दोनों हाथों को नीचे अपनी कमर के पास ले आते हैं। ताड़ासन से शरीर में खिंचाव आता है और बच्चों की लंबाई बढ़ती है। इसके बाद तीसरा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन में पीठ के बल बाईं करवट से लेट जाते हैं, अपनी बाईं हथेली पर दाहिनी हथेली रखते हुए दोनों हाथ सीधा करके अपने चेहरे को, सीने को ऊपर की तरफ उठाते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, जितनी देर

0: सांस भरते हुए हम ऊपर कर सकते हैं, करते हैं और उसके बाद आराम से नीचे आ जाते हैं। इससे रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, सीने व फेफड़ों को खोलकर श्वसन तंत्र में सुधार करता है। चौथा है बाल आसन, इसको शव आसन भी कहते हैं। आराम से पीठ के बल लेट जाते हैं, दोनों हाथ पैरों को फैला लेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देते हैं और आंखों को बंद करके अपने पूरे शरीर को निहारते हैं और देखते हैं हमारा शरीर पूरी तरह से ऊर्जावान है, हमारे मन में सकारात्मक विचार आ रहे हैं कि हमें संसार की सभी वस्तुएं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी बहुत सुंदर और मनोरम महसूस हो रहे हैं और उसके बाद धीरे से हम शव की तरह नींद में सो जाते हैं, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। लगभग 3 से 5 मिनट इसको करते हैं और फिर उठ के बैठ जाते हैं। पीठ और गर्दन के तनाव को ये कम करता है, बच्चों को शांत और तनाव मुक्त रखता है। तो ये तो हो गए आसन। अब इसके बाद कुछ प्राणायाम भी होते हैं जो हमारे मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए आवश्यक होते हैं और इनको रोजाना करना चाहिए। तो सबसे पहला है अनुलोम विलोम प्राणायाम, मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाता है ये प्राणायाम, जिससे याददाश्त तेज होती है। इसमें अपने दाहिनी तरफ नाक में सांस को भरना है और बाईं तरफ से सांस को निकाल देना है, फिर जिधर से हम सांस निकालते हैं उधर से ही फिर भरते हैं और उनको दाहिनी तरफ से निकालते हैं, यही क्रिया बार बार करनी होती है। इसके बाद दूसरा मुख्य प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम, तो ये भी पाचन तंत्र को मजबूत करता है और हम जो कुछ भी खाते पीते हैं सब आसानी से हजम हो जाता है, मोटापा घटता है, उसके अलावा बीपी लो होने की समस्या दूर होती है। इसमें सांस को बाहर निकालते हैं झटके से और पेट को अंदर खींचते हैं, इसको भी 1 सेकंड में एक बार करना है। उसके बाद तीसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, तो भ्रामरी प्राणायाम भौंरे की तरह आंखें बंद करके मुंह भी बंद नाक से सांस भरते हुए भौंरे की तरह गुंजन करते हैं, तो इससे ये बच्चों का चिड़चिड़ापन दूर होता है और उनके मन को शांत रखता है। अगला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, इसमें श्वसन प्रणाली मजबूत होती है और शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ता है। इसमें बस मुंह बंद करके नाक से सांस लेना है और निकालना है, लेना है और निकालना है। पहले इसको हम धीमी गति से, फिर मध्यम गति से और फिर तीव्र गति से करते हैं। तीव्र गति में जैसे धौंकनी चलती है उस तरह से इसका स्पीड हो जानी चाहिए। फिर करते हैं ओम का उच्चारण, आंखें बंद करके सारा ध्यान अपने दोनों भौंहों के बीच लगाते हुए हम करते हैं पवित्र ओम का उच्चारण। इससे ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। और सबसे विशेष बात यह है कि हम जो भी आसन या प्राणायाम की शुरुआत करें उनमें किसी योग्य प्रशिक्षक के सानिध्य में ही करना चाहिए शुरुआत में, और जब हम निपुण हो जाएं तब आराम से हम नियमित रूप से अपने आप कर लें और अपने आप को शारीरिक मानसिक रूप से सशक्त बनाएं और अपने जीवन को उज्ज्वल बनाएं। तो बच्चों ये रहे आज के योगासन और प्राणायाम जो आपको नियमित रूप से करना है और अपने आप को ऊर्जावान बनाना है।
1: अनुपमा मिश्रा दीदी ने तो हम बच्चों के लिए उपयोगी आसनों के विषय में बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए दीदी को ढेर सारा धन्यवाद।
2: अनुषा अब तो आप योग से जुड़कर अपने तन मन दोनों को स्वस्थ बना सकती हो।
1: जी दीदी बिल्कुल, कुछ तो आसन मैं करती थी, बाकी के आसन अब मैं जरूर करूंगी।
2: हाँ तभी तो हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा हो पाएगा, जो जानकारी हम अपने बाल साथियों को देते हैं अगर वो इसका लाभ उठाते हैं तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। और जानकारी की बात चल ही रही है तो अब खुलने जा रहा है नॉलेज बैंक।
1: दीदी नॉलेज बैंक में कौन सी जानकारी निकालने वाली हैं आप?
2: थोड़ा धैर्य रखो अनुषा, बताते हैं। तो ये निकली जानकारी इस सप्ताह होने वाले दिवसों की। सबसे पहले बात करते हैं 15 जून की, इस दिन मनाया जाएगा विश्व पवन दिवस।
1: पवन दिवस?
2: हाँ, इसे पहली बार 2009 में मनाया गया था। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को पवन ऊर्जा के फायदे, उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति जागरूक करना है। पता है ये पवन ऊर्जा हवा से बनती है।
1: अच्छा दीदी।
2: और 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस मनाया जाएगा। ये दिन धरती के रेगिस्तान बनने और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए दुनिया के लोगों के बीच में सहयोग के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है।
1: अच्छा दीदी एक जानकारी मैं भी बताऊं?
2: बिल्कुल बताओ।
1: 18 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है।
2: अच्छा ये तुम्हारी पसंद का दिवस है ना, इसीलिए?
1: जी दीदी, जब हम सब पिकनिक मनाए जाते हैं तो हमारा पूरा परिवार हम लोगों के साथ होता है और साथ ही

0: प्रकृति का भी साथ होता है।
1: बिल्कुल, प्रकृति के साथ के आनंद की याद दिलाने वाला एक दिवस 19 जून को भी मनाया जाएगा।
0: सच्ची दीदी, कौन सा?
1: विश्व सैर दिवस।
0: अरे वाह, इसके बारे में तो मैंने पहली बार सुना।
1: इसे इसीलिए मनाया जाता है कि लोग इस बात को याद करें, महसूस करें कि जीवन सिर्फ भागने का नाम नहीं है, कुछ पल जीवन को जीना भी है। आराम से प्रकृति की सुंदरता को निहारने का समय निकालना होगा। फूल, पौधे, तितली, आकाश वगैरह वगैरह जो जीवन की आपाधापी में पीछे छूट गए हैं, उनसे फिर मुलाकात कीजिए, उन्हें देखिए, महसूस कीजिए, इसीलिए दिवस मनाया जाता है।
0: इस बार हम भी इस दिवस को जरूर सेलिब्रेट करेंगे। नदी किनारे, गांव में घूमने जाएंगे और उन सारी चीजों को देखेंगे, उनसे बतियाएंगे जो आपने हमें बताई।
1: बिल्कुल सेलिब्रेट करना। पिकनिक और सैर सपाटे की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल आप सभी की छुट्टियां चल रही होंगी और छुट्टियां बिना सैर सपाटे के अधूरी ही रहती हैं। इससे हमें खुशियां और ताजगी मिलती है। अनुषा, अब नॉलेज बैंक का दरवाजा करते हैं बंद और जरा देखो घड़ी की ओर।
0: अरे दीदी, बात करते करते तो समय का पता ही नहीं चला।
1: हाँ, कार्यक्रम का समय तो खत्म होने वाला है। हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इसके लिए हमारा ईमेल एड्रेस है
0: bmpg.airlko@gmail.com।
1: और अनुषा यहाँ तक आते आते इतना थक गई है कि उसकी आवाज कैसी निकल रही है, तो एक बार हम फिर से बता देते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है bmpg.airlko@gmail.com। अनुषा, अब आ गई विदा लेने की बेला। अगले कार्यक्रम में अपने बाल साथियों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति
0: अनुषा त्रिपाठी को
1: और राजलक्ष्मी दीदी को।
2: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बाल मंच। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

कार्यक्रम में पहला गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म शागिर्द से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसके बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी का।

और आइए अब आपको अगला गाना सुनवाते हैं फिल्म कश्मीर की गली से, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, जिसका संगीत दिया है ओपी नैयर ने और बोल लिखे हैं SH बिहारी ने।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म कर्ज से इस गाने को, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लव इन टोक्यो, इस फिल्म का गाना सुनवाने जा रहे हैं आपको लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल हसरत जयपुरी के हैं और संगीत शंकर जयकिशन का।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार नगमे अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को हैं और अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा से क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की संगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी

किरण कुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। राम सजीवन, ग्राम खरेहला, थाना देवा, जनपद बाराबंकी से हमें सूचित करते हैं कि मधु, जिनकी आयु 26 वर्ष है, रंग गेहुआ, ऊंचाई 4 फीट 8 इंच, चेहरा लंबा है, आँखें कमल आकार की हैं, वो दिनांक 18 फरवरी 2026 से कहीं लापता हैं। मधु ने गुमशुदगी के वक्त सलवार सूट पहना हुआ था। इनकी ठुड्डी पर काला तिल है। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9792369361। नंबर एक बार पुनः सुन ले, 9792369361। रमेश कुमार पांडे, मोहल्ला सेलारा, कस्बा इछौली, थाना टिकैत नगर, जनपद बाराबंकी से हमें सूचित करते हैं कि सोफियान उर्फ सोफे, जिनकी आयु 18 वर्ष है, कद 5 फुट, रंग सांवला, शरीर दुबला पतला है, वो दिनांक 24 मार्च 2026 से कहीं लापता हैं। सुफियान का दाहिना हाथ पोलियो से ग्रसित है और ये मानसिक रूप से कमज़ोर हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर आप इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। पता है राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, महानगर लखनऊ। और इसी के साथ खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं अब समाप्त होती हैं।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
5: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।

मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 होने को हैं और अब से बस कुछ ही देर में इलाकाई खबरें नशर की जाएंगी।

0: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किया। जनता दर्शन के दौरान 150 से ज्यादा लोगों ने अपने मसाइल वजीर आला को सुनाए। लोगों में एतमाद पैदा करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वे उनके मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाएं और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने गाय की पनागाह में गाय की खिदमत भी की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे के दौरान आज दोपहर बाद गोरखपुर महानगर हल्के में 926 रुपए से ज्यादा की लागत वाले 226 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आला मुख्तलिफ स्कीमों के फैजियाब अफराद को सर्टिफिकेट भी तकसीम करेंगे। वाजिर है कि वजीर आला ने कल अपने दौरे के पहले रोज गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 319 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के फैजियाब अफराद को सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस दौरान वजीर आला ने आवाम को खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम की क्यादत में यही नया हिंदुस्तान है। उन्होंने कहा,
1: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी, और प्रगति होगी नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
0: सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए मीटिंग में शिरकत के लिए अयोध्या पहुंचे राम मंदिर की तामीर कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर की तामीर और एहतियात के स्कैंडल की तहकीकात से मुतालिक अहम मालूमात शेयर की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चंदा से मुतालिक मुबैना घोटाले की जांच की गई है। हुकूमत ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर SIT तश्कील देकर मामले में अपनी संजीदगी का मुजाहरा किया है। उनके मुताबिक तहकीकती टीम में 3 सीनियर और तजुर्बेकार अफसरान शामिल हैं। हुकूमत ने 1 हफ्ते में इब्तदाई रिपोर्ट और 15 दिन में हतमी रिपोर्ट तलब की है। SIT की सिफारिशात की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर इम्तिहानी एहलकारों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है। प्रोग्राम का मकसद NTA इम्तिहानात की निगरानी और अमल को मजबूत बनाना और ऑफलाइन कलम और कागज पर मबनी इम्तिहानात के हमवार, महफूज और मियारी इनकाद को यकीनी करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क्यादत में मुल्क ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर चलते हुए गुज़िश्ता 12 सालों में काबिल जिक्र तरक्की की है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ इस मौके की मुनासिबत से एक खसूसी सीरीज़ नश्र कर रहा है। आज हम शहरियों की ज़िंदगियों में आसानी लाने के लिए हुकूमत की कोशिशों के बारे में मालूमात फराहम कर रहे हैं।
2: केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। GST ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में GST संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी हैं। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है।
0: भारतीय फिजाइया का AN-32 तैयारा कलासाम में गिरकर तबाह हो गया। यह हादसा जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर पेश आया। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर एयर चीफ खेमा राम कुमावत और अग्निवीर एयर चीफ दानिश आलम की इस हादसे में मौत हो गई। वाजिर है कि तैयारा हादसे में उत्तर प्रदेश के बागपत के कंडेरा गांव के स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह और अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके

के गांव सालपुर के बाशिंदे सर्जेंट जितेंद्र शर्मा शामिल थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तैयारा हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज के जरिए आज मुनक़िद होने वाले गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर भर्ती इम्तिहान के लिए उम्मीदवारों की मुतवक्का भीड़ को एडजस्ट करने के लिए वसी और खसूसी इंतजाम किए गए हैं। उम्मीदवारों और दीगर मुसाफिरों को महफूज और आरामदेह सफर फराहम करने के लिए अगर ज़रूरत हो तो इम्तिहान की खसूसी ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। जौनपुर, इटावा और अमरोहा में भी सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान यह इम्तिहान मुनक़िद किया जा रहा है। इम्तिहान को राजदारी और मुनसिफाना बनाए रखने के लिए मुतल्लिक़ अफसरान को जरूरी अहकाम दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के कई जिला में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज तक रियासत के मगरबी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। ताहम आज से रियासत के मशरकी हिस्सों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

0: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज इतवार है, जिसमें आज की झलकी का शीर्षक है मच्छर का चक्कर। आलेख नीलम राकेश का है।
1: रतनलाल, ओ मेरे रतनलाल, अरे रतनू, रतन बाबू,
2: अरे कौन है? अरे सुरेंद्र भैया, हाँ आ जाओ अंदर आ जाओ।
1: ये क्या है यार, है? आज इतवार के दिन इतनी गर्मी में गठरी बने बैठे हो, ये चादर ऊपर से नीचे तक ओढ़ के का देख रहे हैं भैया हम? अरे
2: क्या करूं भैया, है इन मच्छरों ने तो आफत कर दी है।
1: हैं? ये क्या बात हुई? अच्छा मच्छरों को छोड़ो, आज ये अपना दोस्त महेश है ना,
2: हाँ।
1: उसके बेटे की शादी है, चलना नहीं क्या यार? हैं? उड़ो उड़ो, अच्छा उड़ो, जल्दी तैयार हो, तैयार हो।
2: नहीं बाबा नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ भैया तुम भी घर पर रहो, अरे मच्छरों से बचो, जिंदा रहो, हाँ समझे?
1: कैसी पचकानी बात कर रहे हो यार रतन, पहले तो तुम अपने इस चादर से बाहर आओ, इसको इधर करो, हटाओ इसको, लग रहा है तुमसे नहीं किसी गटरी से बात कर रहा हूँ यार।
2: अम्मा बचकानी बातें ना करो यार, है अब तुम न्यूज नहीं देखते क्या, अखबार नहीं पढ़ते? चार ओर डेंगू मलेरिया फैला हुआ है, तुम्हें घूमने की पड़ी हुई है।
1: अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, हर साल इस मौसम में ये बीमारियाँ फैलती है।
3: ओह नो,
1: मच्छरों का मौसम ही है, क्या करोगे भाई, हाँ बताओ।
2: अरे यार हैं? लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं लग रही तुमको?
4: अरे कौन है? सुरेंद्र भैया आप? नमस्ते नमस्ते भैया,
5: नमस्ते भाभी, नमस्ते भाभी,
4: आप कब आए?
5: बस अभी अभी आए हैं।
4: अच्छा, बैठिए ना।
5: ये रतन को मैं देख रहा हूँ, क्या हो गया इसको, ये चद्दर ओढ़े पड़ा हुआ है।
4: अरे भैया ना पूछिए, देख रहे हैं आप, सठिया गए आपके दोस्त, सठिया गए। अरे रिटायर क्या हुए हैं, जैसे लगता है हर चीज से डरने लगे
1: हैं।
4: हाँ, अब हिंदी में इनकी हालत देखिए और अंग्रेजी में इनकी वो क्या कहते हैं कंडीशन देख लीजिए, देखिए जरा सा, देखिए।
1: हाँ ये तो है।
4: हाँ, अब देखिए भैया क्या बताएं, हम मच्छर के नाम से इतना डरने लगे हैं कि मच्छर न हो गए जाने राक्षस हो गए।
1: अच्छा?
4: अब मेरा जीना दुभर कर दिया इन्होंने, हम बहुत परेशान हो गए।
5: अच्छा, ये बताइए कि ये सब ये जो सिस्टम चल रहा है ये कब से चल रहा है, कुछ बताएंगे?
4: भैया क्या बताएं, कुछ नहीं तो कम से कम ये 15-20 दिन हो गए, हम परेशान हो गए।
5: एक काम करो, ए रतन सुनो,
2: हाँ
5: उठो,
2: नहीं नहीं नहीं
5: उठो उठो, चलो उठो उठो यार, अंदर चलो।
2: नहीं नहीं अभी जो है मच्छर का स्प्रे करवाया है, मर जाए और फिर चलते हैं।
1: कमाल है, तूने हद कर रखी भाई, ऐसे डर रहा है, ऐसे लग रहा है बहुत बड़ी कोई चीज है, मच्छर से इस तरह कोई डरता है यार?
4: अरे भैया अब आपसे क्या छुपाना, क्या बताएं, अभी जाने हमारी बिटिया के घर में उनके देवर की शादी थी, समझे हो, 10 दिन पहले की बात होगी। अरे कितना मनाया इनको, कितनी बार कहा, पर ये बिटिया की ससुराल में ब्याह अटेंड करने नहीं गए, और मैं गई अकेले, वो भी इनकी नाराजगी झेल के। अब जानते हैं

0: समधन कितनी नाराज हुई है कि हम क्या बताएं। अब मेरी बेटी को तो सुनना पड़ेगा ना ससुराल में, मगर अब इनको है, इनको मच्छरों से फुर्सत नहीं है। वो देखिए मच्छर मारे पड़े।
1: यार
2: मतलब तुम ही बताओ सुरेंद्र, है मैं सारी दुनिया को खुश करूं या अपनी जान बचाऊं?
1: कैसी बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो यार रतन तुम।
0: अरे भैया ना पूछिए, मती मारी गई है इनकी, मती मारी गई है इनकी। हरकतें देख देख के तो जाने हम पगलाए गए हैं। क्या बताएं भैया आपको, हम बता रहे हैं कि एक दिन हम गए चौकामा, हम देखे हमारे तेज पत्ता का डिब्बा खाली और पूरा भरा डिब्बा। कहा हो गया, देखे तो कमरे में एक इतने बड़े कटोरा में तेज पत्ता जलाए पड़े,
1: मच्छर
0: भगा हुआ धुआं करे पड़े। अच्छा दूसरे तीसरे दिन की बात है, हम गए थे मार्केट तक, वही परवल लेने गए थे। परवल बहुत पसंद है इनका।
1: अच्छा
0: हमसे कह लिया परवल आलू बनाना, हम कह लो परवल ले आओ।
1: ठीक
0: हम लेके लौटे और गेट के अंदर हम मुंह ढापे, जौ खांसी जौ छींक जौ खांसी।
1: क्या कर दिए थे,
0: क्या बताएं भैया, लाल मिर्च छौके पड़े। अरे दादा जो धुआं पूरे कमरे में भरा कि हमारा सांस लेना मुश्किल, हम तो उल्टे पांव गेट के बाहर।
2: अच्छा ठीक है
0: और रुक जाओ, ठीक नहीं अभी रुक जाओ। अरे भैया अब कहीं से इनको पता चल गया लहसुन के बारे में। अरे रात में पूरी टोकरी आधा किलो लहसुन, जान रहे भैया कितना महंगा है लहसुन,
1: महंगा है लहसुन, लहसुन में जल्दी।
0: अरे पूरा लहसुन पानी में भिगो भर दिया, वो बज बजा गया, वो जब बदबू मारी उठा के लहसुन हमने बाहर नाले बहा दिया।
1: क्या समझती है, पहली बार है का? पहली बार है का?
0: नहीं
1: आपको नहीं पता, बचपन में बंदा मच्छरों को लेकर सबके दिमाग खा जाता था। एक बार हम आपको बात बताएं, अब आप बता रही हैं तो हम भी शुरू कर रहे हैं।
0: बताओ भैया।
1: ठीक है हम लोग वही चौथी पांचवी कक्षा में रहे हैं। ठीक है इस बंदे ने सबका इतना दिमाग खाया पूछ पूछ के कि अगर साबुनदानी में साबुन रहता है, चूहेदानी में चूहा रहता है, तो मच्छरदानी में मच्छर क्यों नहीं रहता, इंसान क्यों रहता है, आदमी क्यों रहता है। दिमाग पता बगा दिया यार, इसने दिमाग खा जाता है आदमी। आगे
2: हंसना बंद करो, चल चल
0: सच में चाय छोड़ो
1: भाभी और सुनो अभी।
0: हाँ बता, एक, बता भैया।
1: एक बार कक्षा में टीचर ने पूछा कि रतन बेटा स्टैंड अप, खड़े हो गए, खड़े हो गए। ठीक है उसके बाद इनसे पूछा कि बेटा न्यूटन के नियम बताओ।
0: ठीक
1: है पहले तो ये खड़े नहीं हो रहे, समझे, ऐसे हल्का सा टेढ़े होकर खड़े हुए। कह रहे हैं सर पूरा तो याद नहीं, बस आखिरी लाइन याद है नियम की।
0: अच्छा?
1: बोले वेरी गुड बेटा, कभी बता नहीं पाते, आज पहली बार तुम परिभाषा सुना रहे हो, बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो इसने मुस्कुराया कर कहा इसे ही न्यूटन का नियम कहते हैं। अब आप बताओ
0: भैया क्या बताएं।
2: अरे क्या बात, हम तुम्हारी सुना
1: भाभी एक किस्सा और इनका सुनो। ठीक है
0: बताओ बताओ।
1: एक बार जो है, ये तो विज्ञान वाले टीचर का किस्सा है, एक बार जो भूगोल के टीचर हमें पढ़ा रहे थे, बिल्कुल मन से पढ़ा रहे थे, एकदम चाक वाक है, एकदम बढ़िया से जो है फिगर उगर बना पढ़ा रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छे समझाया कि दुनिया जो है गोल
0: है।
1: ठीक है और सही बात भी है। अब पूरी बात समझा ही रहे थे कि हाथ उठा दिया बंदा।
0: अच्छा
1: सही टाइम पे हाथ उठाता है,
0: मच्छर नहीं मारा था उस समय।
1: नहीं मच्छर तो छोड़ो, हाथ उठा दिया। टीचर एकदम अवाक, बोला क्या हुआ बेटा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? ते बोला सर आप कह रहे हैं कि दुनिया गोल है तो गोल ही होगी, लेकिन मेरी मम्मी रोज कहती है कि दुनिया मतलबी है, अब बताओ कि मतलबी है या गोल है।
2: अच्छा अब इनकी सुन लो, वही भूगोल वाले मिश्रा मास्टर जी इनसे बोले चलो बताओ बताओ ताजमहल कहाँ है। कहन बाबूजी हमको तो नहीं मालूम है। कहन नहीं मालूम है, जो बेंच पे खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, वहाँ से कह रहे हैं हाँ यहाँ से भी नहीं दिख रहा है।
1: अच्छा मैं भी अब एक बताऊंगा
0: भाभी,
1: एक और ठीक है। आज ये मच्छरों से डर रहा है ना, एक बार इसने बचपन में खुद ही मच्छर भगाने के बहुत शानदार उपाय सबको बताया था।
0: अरे तो फिर वही उपाय काहे खुद नहीं कर रहे हैं?
1: अरे यही तो इसके अंदर कमी है।
2: अरे आज तो कौन सा दुश्मनी निकालने आया है यार, चलो जाओ चाय लेकर आओ।
1: नहीं भाभी पहले पूरी घटना
0: हम सुन लें, तभी हम चाय
1: पूरी घटना पहले सुनिए तब जाइएगा। तो भैया बचपन में हम लोगों का दोस्त था मोहन, ठीक है।
0: हाँ।
1: बेचारा मच्छर से बहुत परेशान, बिल्कुल वैसे जैसे ये परेशान है इस समय, समझ रहे। एक दिन स्कूल में आके बोला कि भाई मच्छर मारने के लिए कोई भी एक अच्छा सा उपाय बताओ।
0: सही।
1: तो हम सबने उसे बताया कि भैया फिलिट ले लो, और जो है अगरबत्ती जो जलाई जाती है वो ले लो, क्वाइल ले लो, और तमाम चीजें आती हैं वो ले लो। तो खींच कर बोला ये सब तो मैं कर चुका हूँ, इससे कुछ नहीं हो रहा है, कोई अलग डिफरेंट चीज बताओ।
0: फिर
1: क्या हमारे श्रीमान रतन जी

0: खड़े हुए
1: शानदार प्लान के साथ सबके सामने आए, एकदम शर्ट वर्ट ठीक करते हुए बोले कि मोहन एक काम कर, तू दो चिकने गोल पत्थर ले आ, दो।
2: अच्छा
1: ठीक। रतन जी पूरी गंभीरता से दोनों पत्थरों को दोनों हाथों में लेकर के ढूंढ ढूंढ के मच्छरों को मारने लगे। फिर मोहन ने इनको ऐसे दौड़ाया कि ये तीन दिन तक अपने घर में घुसे रहे, बाहर नहीं निकले।
2: ऐसा ही
1: बहुत अगला तरीका बताया था, एकदम फट मार रहे थे।
3: आज तुम मजाक उड़ाने आए हो ना मेरा घर पे है? अपना नहीं बताएंगे। ये मोहन को क्या बताए थे? इन्होंने कहा ऐसा करो, मच्छरदानी ऊपर लगाओ, मच्छर ऊपर मंडराते रहेंगे, नीचे चारपाई के सो जाओ।
2: भैया देखिए भाई, बातें तो बहुत हो गई आज, पर हम सच कह रहे हैं, आप हमारी परेशानियां दूर करके जाइए। भैया हम सच्ची बता रहे हैं, हम बहुत परेशान हो गए इनसे, कुछ कर दीजिए भैया। हम सच्ची नहीं, हम मायके चले जाएंगे, हम कह दे रहे हैं।
1: चादर निकाल।
3: अरे किस जन्म का बदला ले रहा है यार
1: तू? पता नहीं क्या चादर ओढ़ के लेटा हुआ है।
3: अरे तुम नहीं जानते क्या, ये मच्छर मेरे ऊपर मंडराने लगते हैं भाई।
1: अरे कब से ऐसा हुआ, तुम्हारे ऊपर केवल मच्छर मंडरा रहे हैं क्या? और कोई दुनिया में नहीं है?
3: अच्छा अपनी भाभी से ही पूछ लो, अभी 10-15 दिन हुए हम लोग पार्क गए थे टहलने, सारे मच्छर मेरे ही सर पे मंडरा रहे हैं।
2: बात तो सही भाई, इनके खोपड़ी में बहुत मच्छर मंडरा रहे। हमने सोचा जो दिमाग ज्यादा, ये हमारे मंडरा रहे
3: तमाम। और इनके ऊपर खाली एक दो मच्छर, पूरा झगुआ मेरे ऊपर। तब मैं समझ गया दोस्त कि भैया खतरा मुझे ही है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और रमा है कि मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करती, मैं करूं तो करूं क्या? और अब जाने तुम कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो, मेरी चादर हटा ली तुमने, अभी देखो मच्छर आ जाएंगे कहीं ना कहीं से।
0: अच्छा सुरेंद्र एक बात बताओ, कि उस दिन जब पार्क में तुम और भाभी गए थे तो तुमने किस कलर की शर्ट पहनी थी या कुर्ता, जो भी पहना था तुम बताओ, एकदम क्लियर बताना हमको, एकदम साफ।
3: इसमें क्या है भाई, वही एक काले रंग का कुर्ता पजामा पहने था जो आज पहने हूँ।
0: अच्छा तो एक बात तुम्हें पता है कि नहीं?
3: क्या?
0: कि मच्छर जो है हमेशा काले रंग के ऊपर आते हैं। तुमने काला कुर्ता पहना था, भाभी जी ने कोई रंगीन कपड़ा पहना होगा।
2: अरे पीली साड़ी पहनी थी, हमका याद है।
0: देखा रतन, इसीलिए सारे मच्छर तुम्हारे ऊपर आ रहे थे। तुम सफेद कुर्ता पहनो और भाभी जी को काली साड़ी पहनाओ, देखो सारे मच्छर उनके ऊपर आने लगे।
2: हम काय पहने काली?
3: अच्छा
0: ये मेरा अनुभव है दोस्त, मैं मच्छर के सीजन में कभी काला कपड़ा नहीं पहनता। तुम भी मेरा टोटका अपना लो, समझेंगे नहीं?
3: अच्छा वो तो ठीक है, वो तो सब ठीक है, तुम्हारा टोटका अपना लेंगे, लेकिन रात में जब सो रहे हो चैन से तब ये आके अलग अलग राग जो कान में सुनाते हैं ना, उनका क्या करूं? ऐसे बताओ क्या करूं?
2: अरे इनके तो हमला रात में होता है। जानी एक दिन हमने देखा हमारे बेलन उठा के ये मच्छर मार रहे थे।
1: अरे
2: हम बेलन दिखाएं, एक तरफ की गुंडी टूटी, कितनी मुश्किल से हम बेलते रोटी,
3: फेंक के मारा था मैंने।
0: ये
2: मच्छर मार रहे हैं, बताओ बेलन से।
0: ये सब तुम काम कर रहे हो, कभी बेलन से मार रहे हो, कभी डंडे से मार रहे हो, कभी लाठी चला रहे हो, कभी तोप चला रहे हो, मच्छर के ऊपर ये सब किया जाता है। जो सही काम करना है वो तुम नहीं कर रहे हो, और ये सब दुनिया भर का जो है कवायद कर रहे हो, सही काम को तुमने किया नहीं।
3: ये बात तो बिल्कुल नहीं कह सकते हो, मच्छर से बचने के लिए हर जरूरी काम किया है मैंने।
0: अच्छा
3: हाँ, देखो पूरा घर एकदम साफ कराया, फिलेट डालता हूँ, स्प्रे डालता हूँ, पूरे कपड़े पहनता हूँ, अपने आप को ढक के रखता हूँ।
0: यार भाई ये बताओ, जब मैं तुम्हारे घर आ रहा था, तुम्हारी पूरी कॉलोनी में हर जगह कूड़ा नालियों में भरा पड़ा था, हर जगह कीचड़ ही कीचड़, अब ऐसे माहौल में मच्छर नहीं पनपेंगे तो और क्या पनपेगा भैया?
2: ये भैया आप सही कह रहे
3: हैं। ये बात तो है भाई, कॉलोनी में कूड़ा कचरा तो बहुत है।
0: तो मच्छर बाहर से घर के अंदर आते हैं ना, हमेशा ही तो होता है कि बाहर पनपते हैं, बाहर उनकी फैमिली एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है, उसके बाद में करके जो है खिड़की से अंदर आ जाते हैं। तो भैया पहले अपनी कॉलोनी की सफाई की तरफ ध्यान दो और घर के अंदर अपने आप मच्छर कम हो जाएंगे, समझोगे नहीं?
2: कह रहे भैया, बिल्कुल सही,
3: बात तो ठीक कह रहे हो भैया।
0: अच्छा एक काम करते हैं, परसों छुट्टी है, छुट्टी है ना? तुम यार इतनी जल्दी, भाई तो बुढ़ा गए होगा। परसों ऐसा है छुट्टी है, ठीक है, मैं सुबह सुबह एकदम कितने 7 बजे आऊँ कि 8 बजे?
3: 9 बजे आओ यार।
0: ठीक है, अच्छा लेट उठते हो फिर भाभी जी, थोड़ा ध्यान दीजिए इनका।
2: भैया मच्छर मारेंगे रात
0: भर, मच्छर मारते हैं। अच्छा ठीक है 9 बजे ना? ठीक 9 बजे डन, मैं सुबह 9 बजे तुम्हारी कॉलोनी में आऊंगा, तुम अपनी

0: कॉलोनी के सभी लोगों से बात करना, हम लोग श्रमदान करके तुम्हारी कॉलोनी की सफाई करेंगे और इस मच्छर प्रकोप से कॉलोनी की रक्षा करेंगे।
1: वाह भाई वाह।
2: हाँ दोस्त,
1: बहुत बढ़िया,
2: बहुत बढ़िया सलाह दी है। अब मैं इसी चिंता में मरा जाता हूँ।
1: मरे ना भाई तुम, अब भाई तुमका सफाई करेगा समझो।
3: लेकिन सुनो सुनो सुनो, लड़ो ना भाभी, ये सब तब होगा जब, सुनो रतन, तुम अभी तैयार होकर मेरे साथ महेश के बेटे की शादी में चलोगे। अरे बचपन का याराना है यार अपना है। चलोगे नहीं बताओ?
2: अब मैं वो जितेंद्र वाला सफेद सूट पहन कर आता हूँ।
1: रुको अभी मैं प्रेस कर देती हूँ उसका। ठीक है भैया, चाय भी चढ़ा देती
3: हूँ। बिल्कुल बिल्कुल,
1: चाय भी चढ़ा
3: देती हूँ। ठीक ठीक।

कार्यक्रम आज इतवार है में आज आपने सुनी झलकी मच्छर का चक्कर। आलेख था नीलम राकेश का, कलाकार थे पुनीता अवस्थी, सुनील शुक्ला, सुवंश सक्सेना। प्रस्तुति सहयोग रवि तिवारी का था और प्रस्तुतकर्ता थे आतिश कुमार श्रीवास्तव।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष कार्यक्रम अक्षयवट। विश्व बुजुर्ग दिवस के अवसर पर आज की भेंटवार्ता का विषय है चार दीवारी का सन्नाटा, दुर्व्यवहार के वो जख्म जो दिखाई नहीं देते। भेंटवार्ता में शामिल हैं डॉक्टर अमित सक्सेना, समाज शास्त्री एवं अध्यक्ष वृद्धाश्रम, और आपसे बातचीत की है डॉक्टर अलका चौधरी ने।
1: अक्षयवट परंपराओं, संस्कृति, यादों, अनुभवों और संवेदनाओं का संगम। अक्षयवट। नमस्कार, प्रणाम। आकाशवाणी के इस विशेष अनुष्ठान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, कल 15 जून है, यानी विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। एक ऐसा दिन जो कैलेंडर पर शायद हमें यह याद दिलाने के लिए आता है कि जिस समाज को हम बहुत संस्कारी और आधुनिक कहते हैं, उसकी जड़ों में कहीं कोई दीमक लग रही है क्या? जब हम दुर्व्यवहार शब्द सुनते हैं तो हमारे जहन में शारीरिक चोट या तीखे शब्द आते हैं, लेकिन एक दुर्व्यवहार ऐसा भी होता है जो खामोश होता है, जो घर की चार दीवारी के सन्नाटे में पनपता है। उपेक्षा का दुर्व्यवहार, अकेलेपन का जख्म और अपनों के बीच रहकर भी पराया हो जाने का एहसास। घर की नींव की ईंटों को जब दीवारें बोझ समझने लगें तो वो इमारतें वृद्धाश्रम का रूप ले लेती हैं। आज इसी चार दीवारी के सन्नाटे पर बात करने के लिए और उन अनकहे आंसुओं की कहानी को समझने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं स्नेह धारा वृद्धाश्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अमित सक्सेना जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार जी। नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, आप रोज उन बुजुर्गों के बीच रहते हैं जिन्हें उनके अपने ही खून ने या तो छोड़ दिया है या इतनी प्रताड़ना दी है कि उन्हें वृद्धाश्रम आना पड़ा। आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब कोई बुजुर्ग पहली बार आपके आश्रम के दरवाजे पर कदम रखता है तो उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में किस तरह का भाव होता है?
2: देखिए, वृद्धाश्रम शब्द जब आता है तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं सबसे पहले एक नेगेटिविटी आती है
1: जी।
2: तो इसको थोड़ा सा क्लियर भी करना चाहेंगे कि वृद्धा आश्रम में आने के कारणों में से केवल एक वही कारण नहीं है कि उनके बच्चों ने उनको वहां पे छोड़ दिया होगा।
1: ओके।
2: बहुत सिंपल सी एक चीज है कि जिनके बच्चे नहीं होंगे या जिन्होंने शादी नहीं की
1: जी,
2: वो बुढ़ापे में कहां जाएंगे?
1: बहुत अच्छी बात है सर।
2: क्योंकि माता पिता जब तक हैं तब तक तो उन लोगों के साथ थे
1: जी।
2: माता पिता की डेथ के बाद वो थोड़े दिन अपने भाई बहनों के साथ रह लिए
1: जी।
2: अब भाई की अपनी फैमिली बढ़ रही है, बहन की अपनी फैमिली बढ़ रही है, तो ऐसे लोगों के लिए एक साधन क्या रह जाता है? वृद्धाश्रम
1: जी।
2: बहुत से ऐसे आपने केसेस देखे जिसमें कि पति या पत्नी की किसी की डेथ हो गई या बच्चों की पहले डेथ हो गई और वो लोग जीवित हैं
1: जी।
2: ऐसी स्थिति में वो लोग कहां जाएंगे? तो

0: इन सब स्थितियों के यदि हम देखें तो वृद्धाश्रम में वो लोग भी आते हैं।
1: जी जी
0: और जहाँ तक बात है बच्चों की, तो बहुत यदि गहन अध्ययन करें या जैसे हम लोग के वृद्धाश्रम को लगभग 10 साल हो चुके हैं, चीजें जो निकल कर आती हैं उसमें एक बहुत बड़ा एक कारण है परवरिश। बहुत अपने यहाँ एक जो कहावत कही गई है ना कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अब आप देखिएगा आगे का ट्रेंड जो है वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके पीछे यदि हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे तो समझ में आएगा कि बच्चों को हमने संस्कार की जगह या अपने प्यार की जगह उनके दिमाग में केवल एक ही चीज डाली है कि जिंदगी में अगर तुमको कुछ पाना है तो वो है एक अच्छी नौकरी
1: जी,
0: एक बड़ा सा मकान, बहुत अच्छा पैकेज होना चाहिए। बच्चे के जब दिमाग में आप बचपन से केवल यही चीजें डाल दोगे कि जिंदगी जीने के लिए केवल यही चीजें जरूरी हैं, तो जब वो बड़ा होता है, जब उसने वो माँ बाप का अपने साथ वो प्यार नहीं देखा, उसने आपको केवल मशीन की तरह काम करते हुए देखा और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हुई वो आपके ड्राइवर आपके जाके पूरी कर दे रहा है, आपके घर में आया लगी हुई है वो जाके पूरी कर दे रही है, आप पूरी तरीके से दूसरों पे डिपेंड होके कर रहे हैं, तो जब बच्चा बड़ा होता है उसके दिमाग में ये कि मुझे तो जिंदगी में पैसा कमाना है, मैं तो एक मशीन हूँ पैसा कमाने की, फिर वो यही कहता है कि ठीक है मैं तो हूँ विदेश में, अब आपको अपने इलाज के लिए पैसा चाहिए मैं पैसे भेज रहा हूँ, आपको कहीं जाना है मैं पैसे भेज रहा हूँ, फिर वो वही आपको रिटर्न में देता है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण वही है कि हम उनको वो चीज़ नहीं सिखा पाए कि जिंदगी में पैसा जरूरी है लेकिन संबंधों से ज़्यादा जरूरी नहीं है।
1: जी थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोगों को अपनी पेरेंटिंग पे ध्यान देना चाहिए।
0: विशेष रूप से देखिए कारण है, आप जैसे यदि वृद्धाश्रमों की हम लोग बात करें, पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे।
1: जी
0: किस भाई की कितने बच्चे हैं वो बाहर वालों तक को नहीं मालूम होता था, एक ही घर में 10-12-15 बच्चे रह रहे हैं, चाचा ताऊ भी सब लोग साथ में रह रहे हैं। धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली पे हम लोग आए, क्योंकि अब जब न्यूक्लियर फैमिली है एक बच्चे पर हम लोग सीमित हो चुके हैं, बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाना भी चाहते हैं उसकी बहुत अच्छी नौकरी भी चाहते हैं। अब जब बच्चा बहुत अच्छा पढ़ लेगा वो नौकरी के लिए जब बाहर जाएगा, अब दो ही ऑप्शंस हैं, या तो आप यहीं पर अपने अकेले रहें
1: जी,
0: या आप उसके साथ जाएं। उसके साथ जाने वाली स्थितियां जो होती हैं वो बहुत ही रेयर होती हैं। जब तक बच्चा इंडिया में कहीं रह रहा है एक बार को रह लेते हो, वहां पर भी ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं हो पाते हैं। हमारे यहाँ के बहुत से ऐसे केसेस हैं, पेरेंट्स को नहीं पसंद है
1: जी,
0: उनको अपना जमीन वाला ग्राउंड फ्लोर का मकान, उसके सामने पार्क भी हो। अब जब बच्चा विदेश चला गया तो फिर तो आप समझिए कि दूरियां और बढ़ गई, फिर वो केवल एक टेलीफोनिक ही संबंध रह जाते हैं। उनके जब बच्चे होते हैं वो अपने बाबा दादी नाना नानी को पहचानते नहीं है, साल में एक बार मुलाकात हो रही है, तो हम कैसे उम्मीद करें कि उन बच्चों के अंदर वो प्यार डेवलप होगा, वो अपने बाबा दादी को वो प्यार कर पाएंगे जो संयुक्त परिवार में प्यार होता था।
1: सर अक्सर समाज को लगता है कि मारपीट या गाली गलौच ही दुर्व्यवहार है, लेकिन भावनात्मक दुर्व्यवहार या इमोशनल अब्यूज जैसे घर के फैसलों में उन्हें शामिल न करना, उनकी सेहत की अनदेखी करना या हफ्तों उनसे बात न करना, यह मौन बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा घाव करता है।
0: बहुत गहरा घाव करता है और घरों में भी ये चीजें होती हैं
1: जी।
0: और जहां तक हम लोग वृद्धाश्रम की बात करें, हमारे यहाँ के अभी लेटेस्ट में भी यही केस चल रहा है, माता जी बीमार हैं, बच्चियों से बात की जा रही है, अब बच्चियों का रिटर्न में जवाब ये आता है कि अरे वो तो ऐसा पहले भी नाटक किया करती थीं, केवल इस चक्कर में 3 दिन उनका इलाज ही नहीं हो पाया कि अरे वो तो नाटक करती हैं नाटक करती हैं नाटक करती हैं। जब हम लोग को लगा कि नहीं बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो हम लोगों ने कहा नहीं अब हमको उनको डॉक्टर को दिखाएंगे ही दिखाएंगे। और कहते हुए भी बड़ा बुरा लगता है कि अब बेटियां ये शब्द बोल रही हैं कि उनको मुक्ति मिल जाए, तो हम लोग को दिख रहा है कि नहीं वो सही हो सकती हैं, उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फोन पर ही सारे डिसीजन हो रहे हैं कि अरे वो इतना जब परेशान है तो उनको तो मुक्ति ही मिल जानी चाहिए। तो अंदर से इतना दुख होता है कि कहां जा रहा है हमारा समाज, जब बच्चे जिनको कि उन्होंने पाला वो जब ये जवाब दें। अभी पिछले सप्ताह भी हमारे यहाँ एक डेथ हुई, उसमें भी यही था, उनसे कहा जा रहा है कि इनको डॉक्टर को दिखाना है, अरे अब तो वो क्या है अब तो जैसा भी है अब चलने दीजिए, अब कहाँ दिखाया जाएगा इस देश में, उनको कहाँ लेके जाया जाएगा, करते करते अल्टीमेटली वो 2 दिन में एक्सपायर ही हो गई। और ये चीजें वो भी सुन रही हैं जब उनके ही सामने बात हो रही है, उनके बच्चों को फोन किया जा रहा है और जब ऐसा जवाब मिल रहा है, तो जब आपने कहा ना वो हम लोग को सामने सामने दिख रहा है कि वो डिप्रेशन में जा रही हैं, फिजिकल उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो डिप्रेशन में जा रही हैं, उन्होंने बातचीत बंद कर दी है, तो निश्चित रूप से ये चीजें जो होती हैं वो उनके मानसिक स्तर पर सबसे ज्यादा असर डालती हैं। कुछ ना हो लास्ट स्टेज तक आप डॉक्टर को तो दिखाते रहो। हम लोग यही कहते हैं, जैसे हमारे वाइफ जो है डॉक्टर अर्चना वही डायरेक्टर हैं, जब वो फोन पर बात करती हैं लोगों से जब ऐसा जवाब मिलता है तो हम बड़ा इरिटेट हो रहे होते हैं, हम तो यही कहते हैं कि हमको फोन दो, हम उनसे बस इतना पूछेंगे कि आपका बच्चा इस वक्त ऐसी स्थिति में होता तब भी आपका क्या जवाब होता। केवल खर्चा बचाना, जबकि एफर्ट्स तो हम लोग को करने हैं, डॉक्टर क्या तो हम लोग को लेके जाना है, वो लोग तो यहाँ पर है भी नहीं, लेकिन उसमें भी उनको लगता है कि पता नहीं कितना पैसा खर्च हो जाएगा उनके ऊपर।
1: सर जब आपके पास ऐसे बुजुर्ग आते हैं जो इस मानसिक और भावनात्मक सदमे से गुजर चुके होते हैं, तो एक संस्था के रूप में एक अध्यक्ष के रूप में आप और आपकी टीम उन्हें इस अवसाद से उबारने के लिए क्या थेरेपी या इस तरीके की कोई गतिविधियां कराते?

0: है।
1: बिल्कुल, स्नेह हम लोग के वृद्धाश्रम का नाम है, जैसे कि स्नेह धरा,
0: जी
1: और उसकी एक टैगलाइन है, अम्मा बब्बा का अपना घर। तो हम लोग को बड़ा गर्व होता है कि लखनऊ में कई वृद्ध आश्रम से लोग हम लोगों के यहाँ भेजे जाते हैं, केवल इसीलिए कि यदि किसी को घर के माहौल में रहना है
0: जी
1: तो इसने धरा जाओ, क्योंकि वहां का माहौल ही ऐसा है कि किसी को लगेगा ही नहीं कि वो किसी वृद्धाश्रम में आया है। सब एक ज्वाइंट फैमिली की तरह वहां पर रहते हैं, सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, और कोई कितना भी डिप्रेशन में हो, धीरे धीरे वो अपने आप ही उसका मन वहां पर इतना लग जाता है। वहां पर गाने बजाने होते हैं,
0: अच्छा
1: आए दिन बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहे हैं तो लोग आते हैं, वहां पे केक कट रहा है, हम लोग बाहर घुमाने के लिए लेके जाते हैं। हमारे यहाँ के जो वृद्ध हैं, वाटर पार्क भी जा चुके हैं, वो सीरोस कैफे जा चुके हैं, वो आपके जो गणेश पूजा होती है झूलेलाल वाटिका में, वो वहां जा चुके हैं, उनको हम लोग थिएटर में फिल्म दिखाने ले जा चुके हैं, और हम लोग क्या कोई रोक टोक भी नहीं है। थोड़ी बहुत रोक टोक करनी पड़ती है, जैसे कि डायबिटीज है, ठीक है, मीठा कम खाओ, लेकिन मना भी नहीं है। अब 85 साल, 90 साल, हमको भी मालूम है कि कब क्या हो जाए। अब जरूर से ज्यादा बंदिशें भी यदि उस एज में लगाई जाए तो वो भी बड़ा अजीब सा लगता है कि रात में फ्रिज से मिठाइयां चोरी होती हैं, तो हमको मालूम है वो खाएंगे,
0: जी
1: ठीक है, तो इससे अच्छा है कि उनकी प्लेट में ही दे दो। वो घूमने बाहर निकलते हैं, नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं और जगह जाके उसको वो प्रयास करेंगे, तो वो एक्सेस भी ना हो किसी चीज का,
0: जी
1: लेकिन लिमिट में रहते हुए हम लोग उनको पूरी लाइफ एंजॉय कराते हैं।
0: अच्छा, अगर किसी को इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई है तो उन्हें क्या थेरेपीज या फिर मानसिक रोग विशेषज्ञ को भी
1: हाँ बिल्कुल,
0: दिखाते हैं?
1: हमारे
0: अच्छा
1: अभी कुछ दिन पहले भी थे, अभी भी इलाज चल रहा है, KGMU का वृद्ध मानसिक वाला जो एक
0: जी
1: डिवीजन
0: जी
1: है, उसमें हमारे यहाँ के दो लोगों का इलाज चल रहा है, क्योंकि वृद्धावस्था में जाके इस प्रकार की चीजें हो ही जाती हैं,
0: जी
1: डिप्रेशन में आ जाना, कोई पुरानी बातें हैं जो दिमाग में आपके बैठ गई हैं, उसी बात को लेकर आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, तो इस प्रकार की चीजें हमारे यहाँ होती रहती हैं, तो हम लोग उनको बाकायदा इलाज कराते हैं उन चीजों का। और एक केस का जरूर हम बताना चाहेंगे, बस
0: जी
1: एक हम लोग के पास बहुत पहले का केस है, अर्जुनगंज में हम लोग को एक बाबा जी मिले, रोड पर वो बैठे हुए थे, उनसे जब बात हुई, जो आपने कहा काउंसलिंग, उनको घर पे बैठाया गया, जब उनके साथ खाना पीना हुआ, बातचीत हुई, जब वो एक अच्छे वातावरण में बैठ पाए, अगले दिन उन्होंने अपने बारे में बताना शुरू किया,
0: जी
1: और जब उन्होंने बताया तो पता चला कि वो बिहार में वैशाली जिले के हैं। हम लोगों ने
0: अच्छा
1: फेसबुक पे उनके बारे में डाला, ढूंढना शुरू किया गया, पता चला कि वो 2.5 महीने पहले खोए थे,
0: ओहो
1: और खोने के बाद है ना, आदमी फिर सड़क के जब रहता है तो बदहाश स्थिति में हो जाता है, बताने की स्थिति में नहीं होता है। पता चला कि उनका बेटा दिल्ली में है, दिल्ली में बेटे से बात हुई, वो बोला मैं अभी तुरंत वहां से निकल रहा हूँ, तब उसने बताया कि बाबूजी तो 2.5 महीने पहले खोए थे। ऐसे ही एक केस था जो कि 2 साल बाद मिले थे एक बाबूजी, हम लोग को लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास मिले, रात में
0: जी
1: पैरों से खून निकल रहा था, उनको हम लोग लाए, उनके साथ जब उनकी ड्रेसिंग वगैरह कराई गई, अगले दिन पूछना शुरू किया, तब उन्होंने बताया कि मैं जौनपुर में मछली शहर, उसके पास एक कोई पीपल का पेड़, इतनी चीज़ें उन्होंने बताई, जब एक दो दिन वो रह लिए, खाना पीना उनका हुआ,
0: जी
1: हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया, पता चला उनके बेटे से बात हुई कि अरे बाबूजी तो 2 साल पहले विंध्याचल घूमने निकले थे और 2 साल से लापता थे वो। तो प्रॉपर यदि काउंसलिंग की जाए,
0: जी
1: प्रॉपर उनके साथ बैठा जाए, तो बहुत से ऐसे केसेस सॉल्व हो जाते हैं। हम लोग अभी तक 22 लोगों को उनके घर तक पहुंचा चुके हैं, इस प्रकार से काउंसलिंग करके या उनके बारे में पता करके।
0: सर, बहुत से बुजुर्ग लोक लाज या बच्चों के भविष्य के डर से चुपचाप यह प्रताड़ना सहते रहते हैं। जो बुजुर्ग इस समय घर पर रहकर ये सब झेल रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, इसमें तो बस एक यही संदेश रहता है, और अल्टीमेटली आप सुन रहे हो, बाद में देखिएगा, जो हमने हमने आपको उदाहरण दिया, बच्चा जहां अच्छा उसको ऑप्शन मिलेगा नौकरी का, जहां उसको लगेगा कि उसकी लाइफ, उसकी मींस वो, उसकी बीवी और उसके बच्चे जहां अच्छे से सेटल हो सकते हैं, वो निकल जाएगा, तो उसके निकलने के बाद आप और ज्यादा परेशान हो। तो हम लोग खुद प्रेफर करते हैं लोगों को, यदि आपके पास ऐसे केसेस हैं, आप ओल्ड एज होम में जाकर रहिए। कारण क्या है, आपने देखा होगा लखनऊ में जानकीपुरम विस्तार और गोमती नगर विस्तार में बहुत से केसेस होते हैं रात में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या,
0: जी
1: वो केसेस कहीं ना कहीं यही चीजें हैं, बच्चे तो बाहर निकल गए। आप केवल लोक लाज के डर से यदि हम वृद्धाश्रम में जाकर रहेंगे तो लोग कहेंगे कि बच्चा ऐसा है, अब उसमें आप अपनी पूरी जिंदगी को आप दांव पे लगा रहे हो, यदि रात में 2 बजे बीमार हो जाएंगे तो कौन आएगा दिखाने के लिए, बच्चा तो बाहर है। उससे अच्छा है कि आप उस मकान को किराए पे उठाइए, कहीं पर आराम से किसी एक ओल्ड एज होम में जो पेट वाला है, आराम से रहिए, 40-50 लोग आपको साथ के लोग मिलेंगे, आपकी जिंदगी और अच्छी कटेगी। हम लोग हमेशा बच्चे से क्या कहते हैं, बच्चों के साथ खेलो,
0: जी
1: तो बुजुर्ग किसके साथ खेलेगा, वो तो बुजुर्ग के साथ ही तो खेलेगा, उसको तो एंजॉय बुजुर्ग के साथ मिलेगा ना।
0: सही बात है सर, मतलब अपना पीयर ग्रुप तो हर किसी को चाहिए होता
1: सर
0: है।
1: किसी को चाहिए,
0: सर, क्या संस्था में आने वाले बुजुर्गों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी होती है? यदि कोई बुजुर्ग कानूनी मदद चाहता है तो आपका आश्रम उनकी किस प्रकार मदद करता है?
1: जानकारी होती भी है, नहीं भी होती है तो हम लोग उनको जानकारी दे देते हैं, लेकिन आज तक के इतने केसेस में 10 साल में कोई भी बुजुर्ग कितनी भी बुरी परिस्थिति में हो, लेकिन
0: जी
1: अपने बच्चों के लिए कोई ऑप्शन लेने को तैयार नहीं होता है। अंत में कहीं ना कहीं आता है, अरे अब चलो जैसा भी है, अब चलने दो करके वो

0: कहीं ना कहीं उनके अंदर वो जो है ना एक मातृत्व वाली माँ के अंदर और भावना प्यार वाली वो रहती ही रहती है।
1: लेकिन तो भी माँ बाप इतने लंबे वक्त तक का बच्चों को रखते हैं, अगर मान लीजिए ठीक है और सुविधाएं उन्होंने मुहैया भी कराई, पर एक लगाव तो एक नेचुरल
0: बिल्कुल,
1: नहीं है।
0: लेकिन अपने समाज में, भारतीय समाज में ये कहेंगे ऐसे केसेस हैं कम, हम ये नहीं कहेंगे कि इसको जनरलाइज करेंगे, ऐसा होता है,
1: जी
0: कम केसेस हैं, अभी भी प्यार बना हुआ है। यदि हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ जैसे शहर में जब हम लोगों ने खोला था तब तो बहुत ही कम ओल्ड एज होम्स थे, आज की तारीख में लगभग 30 हो चुके हैं ओल्ड एज होम्स,
1: जी
0: लेकिन पूरे लखनऊ में यदि 30 भी हैं और एक ही होगा जिसमें कि 100 से ज्यादा लोग हैं, मीन्स यदि हम ओवरऑल पूरे देखना है लखनऊ में 1000 लोग वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, तो इस हिसाब से देखिए तो समाज अभी भी बहुत सही चल रहा है, तो रेशियो अभी भी कम है, अभी भी सुधार की बहुत संभावनाएं हैं। हम लोग तो हर पेरेंट को यही कहते हैं कि बच्चे को संस्कार जरूर दो,
1: जी
0: बच्चे को ये जरूर दिखाओ कि अपनी जमीन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, पेड़ तभी तक हरा भरा है जब तक वो जुड़ा है जमीन से, जड़ है उसकी।
1: डॉक्टर साहब, चलते चलते आकाशवाणी के माध्यम से हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, बस यही संदेश देना चाहेंगे कि चीजें कितनी भी बिगड़ जाएं
1: जी
0: सुधार की हमेशा संभावना है, और अपने यहाँ तो जो दर्शन पढ़ाया जाता है अपने यहाँ की, जितना भी चाहे वेद पढ़ लो चाहे कुछ भी पढ़ लो, हर जगह ये कहा गया है, हर जगह एक चीज बताई गई है, जो आप कर रहे हो वो आपको रिटर्न में मिलेगा। तो इसी चीज को मानते हुए कि यदि आप अपने माता पिता के साथ ऐसा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बच्चा आपका जो है वो सारी चीजें देख रहा है, और सबसे बड़ी बात ईश्वर देख रहा है, तो
1: जी
0: रिजल्ट कहीं ना कहीं आपके साथ भी वो होगा। तो इसी बात को केवल मानते हुए कि हमारे साथ ऐसा ना हो, बस इतना ही मानते हुए आप अपने माता पिता की अच्छे से देख रेख करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद जो है ना वो जिंदगी की हर समस्या को सॉल्व कर सकता है।
1: सर, आज आपने अपने बहुमूल्य अनुभव हमारे साथ साझा किए और हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि बुजुर्गों को सिर्फ दवा की नहीं, हमारे वक्त और सम्मान की जरूरत है। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आज वृद्धाश्रम के अध्यक्ष जी की बातें सुनकर दिल के किसी कोने में एक कसक सी उठती है। किसी शायर ने बहुत खूब लिखा है, इमारत ढह गई लेकिन बहुत सी कड़वी यादें छोड़ गई, बुढ़ापे की दहलीज पर अपनों की बेरुखी दिल तोड़ गई। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस सिर्फ एक दिन की चर्चा नहीं है, यह संकल्प है कि हम अपने घर के, अपने आसपास के बुजुर्गों के चेहरों पर वो उदासी और चार दीवारी का वो सन्नाटा कभी नहीं आने देंगे, उन्हें वो आदर दें जिसके वे हकदार हैं। अपनी प्रतिक्रिया हमें इस पते पर जरूर भेजें। कार्यक्रम अक्षयवट द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ 226001। हमारा ईमेल का पता है pkldlko@gmail.com। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे यानी डॉक्टर अलका चौधरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अक्षयवट परंपराओं, संस्कृति, यादों, अनुभवों और संवेदनाओं का संगम। अक्षयवट
2: कार्यक्रम अक्षयवट में आज आपने चार दीवारी का सन्नाटा, दुर्व्यवहार के वो जख्म जो दिखाई नहीं देते विषय पर समाज शास्त्री एवं अध्यक्ष वृद्धाश्रम डॉक्टर अमित सक्सेना से भेंट वार्ता सुनी। भेंटकर्ता थीं डॉक्टर अलका चौधरी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए देशगान।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:50 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए पत्र एवं ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम जवानों के लिए।

फौजी भाइयों, जय हिंद। स्वीकार करिए सुमैया सईद का नमस्कार। कार्यक्रम में पहला पत्र हमने शामिल किया है प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप केशव पटेल, रहने वाले हैं महाराष्ट्र के, और इन्हीं के साथ प्रभुदयाल पाठक, रघुबर दयाल पाठक, अनुपम, आशुतोष, शुभम, भोलेनाथ पाठक, प्रभाकर पाठक, ग्राम वीरपुर, कटरा बाज़ार, उत्तर प्रदेश से। और आप सभी ने फरमाइश भेजी है इस फिल्म के गाने की, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, और संगीत शंकर जयकिशन का है।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्यार ही प्यार का ये गाना। और कार्यक्रम में अगला ईमेल हमें आया है चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप का। और कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। और आप सभी ने फरमाइश भेजी है अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म मुझसे शादी करोगी के इस गाने की। तो आइए आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: प्रोग्राम में अगला ईमेल आया है हमें ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का, और आप सभी ने फरमाइश भेजी है फिल्म विश्वात्मा से इस गाने की। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना।

साधना सरगम की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म विश्वात्मा से ये गाना। प्रोग्राम में अगला ईमेल हमने शामिल किया है किसान रेडियो क्लब ग्राम ललहवा मितौली ज़िला खीरी से विजय पाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि, राजेश कुमार, विजय पांडे का। आप सभी ने फरमाइश भेजी है फिल्म पहचान के इस गीत की, तो आइए सुनवाते हैं आपको ये गीत मुकेश की आवाज़ में।

प्रोग्राम में अगला ईमेल हमने शामिल करा है ज़िला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानु राम शंकर पत्रकार बहाई वाले रक्षा मौर्य राम सागर साहू रसूलपुर वाले राम चरण और आप सभी ने फरमाइश भेजी है फिल्म प्यार झुकता नहीं से लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में इस गाने की।

इस आखिरी गीत के साथ ही कार्यक्रम जवानों को समाप्त करने की दीजिए अनुमति। फौजी भाइयों, जय हिंद।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दोपहर के 12:15 होने को हैं और अब से बस कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। बस कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए

0: अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड

0: अवार्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायोग संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ो पीठा, अरिसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में

0: आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज का विषय है खरीफ फसलों में स्मार्ट उर्वरक प्रयोग। जानकारी दे रहे हैं यतेंद्र कुमार। आपसे बातचीत की है डॉक्टर सुशील कुमार राय ने।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ अभियान में लगे हैं। खरीफ फसलों की भूख कैसे मिटे और आजकल जो स्मार्ट उर्वरक आए हैं इनका प्रयोग फसल की भूख मिटाने में कैसे हो, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं इफ्को उत्तर प्रदेश से राज्य विपणन प्रबंधक यतेंद्र कुमार तेवतिया साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। तेवतिया साहब, ये बताएं कि जो भी खरीफ की फसलें नर्सरी शुरू हो गई है धान की, फिर आगे दलहनी तिलहनी और अनाज वाली फसलें बोई जाएंगी, तो जो भी खरीफ की फसलें हैं स्मार्ट उर्वरकों से उनकी भूख कैसे मिटे?
3: सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जो अभी बात कर रहे हैं आप नैनो उर्वरक हैं
2: जी,
3: जो नई सदी के उर्वरक हैं, और ये उर्वरक अपने में बहुत छोटी मात्रा में ही उपयोग करके हम अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जैसे अभी नर्सरी पड़ रही है तो नैनो में हमारे पास में नए उर्वरक जो आए हैं उनमें नैनो डीएपी, यूरिया नैनो यूरिया प्लस, जिंक नैनो कॉपर,
2: चार उर्वरक नैनो जिंक और नैनो कॉपर भी आ गया
3: जी साहब। और नैनो डीएपी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएपी का मतलब क्या होता है, डीएपी जो बेसल मतलब आपके बुवाई से पहले इस्तेमाल किया जाता है, तो उस तरह से इसी का भी नैनो डीएपी का भी इस्तेमाल हम उसी तरह से करते हैं। नर्सरी जब पड़ रही है तो उसके लिए हमको बीज उपचार करने की जरूरत पड़ती है। वैसे हम लोग शाम को भी का अंकुरण अच्छा हो जाए तो शाम को फुलाते भी हैं, तो जो हमारा नैनो डीएपी है, नैनो डीएपी का 5 ml 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त,
2: धान के बीज के लिए
3: जी,
2: बीज शोधन के लिए।
3: सपोज कीजिए आपको जो है 1 एकड़ में 10 किलो बीज डालना है तो 50 ml पर्याप्त है
2: नैनो डीएपी।
3: और जो नैनो डीएपी का जो ढक्कन है वो 25 ml का होता है
2: जी।
3: 2 ढक्कन ले लीजिए 10 किलो के लिए, और आपको लगता है कि 2 ढक्कन में यदि वो नहीं पूरा मिलाना होता है, उसके ऊपर लगाना होता है, तो लगता है कम पड़ रहा है, तो थोड़ा सा उसमें 100 ml पानी मिला लीजिए
2: जी,
3: और जिससे उसको फिर पानी को ऊपर से बीज को छिड़क दीजिए, जैसे सोकिंग वाटर जैसे करते
2: ताकि
3: हैं,
2: कोटिंग हो जाए।
3: और ये कोटिंग का थोड़ा टाइम रखना पड़ता है कि ये अधिकतम हमारा जो टाइम है 10-12 घंटे पहले कर सकते हैं और मिनिमम आधा घंटा
2: जी।
3: तो शाम को आप सोकिंग करते हैं तो शाम को आप कर दीजिए, सुबह बुवाई कर दीजिए। तो जो उसमें न्यूट्रिएंट जरूरत पड़ती है उसके लिए पौधे के लिए, उसमें फास्फोरस और यूरिया दोनों उस पौधे को मिल जाते हैं,
2: यानी फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों मिल जाते हैं।
3: और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जब उसको नैनो की फॉर्म में होगा तो सीधे उसके अंदर चले जाते, तो उससे एक आपका जर्मिनेशन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है।
2: जो दानेदार यूरिया है उससे अलग कैसे है नैनो डीएपी?
3: जी, ये जो नैनो डीएपी है तो बहुत छोटा सा, मैंने बताया नैनो पार्टिकल्स होते हैं, और ये जो एक बोतल है जो इक्विवेलेंट टू एक बोरे के बराबर है।
2: अच्छा,
3: वैसे तो आप कह सकते हो, मोटी भाषा में आप समझाना चाहेंगे तो एक दाने के 55,000 टुकड़े किए जाए, इतना छोटा मॉलिक्यूल है वो
2: जी।
3: तो इसलिए इसका जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है और इसके पार्टिकल्स के साइज बहुत छोटा होता है, और जब नैनो डीएपी से उपचारित कर देते हैं तो उसके 3-4 फायदे आपको दिखाई देंगे बहुत अच्छी तरह से।
2: इसके फायदे क्या क्या है तेवतिया साहब?
3: एक तो जर्मिनेशन बहुत फास्ट होगा, जल्दी होगा, और जड़ों का विकास भी जल्दी होगा। एक तो ये तुरंत एक फायदा मिलेगा, क्योंकि उसको तत्व जो था जमीन में पड़ते ही सीधे मिल गया उस पौधे को, तो जर्मिनेशन जब अच्छा होगा उसका, और जो उसका अंकुरण निकलेगा वो बड़ा मजबूत निकलेगा, वो मतलब बिगर होगा उसमें, उसके अंदर ओज होगा, जिससे अच्छा आगे कोई पौधा बन सके।
2: फिर कब प्रयोग करना है नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस?
3: अब आपने नर्सरी डाल दी तो नर्सरी में फिर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 20-21 दिन तक का वो पर्याप्त उसमें उसको भोजन मिल जाता है। अब आपको जरूरत पड़ेगी जब उसको ट्रांसप्लांट करोगे,
2: यानी रुपाई करोगे।
3: रुपाई के समय भी यही होता है कि उसको 5 ml पर लीटर पानी उसमें घोल के, उसमें उसकी जो जड़ें जो होती हैं उनको डुबो के फिर लगाया जाए।
2: कितना देर?
3: वही आधा घंटा।
2: और उसके बाद रुपाई
3: कर दी जाए। उसमें क्या होता है, रुपाई करने का भी 2-3 तरह से, बड़ा किसान कुछ तो टब लेते हैं, टब में बनावे, लेकिन किसानों का बड़ा बढ़िया अच्छा फॉर्मूला किसानों ने मैंने देखा फील्ड में, कि 1 एकड़ खेत में 4-5 जगह बेड़ को डालते हैं बीच-बीच में। तो लोगों ने क्या किया, वहीं एक मिट्टी का घेरा बना दिया।
2: अच्छा।
3: और मिट्टी का घेरा बनाने के बाद उसमें पॉलीथिन लगा दी उन्होंने, पानी ऑलरेडी भरा ही होता है, और उसी में उन्होंने

0: अंदाज लगाया कि 50 लीटर पानी उसमें होगा, तो 50 लीटर के हिसाब से 5 ml से उन्होंने उसमें डाल दिया, 10 ml, 10 मतलब 5 ml 50 ml पड़ जाएगा उसमें। तो इस तरह से 4-5 जगह वो डाल देते हैं और फिर जड़ें उसी में डिप रहती हैं
1: आधे घंटे
0: तक, और उसी से जड़ों से निकाल निकाल के फिर वो अपना रुपाई कर देते हैं। तो जो उसकी नाइट्रोजन, जो हमको जो फॉस्फोरस देना था, उसकी 50% मात्रा हमको इससे कम कर सकते हैं, और बहुत अच्छी तरह से इससे लाभ, फिर इसके भी 3-4 लाभ होंगे। एक तो इससे अंकुरण बहुत अच्छा होगा और उसके किल्ले बहुत अच्छे निकलेंगे।
1: जहां धान की सीधी बुआई करने जा रहे हैं किसान
0: जी,
1: भाई
0: जी,
1: तो वहां नैनो डीएपी का इस्तेमाल कैसे करें?
0: सीधे धान में तो जैसे हम नर्सरी में बताया था, तो उसी तरह से बीज के रूप में करते हैं ना, बीज में
1: 5 ml प्रति किलोग्राम
0: वही हिसाब से पानी मिलाएंगे, उसके बाद आधा घंटा मिनिमम, अधिकतम 10 घंटे तक, और सोक करेंगे, उसके बाद उसको बुआई कर देंगे।
1: और फिर खड़ी फसल में?
0: खड़ी फसल में फिर ये होता है कि वैसे तो 50 से 60 दिन तक फास्फोरस की आवश्यकता पूरी हो जाती है, इसके बाद फिर 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से उसका जो है करीब 125 लीटर पानी तक खर्च होता है, उससे उसकी जो है छिड़काव करेंगे तो भी उसको फास्फोरस भी मिलेगा।
1: नैनो डीएपी
0: और बेसिकली आवश्यकता 30 दिन के बाद पड़ने लगती है हमको यूरिया की,
1: यूरिया की।
0: तो यूरिया में हमको ये ध्यान रखना कि उसमें एक पर्याप्त मात्रा में 30 दिन में, वैसे पर्याप्त तो उसमें पत्तियां बहुत अच्छी तरह से निकल आती हैं, पत्तियों के द्वारा ही नैनो यूरिया लिया जाएगा। तो नैनो यूरिया जो है वो भी 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के 100 लीटर पानी से छिड़काव कर सकते हैं।
1: तो इससे जो दानेदार यूरिया का फायदा है वो मिलता रहेगा?
0: दानेदार यूरिया का फायदा मिलता रहेगा, लेकिन एक चीज बड़ी ध्यान देने की बात है, किसानों से मैं पुनः अनुरोध भी करूंगा, कहीं कहीं हमारी थोड़ी सी भूल होती है कि हम लोग कहते हैं कि नैनो जितने भी उर्वरक हैं ये पौधे पे काम करते हैं
1: जी,
0: पौधे की पत्तियों पे काम करते हैं। और आपने क्या होता है कि जैसे रुपाई की तो बहुत दूर दूर की पत्तियां उसकी बहुत छोटी हैं, छोटी पत्तियां नैनो उसमें डालोगे तो प्रभाव उतना नहीं आया, क्योंकि पत्तियों का साइज बहुत कम है,
1: यानी तो, अच्छा बायोमास हो।
0: तो उससे पहले एक बार यूरिया का जो दानेदार यूरिया उसको भी आप छिड़काव कर देंगे तो जब पत्तियां आ जाएंगी इसके बाद फिर यूरिया देने की जरूरत नहीं है आपको।
1: और जहां नैनो डीएपी का इस्तेमाल हो रहा है बीज शोधन में या पर्णी छिड़काव में, क्या दानेदार डीएपी का भी इस्तेमाल आधा करना है क्या?
0: हाँ, आधा। अभी हमको शुरुआती दौर में 100% रिप्लेस बिल्कुल भी नहीं करना है, हमारी जो मात्रा है उसकी रिकमेंडेड जो हमारी डोज है उसका 50% ही अभी तक इस्तेमाल करना है, 50% हमको डीएपी से पूरा करना है, 50% नैनो से करना है।
1: आपने नैनो जिंक और नैनो कॉपर की बात की, ये कैसे फायदेमंद है खरीफ फसलों के लिए?
0: नैनो जिंक जो है, जिंक भी जैसे कि हमारे धान में स्पेशली बीमारी भी आती है, खैरा उसकी डिफिशियंसी का सिस्टम दिखाई भी देते हैं, और भी जितनी भी फसलें हैं सबको जिंक की बहुत आवश्यकता होती है। तो जिंक का पैक एक आता है हमारा जो 100 ml का है, वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, और उसको 100 लीटर पानी में 1 ml पर लीटर पानी के साथ छिड़काव करते हैं तो खैरा वाली समस्या नहीं आएगी, और जिंक की जो डिफिशियंसी दिखाई देती है वो भी नहीं दिखाई देगी, जिंक का पूरा प्रभाव अच्छा दिखाई देता है और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, किसान उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉपर एक तरह का आपका फंगस, जो आपका जो फंजीसाइड का काम करता है, जो फंगस वाली बहुत सारी बीमारियां निकल जाती हैं, तो कह सकते हैं एक तरह से पहले से ही आपने उसका एक अरेंजमेंट कर दिया कि बीमारी आने के बाद हमको दवा न डालनी पड़े,
1: यानी तत्व की कमी भी पूरी हो गई और रोगनाशक का भी काम।
0: बिल्कुल करेक्ट बात। तो ये इस तरह से हम इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात एक और बहुत छोटी सी है कि इन सारी चीजों को हम लोग छिड़काव की जरूरत पड़ती है तो नैनो डीएपी, नैनो यूरिया, जिंक, इनको भी एक साथ मिला के दे सकते हैं। कभी कभी कई बार पहले की जो संभावना आपने सुनाई भी होगा कि फास्फोरस के साथ जिंक को मिला के नहीं देना चाहिए, लेकिन इसमें डीएपी के साथ आप जिंक को मिलाकर दे सकते हैं,
1: यानी नैनो डीएपी के साथ नैनो
0: जिंक दे सकते हैं।
1: अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत
0: कोई दिक्कत नहीं है। इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें पॉलीमर होता है, वो आपस में क्लैश मतलब नहीं चिपकते हैं, अलग अलग अपना काम करते हैं वो।
1: एक सवाल और तेवतिया साहब की, जो खरीफ की अन्य फसलें हैं जैसे दलहनी है, तिलहनी है, अनाज वाली में मक्का है या मोटी अनाज है,
0: बिल्कुल,
1: क्या इसमें भी नैनो डीएपी से बीज शोधन हो सकता है?
0: बिल्कुल हो सकता है। नैनो डीएपी से दलहन तिलहनों में तो 50% की जो बात कर रहा था उसमें तो 100% जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल आप शोधन कर दीजिए। और मक्का में भी आप 50% कम कर सकते हैं, मक्का में तो बहुत अच्छे प्रभाव आ रहे हैं उसके बुवाई में इस्तेमाल करने से, और बाद में उसकी पत्तियों की जो कैनोपी बहुत ज्यादा होती है तो उस पर नैनो यूरिया के और नैनो डीएपी का प्रभाव बहुत अच्छा है।
1: तेवतिया साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ फसलों में स्मार्ट उर्वरक प्रयोग के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कार्यालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर 99563-91295

0: फाइव नौ नौ पाँच छः तीन नौ एक दो नौ पाँच।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ फसलों में स्मार्ट उर्वरक प्रयोग के बारे में? तेवतिया साहब,
0: मैं ये अनुरोध करूंगा कि जो हमारी पद्धति थी किसानों की, जो एक बहुत हरित क्रांति जब आई थी तो उसमें उर्वरकों का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन पैदावार की आकांक्षा में हमने उनका बहुत ज़्यादा प्रयोग करना शुरू कर दिया है, जो हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए, मृदा स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं। नए उर्वरकों को अभी 100% भले ही न करें, 50% तक रिप्लेस करें। रिप्लेस करेंगे तो आगे एक अच्छा जीवन, अच्छा पर्यावरण, अच्छा जल और अच्छी भूमि बनाने की संभावनाएं हैं। मेरा पुनः अनुरोध यही है कि नए उर्वरकों का इस्तेमाल आप जरूर करें, इनसे दूर न जाएं। और कोई जानकारी चाहते जो आपको नंबर बताया, हमारे से सीधे बात कर सकते हैं और हम लोग आपको हर समय उपलब्ध रहेंगे।
1: यतेंद्र कुमार तेवतिया साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ फसलों में स्मार्ट उर्वरक प्रयोग कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कार्यक्रम विज्ञान और किसान में आज आपने यतेंद्र कुमार से खरीफ फसलों में स्मार्ट उर्वरक प्रयोग इस विषय पर बातचीत सुनी। भेंट करते थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ कार्यक्रम विज्ञान और किसान अब यहीं समाप्त होता है।
3: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
7: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
6: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
7: कहाँ से पता चलेगा?
6: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
8: आज ही सर्च करूंगा।
6: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
9: RBI कहता है,
10: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। जितेंद्र पुत्र रमेश चंद्र निवासी हाल पता बड़ेल रफी नगर थाना बाराबंकी जनपद बाराबंकी से हमें सूचित करते हैं कि गुड़िया, जिनकी आयु लगभग 40 वर्ष है, ऊंचाई 5 फुट 5 इंच, रंग गोरा है, वो दिनांक 5 मार्च 2026 से कहीं लापता हैं। घटना के समय उन्होंने सलवार सूट पहना हुआ था और दुपट्टा नीले रंग का था। इनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7080449993। संदीप कुमार यादव, ग्राम बदोसराय, थाना बदोसराय, जनपद बाराबंकी, दिनांक 6 फरवरी 2026 से कहीं लापता है। संदीप की आयु 30 वर्ष है, चेहरा गोल है, ऊंचाई 5 फीट 5 इंच, बाल भूरे और लंबे हैं। घटना के समय उन्होंने काली जैकेट, सफ़ेद टी शर्ट और काले रंग की जीन्स पहनी हुई थी। संदीप के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर है। इनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7080553624। मोहम्मद इस्लाम, ग्राम अनवारी, थाना कुर्सी, बाराबंकी से सूचित करते हैं कि तरन्नुम, जिनकी आयु 19 वर्ष है, कद 5 फुट, शरीर सामान्य इकहरा मजबूत बदन, दिनांक 8 फरवरी 2026 से कहीं लापता।

घटना के समय उन्होंने सलवार सूट पहना हुआ था। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर आप इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। पता है, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, महानगर, लखनऊ। इसी के साथ खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं अब यहीं समाप्त होती हैं।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज इस कार्यक्रम के तहत सुनिए पूजा तोमर द्वारा गाए अवधी लोकगीत। पहले सुनिए इनके स्वर में ये खेमटा।

अभी आप सुन रहे थे पूजा तोमर के गाए अवधी लोकगीत। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी अब यहीं समाप्त होता है।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम

चित्रपट से। कार्यक्रम में पहला गाना लीजिए, सुनिए फिल्म चलते चलते से, अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की आवाज़ में। बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत है जतिन ललित का।

कार्यक्रम में अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म साथिया से। आवाज़ है अदनान सामी की, बोल लिखे हैं गुलजार साहब ने और संगीत है AR रहमान का।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

कार्यक्रम में आखिरी गाना लीजिए, सुनिए फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे से अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ में, जिसके बोल लिखे हैं सुधाकर शर्मा ने और संगीत है हिमेश रेशमिया का।

0: अभी आपने संस्कृत कार्यक्रम में नामातु पर देवतामा विषय पर आचार्य विनोद कुमार मिश्रा की वार्ता सुनी। इसी के साथ संस्कृत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। दोपहर के 3:30 और 18 सेकंड हुए हैं और आइए अब सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।

0: दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। और दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि हम इस कार्यक्रम में आपको किसी ऐसे विशेषज्ञ से, किसी ऐसे चिकित्सीय विशेषज्ञ से मिलवाते हैं, आपके सवाल उनके सम्मुख रखते हैं, ढेर सारी ऐसे विमर्श करते हैं जिसमें वो हमें ऐसी ढेर सारी बातें बताते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होती हैं और जो हमारा विषय होता है उससे जुड़ी होती हैं। तो दोस्तों, जो हमारा आज का विषय है वो है अपेंडिक्स, लक्षण, बचाव, उपचार और इससे जुड़ी भ्रांतियाँ। दोस्तों, बहुत बार हम अपेंडिक्स का नाम सुनते हैं और बहुत बार हम इससे अवेयर नहीं होते हैं। बहुत बार हमारे परिवार में या हमारे घर में किसी व्यक्ति को हुआ रहता है, हम ध्यान नहीं देते या कई बार इसके जो गंभीर परिणाम हैं उन पर ध्यान नहीं देते। तो इससे कैसे बचें, इसका उपचार कैसे होता है, इससे जुड़ी जो भ्रांतियाँ हैं उनका निवारण कैसे हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी विशेषज्ञ से बात करें। और दोस्तों, आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार भट्ट। आप प्राध्यापक हैं सर्जरी विभाग राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान लखनऊ में और विगत कई दशक से इस विधा में कार्यरत हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं और इससे जुड़ी बातों को बता रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं।
1: धन्यवाद आपका और सारे श्रोताओं को मेरी तरफ से भी नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, बहुत बार हम जैसे अपेंडिक्स का जिक्र सुनते हैं, कई बार परिवार में भी जिक्र होता है कि फला व्यक्ति को हो गया है, वास्तव में क्या है अपेंडिक्स?
1: अपेंडिक्स बेसिकली हम इसको पूरी बात बताएं तो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स नाम है
0: जी।
1: ये क्या होता है, जहाँ से बड़ी आंत शुरू होती वहाँ पे एक मान के चलिए एक ट्यूब जैसा नीचे जुड़ा है, वो कंटिन्यूटी में है। वो बड़ी आंत और छोटी आंत, जहाँ छोटी आंत शुरू हो गई वहीं पे बड़ी आंत के नीचे एक ट्यूब होता है, एक ट्यूब जैसा, ये होता वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। ये उसी का एक हिस्सा है, दो के साइड से है, मेन कंटिन्यूटी में नहीं है, मेन कंटिन्यूटी में नहीं है। तो उसके एज सच इंसान में ज्यादा काम नहीं है, ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन जब उसमें कोई बीमारी हो और खासकर अगर इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन होने के अलग अलग तरीके हैं, वो हो जाए तो उसको बोलेंगे हम एक्यूट अपेंडिसाइट्स या अपेंडिसाइट्स, आम भाषा में अपेंडिसाइट्स। ये बहुत कारण है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि उसका जो मुंह है, मुंह पे अगर रुकावट हो, एक ट्यूब है मान के चलिए, एक रबर का ट्यूब है, उसके मुंह पे किसी भी कारणवश इंसान में वहां पे सूजन रहती है, कुछ इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से लिम्फ नोड एक चीज़ होती है सफ़ेद, जिसमें सफ़ेद खून हम बोलते हैं, सफ़ेद खून एक है, एक लाल खून है, एक सफ़ेद खून, उसके कुछ कण होते उस जगह पे, अगर वो मुहाने पे बढ़ गए, या कभी कभार क्या होता है जो छोटी आंत से जो खाना पचते पचते आखिर में बड़ी आंत तक आके अगर उसमें कंटेंट कम हो गया, वाटर कंटेंट, तो वो एक गांठ सी बनाती है, जिसको एक पत्थर टाइप का, जिसको हम बोलते फिकोलिथ, वो अगर उस किनारे पहुंच गया, उसके मुहाने को बंद कर दिया, तो जहां पे भी रुकावट हो किसी बायोलॉजिकल ड्रेनेज ट्यूब्स में, वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो उससे वो अपेंडिसाइटिस होता है। कभी कभार अगर हम इसी को आगे चलते जाएं तो कभी कभार उस हिस्से में कभी कभार ट्यूमर भी होते हैं, वो भी उस मुहाने को बंद कर देगा और फिर वो एज प्रेजेंट करेगा एज एक्यूट अपेंडिसाइटिस।
0: डॉक्टर साहब, क्या इसके प्रकार भी होते हैं कुछ?
1: नहीं, हाँ, डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी, सीवियरिटी दो के टर्मिनोलॉजी चेंज होती। आम आदमी के लिए ये है कि हम बोलेंगे कि भाई एक्यूट अपेंडिसाइटिस हुआ, लेकिन वो जो इन्फेक्शन है वो उतना ऊंचे तक नहीं पहुंचा, कटहरल टाइप का हुआ, थोड़ा इन्फ्लेमेशन हुआ, दर्द हुआ, वो ठीक हो गया। किसी में वो रुकावट बन गई, लेकिन वो रुकावट थोड़ी देर में सूजन और आपने थोड़ा सा दवा दे दिया, वो रुकावट खुल गई, या वो रुकावट उतनी सीवियर थी, खुली नहीं, ऊपर खून की दौरान भी बंद हो गया और वो फट भी गया, क्योंकि जहाँ पे भी वो रुकेगा वहाँ पे दबाव बनाएगा और वो हिस्सा गिव वे करेगा, तो वहाँ पे परफोरेशन जिसको हम बोलते हैं कि फट गया है, और फटने से क्या होगा कि पूरा इन्फेक्शन फैल सकता है। ये वैरायटीज डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी के कितना सीवियर है।
0: डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए अब अपेंडिक्स हो गया या ये रोग हो गया, तो

0: उपचार क्या है, कैसे उपचार होता है इसका?
1: इसके जो अगर एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो गया तो बेसिक तो अलाइज सर्जरी है, सर्जरी है, लेकिन सर्जरी कब करनी चाहिए? विद इन 36 to 48 आवर्स सर्जरी होनी चाहिए। अगर उस दौरान नहीं हुई तो एक पॉलिसी होती है कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, अगर उसको ध्यान से एडमिट करके ही रखना होता और दवा दे के, एंटीबायोटिक दे के, इन्फ्लेमेशन कम करके अगर वो कंट्रोल में आया तो कंट्रोल में, क्योंकि उसके आजू बाजू सारी आंत होती है, जब कहीं सूजन होएगी तो उन आंतों पे भी सूजन होएगी और उस वक्त सर्जरी करना थोड़ा खतरा वाला होता है, लेकिन कभी कभार उस हालत में भी करना पड़ता, अगर वो फट गया, फैल गया, तब तो आपको ऑपरेशन करना ही पड़ा।
0: डॉक्टर साहब, हम लोग जैसे बात कर ही रहे हैं कि भाई मान लीजिए ये फट गया, तो क्या इससे कोई गंभीर परिणाम हो सकते हैं, कोई और बड़ी दिक्कत हो सकती है?
1: हाँ, पूरे गंभीर परिणाम हो सकते कि वो पूरा जो इन्फेक्शन है, मटेरियल है, पस है, वो पूरे पेट में फैलेगा। पेट में फैलेगा तो पूरा पेरिटोनाइटिस जिसको हम बोलते हैं, पूरा सिस्टम को बिठा देगा, पूरे सिस्टम जिसको बोलते मल्टी ऑर्गन फेलियर तक ले जा सकता है। हाँ, और एक उन्हें कभी कभार क्या होता है, एक एब्सेस बना देता है वहीं पे। शरीर में ना बहुत सारे सिस्टम हैं जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं कुदरत के तौर पे, तो हम उसको वॉल ऑफ करता है, एक जिली टाइप का होता है जिसको ओमेंटम बोलते, वो उसको किनारे लगा देगा, वहीं पे पस को रोक के रखेगा, वहीं पे रखेगा, तो या तो लोकल एब्सेस बनाएगा या तो फुल ब्लोन पेरिटोनाइटिस करेगा जो पूरे पेट में पस फैल जाएगा।
0: डॉक्टर साहब, क्या कोई परीक्षण भी होते हैं कि जिनके आधार पर ये समझा जाए कि हाँ ये दिक्कत हो रही है?
1: हाँ, अभी के दौर में बेसिक आप चीजें कर सकते हैं, जैसे कि एक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड आपको बता देगा कि यहाँ पे है, अगर क्लियर कट ही है तो साफ दिखा देगा, मोटी बात तो दिखा देता है, ऑलमोस्ट 80% के केसेस तक आप उसे आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक खून का एक टेस्ट है वो, जिसमें खून के हम जुज देखते हैं कि सेल्स किस टाइप की हैं, उसे भी कर सकते हैं, जिसको TLC बोल सकते हैं, उससे भी पता कर सकते हैं। मेन एक चीज है कि अगर मरीज ना, ये चीज दो चीजें याद रखे कि पेट का दर्द अगर नाभि पे हुआ और वो दाएं निचले वाले भाग में गया पेट के, तो ये क्लासिकल हिस्ट्री है उसकी अपेंडिसाइटिस की। नाभि से दर्द दाएं निचले हिस्से में गया तो मोस्ट प्रोबेबली ये अपेंडिसाइटिस ही है, इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ पेन। ये अगर है तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यू विल बी राइट इन कि हम बोल सकते हैं ये अपेंडिक्स ही है।
0: डॉक्टर साहब, बहुत बार जैसे हम लोग बहुत बार जागरूक नहीं होते या समझ नहीं पाते हैं, कई बार इस तरह का दर्द हो रहा होता है, हम बहुत बार स्वयं ही दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, हमारे ऐसे श्रोताओं को इसके संदर्भ में क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: हम तो ये बोलेंगे कि पेट दर्द जो सीवियर पेन करता हो और तो वो लगातार बना रहे जी, तो मुझे लगता कि डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए, दिखाना। आजकल ऐसा है नहीं कि भाई खाली बड़े शहर में डॉक्टर है, हर जगह डॉक्टर अवेलेबल हैं, अपने केमिस्ट से दवा लेने के बजाय एक बारी डॉक्टर साहब को दिखा दें, वो देख के मोटा मोटा एक अक्ष बना लेगा कि इसमें कौन चीज़ है, क्या ये सीवियर है कि हमको सामान्य पेट दर्द है, वो ये चीज़ तो कर बता देंगे, आप आइडेंटिफाई तो हो जाएगा, लेकिन खतरे भी बहुत हैं। आप अगर हम डिले करें, जैसे हमने बोला कि सर्जरी शुरुआत में करनी और बाद में उसको लंबा एंटीबायोटिक कोर्स करने की ज़रूरत है, ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि सर्जरी ही आज नहीं तो कल शुरुआत वाले फेज में अगर नहीं हुई तो कंट्रोल करके उसके बाद हम 6 से 8 हफ्ते के बाद सर्जरी करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरवल अपेंडिसेक्टमी, तो वो वाला हिस्सा करना ही है।
0: मतलब अवेयर रहें, और डॉक्टर साहब ने जैसा बताया भी कि भाई आप वो परीक्षण करा लें और ये सुनिश्चित कर लें कि हाँ ये दिक्कत हुई है, और उसके उपरांत डॉक्टर को दिखा के उसके अनुरूप दवाई लेते रहें। श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा और डॉक्टर संजय जी से हम ढेर सारी ऐसी बातें अपेंडिक्स के संदर्भ में करेंगे ही, पर आइए आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा ट्रैक।

0: दोस्तों, एक बार पुनः कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में स्वागत है। और डॉक्टर साहब से हम अभी बात कर ही रहे थे कि भाई अपेंडिक्स में और क्या दिक्कतें होती हैं या उससे जुड़ी और क्या भ्रांतियां हैं ऐसी। हमारे कई श्रोता हमें संदेश भी भेजते हैं, अपने फ़ोन कॉल भी करते हैं। हमारे कई श्रोताओं ने अपने संदेश भी भेजे हैं, मैं डॉक्टर साहब को वो संदेश संदर्भित कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, एक हमारे श्रोता हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि एक सामान्य व्यक्ति जो जैसे मेडिकल टर्म्स नहीं समझता है या मेडिकल की जानकारी नहीं है उसके पास, वो कैसे ये समझ ले कि ये दिक्कत हमें मुझे हो रही है अपेंडिक्स की, ये दिक्कत हो रही है, क्या कोई ऐसे लक्षण जो उसे दिखने लगे हैं सामान्य तौर पर, वो कैसे समझ ले।
1: एक तो सबसे पहली चीज़ जैसे हम बात कर रहे थे दर्द, जो नाभि से दर्द उठा और यहाँ पे पहुँच गया दाएं साइड नीचे पेट में, ये अच्छा ऑलमोस्ट 50% लोगों में बुखार रहता है, उल्टी करने का मन होता, उल्टी करना इधर वो दर्द होता, पैर सीधा करना, ये उस साइड दाएं वाली टांग सीधी करनी, कभी कभार ये भी एक लक्षण हो सकता है, क्योंकि अपेंडिक्स की पोजिशंस वेरी करती हैं कि किस साइड पड़ा है, तो वो भी हो सकता। और छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों में खासकर एक ख्याल रखना कि इनके ना जो प्रेजेंटेशन है थोड़ी वेरीड होती है, और इनका जो वो बचाव वाला सिस्टम है, जो इनबिल्ट सिस्टम है, वो थोड़ा कमज़ोर होता, तो इनमें कॉम्प्लिकेशन की दर ज़्यादा होती है छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों में। तो बेहतर है कि ये दो लोग पहले अस्पताल में या किसी डॉक्टर साहब का परामर्श ले लें, वो बेहतर रहेगा। और बाकी ये चीज़ें हैं कि होने को तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एट प्रेजेंट फीवर है, नौशिया वोमिटिंग है और पेन आपको हो रहा, तो एक बारी परामर्श लेना बनता है डॉक्टर साहब से।
0: डॉक्टर साहब, जैसा अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि भाई सर्जरी करा ली जाए, एक हमारे श्रोता हैं, उन्होंने पूछा कि क्या सर्जरी के अलावा भी कोई विकल्प है या इसका केवल एकमात्र इलाज सर्जरी ही है।
1: अगर एक्यूट अपेंडिसाइटिस वाला स्टेज हमने मिस कर गया, डिले लेट प्रेजेंटेशन हो गई जो हम बात कर रहे थे, उस हालत में कभी कभार आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे भी चल सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक दे दिए और बाद में जरूरत ना पड़ी सर्जरी की, ये एक ऑप्शन है। लेकिन इसमें भी ये चीज़ है कि ये डॉक्टर साहब से दिखा के ही होगा। ये भी हो सकता है कि शुरुआत वाले फेज में ही अपेंडिक्स पहले ही वो क्या हम बोलते हैं उसको गैंग्रीन हो गया और एंटीबायोटिक ने उसका हाल चाल कंट्रोल कर लिया और बाद में जरूरत ना पड़ सकती, ये भी एक हो सकता। लाइफ टाइम रिस्क ऑलमोस्ट 7-8% रहता है और सर्जरी करनी ही पड़ती है, एक्सेप्ट फॉर ये जो सबसेट है।
0: सर, एक श्रोता हैं और उन्होंने एक सवाल भी पूछा, कमोवेश ये से जुड़ा भी हुआ है। उनका कहना है कि क्या मान लीजिए हमने सर्जरी करा ली इस बीमारी के इलाज में, क्या उससे और कोई दिक्कत तो नहीं हो सकती पेट में?
1: सर्जरी से एज सच तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभार क्या होता कि शरीर जो अंदर पेट है, पेट को जो ही आप एक्सपोज करेंगे तो बाहर, तो वो कभी कभार अंदर जुड़ जाते हैं, उसको हम बोलते एडहेजन्स, और ये वाले एडहेजन्स खासकर तब होते जब हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट को थोड़ा डिले कर दिया, एडहेजन ओबस्ट्रक्शन करके आता कि पेट की आंतों का दौरान रुक गया, वो वाला चीज़ हो सकता है, अदरवाइज ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है।
0: डॉक्टर साहब, ये तो रहा कि भाई हमने सर्जरी करा ली, इलाज करा लिया, अब क्या कोई बचाव के उपाय भी हैं कि जिससे ये दिक्कत ही ना हो?
1: बचाव के उपाय तो वही हैं कि एक स्वस्थ जीवन की ओर हम चलें, हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर आप हाई फाइबर डाइट हो, हाइड्रेटेड रहें,

0: ये वाली जो अपेंडिसाइट्स है ये गर्मी और मानसून के इस बीच हमारे अलग हिंदुस्तान में नॉर्थ में इन वाले टाइम पे ज़्यादा होता है, क्योंकि यू आर मोर प्रोन फॉर एक्सपोजर टू इन्फेक्शन। तो बेहतर है साफ सुथरा और हाई फाइबर और हाइड्रेशन, ये दो चीज़ें ज़्यादा, जो ये है ना लो फाइबर और फास्ट फूड, इनको अवॉइड करने की ज़रूरत है।
1: डॉक्टर साहब, क्या खान पान से भी इसका कोई संबंध है? क्या ये खान पान से जुड़ी हुई है? कुछ हम ऐसा पदार्थ खा रहे हो कि जिससे इसके होने की संभावना हो?
0: खाने पीने से ही ये लो फाइबर जो भी चीज़ें आपके आंत में रिजिड्यू नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा दे विल मेक इट मोर प्रोन फॉर एपेंडिसाइट्स। जैसे यही है हाई, ये वाला जो फास्ट फूड वाला जंक फूड जिसको हम बोलते हैं, इसको अवॉइड करना और हाइड्रेटेड रहें, ये मुझे लगता है ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी।
1: डॉक्टर साहब, चलते चलते श्रोताओं को कोई ऐसा संदेश देना चाहें कि जिससे वो सुरक्षित रहें और इस तरह की दिक्कतें ना हों।
0: हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि अगर पेट दर्द आपको लगातार बन रहा है, एक दो घंटे तक हो रहा है, तो बेहतर है कि आप एक डॉक्टर की सलाह ले लें, इग्नोर ना करें।
1: जी। तो श्रोताओं, आपने डॉक्टर संजय को सुना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपके वो जो ढेर सारे भ्रम रहे होंगे आपके मनोमस्तिष्क में, वो जो विचार रहे होंगे जो इससे जुड़े नहीं थे और केवल भ्रम के रूप में थे, वो दूर हो गए होंगे, और आपने जो इसका इलाज है वो समझ लिया है, जो इसकी बेसिक जानकारी है कि कैसे ये जान लें कि ये दिक्कत हो रही है और कैसे वो सामान्य से लक्षण के आधार पर हम पहचान कर लें, और पहचान के उपरांत हम तुरंत चिकित्सक के पास जाएं, इसका इलाज कराएं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमें यूं ही सुनते रहें, हमें लगातार फ़ोन करते रहें, अपने संदेश भेजते रहें, हम आपके संदेश, आपके कॉल अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। दोस्तों, जो हमारे अगले कार्यक्रम का विषय है वो है योग और प्राणायाम की हमारे जीवन में भूमिका। हमें आप इससे संबंधित सवाल भेज सकते हैं, अपने संदेश भेज सकते हैं, हम आपके सवाल और संदेश कार्यक्रम में शामिल करेंगे और अपने जो विशेषज्ञ हैं उनसे ये साझा करेंगे, उनकी राय लेंगे, और आपके जो भ्रम हैं, आपकी जो समस्याएँ हैं, वो हम डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे, उनसे विमर्श करेंगे, वो दूर करेंगे। हमें यूं ही फोन करते रहें, अपने संदेश रिकॉर्ड करवाते रहें। आप हमें बुधवार को अपराह्न 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में फोन कॉल कर सकते हैं, अपने संदेश भेज सकते हैं और संबंधित विषय के संदर्भ में अपनी ढेर सारी बातें बता सकते हैं। हमें यूं ही सुनते रहें। नमस्कार।

अभी आपने सुना फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, जिसका संचालन किया सुभाष खन्ना ने। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है दिव्यांगजनों के लिए विशेष कार्यक्रम संकल्प।
3: दिव्यांग भाई बहनों के लिए समर्पित कार्यक्रम संकल्प में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, आज का जो हमारा विषय है वो है दिव्यांगों के लिए संतुलित आहार, क्योंकि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए पोषक और संतुलित आहार का बहुत ही महत्व है। क्योंकि जो हमारे शारीरिक रूप से सक्षम लोग होते हैं वो भी आज के इस बिजी दौर में कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाते हैं, तो हम अपने दिव्यांग भाई बहनों को किस प्रकार से स्वस्थ रख सकते हैं, इन सब विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आयुर्विज्ञान संस्थान की आहार विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम तिवारी जी। मैडम, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं अपने सभी दिव्यांग भाई बहनों को अपना सेहत भरा नमस्कार कहती हूँ।
3: तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब की जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है वो किस प्रकार से अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ

0: रख सकते हैं, वो अपनी दिनचर्या में क्या ऐसा खान पान की शुरुआत करें, क्या ऐसा शामिल करें जिससे वो बीमार कम से कम पड़े, या अगर कहा जाए कि बीमार ना ही पड़े तो सबसे अच्छी बात होगी।
1: जी आपने बिल्कुल सही कहा, प्रथम सुख निरोगी काया, और ये बात हम सभी पे लागू होती है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हमें अपनी शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमारे आहार पे हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आहार हमारी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। जहां आपको शारीरिक एक्सरसाइजेस का महत्व है, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम कहते हैं, वैसे ही आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक संतुलित और संपूर्ण आहार का होना बहुत जरूरी है कि हम उसका सेवन नियमित रूप से करते रहें और उसे अपनी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बना लें।
0: तो अभी आपने कहा कि संतुलित आहार, तो हमारे यहाँ जो दिव्यांग भाई बहन है, विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताएं उनके साथ होती हैं, कुछ लोग श्रवण बाधित होते हैं, दृष्टि बाधित होते हैं, तो जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है उनका जो मूवमेंट होता है, चलना फिरना, वो समान व्यक्ति की अपेक्षा में काफी कम होता है। जो लोग फिजिकली हैंडीकैप है, जो लोग अस्थिबाधित हैं, उनके लिए मूवमेंट जो उनका बहुत कम हो जाता है, तो उसके लिए क्या वो खान पान में ऐसा शामिल करें कि उनको कोई बीमारी ना होने पाए, तो ऐसा क्या चीज वो अपने जो खान पान है
1: जी
0: उसमें वो ले सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। कुछ चीजें हमारे लिए हमारी चैलेंजेस को और डिफिकल्ट कर देती हैं, तो वो बात को ध्यान में रखते हुए जैसा मैंने कहा शुरुआत में कि संतुलित और संपूर्ण आहार। संपूर्ण आहार का मतलब होता है कि हर वो खाना हमारी थाली में हो पूरे दिन में जो कि हमारे शरीर को फायदा पहुंचाएगा। जैसे कि ऊर्जा के लिए आपके अनाज, अनाजों में आपका चावल, गेहूं, आपके मोटे अनाज जिसे आजकल हम श्री अन्न कहते हैं, उनका होना। आप प्रोटीन युक्त खाने की बात करेंगे तो दूध, दही, पनीर, अंडे का सफेद भाग, चिकन, मछली, हालांकि लाल मांस लेना नहीं चाहिए, वो नुकसान करता है, बट हाँ मछली और चिकन जो भाई बहन हमारे निरामिष हैं वो इसका सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा वसा के नाम पे हमें बहुत तला भुना तो नहीं खाना है, किंतु हमारे देशी घी 1 या 2 चम्मच या कड़ुआ तेल या जिसे सरसों का तेल कहते हैं उसका प्रयोग, और साथ ही साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारे मौसमी फल और मौसमी सब्जियों पर आप विशेष तौर पर ध्यान दें, उनको जरूर से अपने खाने का हिस्सा बनाएं और इनका सेवन अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। एक बात देवाशीष जी ने बहुत अच्छी बोली थी कि हमें और क्या ध्यान रखना है कि हमारी जीवन शैली वैसे ही थोड़ी सीमित हो जाती है, तो ऐसा कुछ ना हो जिससे कि हमारा वजन बढ़े। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि जो आजकल मार्केट में काफी ज्यादा प्रचलित है, जिसे हम जंक फूड कहते हैं, या कोल्ड ड्रिंक है, चिप्स है, मैगी है, इनके सेवन से आप जितना बच सकते हैं बचने की कोशिश करें। आप कोशिश करें कि अधिक से अधिक चीजें जो बिना तले बनी हो या बिना तेल ज्यादा इस्तेमाल किए बनी हो उनका सेवन करें। रेशा युक्त खाना हमारे खाने में ज्यादा हो, जैसे कि मैंने मोटे अनाज बोले, छिलके वाली दालें हो गई, मौसमी सब्जियां, फल हो गए, इन सबका सेवन आपको मोटापा नहीं बढ़ने देता है। नमक का प्रयोग, ऊपरी नमक, जैसे खाने में जो नमक डला है वो तो डला ही होता है, बट कुछ लोगों की आदत होती है ऊपर से नमक डाल के खाने की, उससे बचें। मार्केट के सॉस, चटनी या अजीनोमोटो, ये जो चाइनीज में काफी डलता है, इन सब के प्रयोग से अगर हम बचेंगे तो ना सिर्फ हमारा मोटापा, किंतु हम जीवन शैली वाले जो रोग जिसे हम कहते हैं उच्च रक्तचाप, आपका हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, मोटापे की समस्या, डायबिटीज की समस्या, इन सब से आप बच सकते हैं, क्योंकि मोटापा ही इन सब का कारण है। तो एक बार हमने अगर मोटापा दूर कर लिया तो हम इन सारी चीजों को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं।
0: तो जैसा कि आपने बताया कि पौष्टिक आहार भी हमें लेना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो शारीरिक रूप से तो वैसे भी अक्षम होते हैं, और अगर वो ठीक से जो पोषण युक्त आहार अगर ना ले सके, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भी चीज रहती है कि हम जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि अगर वो किसी बीमारी से और ग्रसित हो गए तो जो समस्याएं उनके साथ चल रही वो तो एक व्याधि है ही, साथ में एक नई बीमारी भी अगर ऐड हो जाती है तो हमें लगता है कहीं ना कहीं उनके लिए एक समस्या और खड़ी कर देती है। क्योंकि आज के जमाने में हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स के यहाँ दिखाना, लाइन लगना, ये भी काफी चैलेंजेस हो जाता है। क्योंकि आप राम मनोहर लोहिया अस्पताल से आई हैं, तो वहां पर आप प्रतिदिन देखती होंगी कि बहुत से मरीज आते हैं और वहां पर एडमिट होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा अपने पौष्टिक आहार कुछ ऐसा लेते रहना चाहिए जिससे हम कम से कम बीमार पड़े।
1: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही।

0: दिव्यांग जन होने के नाते हमें अपने आहार में या आम जन साधारण को भी इन चार पांच चीजों का या इन चार पांच पोषक तत्वों का बेहद ध्यान देना चाहिए। वो है आयरन, दूसरा है कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12। इसकी कमी अक्सर हम जन साधारण में तो देखते ही हैं, किंतु दिव्यांग जन में ये और ज्यादा मात्रा में कभी कभी देखने को मिल जाती है। तो इससे बचने के लिए तो जो लोह युक्त भोजन है वो हमारे हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, सफेद तिल, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल भी हमारे खाने में लोह तत्व को बढ़ाता है। और एक चीज और ध्यान रखिए, अगर आप कोई आयरन की दवाई ले रहे हैं तो उसे विटामिन सी जैसे कि नींबू के पानी के साथ लेंगे तो वो शरीर में जल्दी एब्जॉर्ब होगी, किंतु वही दवाई अगर हम ये सोचें कि हम दूध के साथ लेंगे तो वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसीलिए दूध के साथ ना लेके आप उसे नींबू पानी के साथ जरूर ले सकते हैं। अब बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम आम तौर पे हम सभी जानते हैं कि दूध में है, दही में है, पनीर में है, किंतु कैल्शियम आपको जान के आश्चर्य होगा कि सहजन की पत्तियां, सहजन की फली, जो सहजन का पेड़ होता है उसकी पत्तियों में बहुत अच्छा है, आपके फूल गोभी के पत्तों में बहुत अच्छा कैल्शियम है, मखाने में बहुत अच्छा कैल्शियम है, सफेद तिल में बहुत अच्छा कैल्शियम है। तो हम इन सब का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हमें ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा और ये हमारे शरीर के आवश्यक पोषक तत्वों को भी भरपाई करने में काफी सहायक होंगे।
1: तो कुल मिलाकर के जो हमारे दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनके जो परिजन हैं, माता पिता हैं, अगर आपके घर में कोई दिव्यांग शिशु है, तो जो चीजें डॉक्टर साहब ने बताई कि आप आयरन के लिए, कैल्शियम के लिए, प्रोटीन के लिए, विटामिंस के लिए, जो भी चीजें इजीली अवेलेबल है, अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो जो भी चीजें आपको प्राकृतिक रूप से मिल रही हैं, तो हमें उसका सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए बजाय इसके कि हम टैबलेट्स का यूज करें या मल्टी विटामिन्स की टैबलेट्स लें। तो बेटर है कि हम, जैसा कि आपने बताया कि सहजन की पत्ती, तो ये इजिली अवेलेबल भी हो जाती है मार्केट में और सीजन के हिसाब से रहती भी है, तो हमें उसका सेवन करना चाहिए। जैसा कि हमें आयरन के लिए जो लोहे की,
0: हाँ, फूल गोभी के पत्ते अक्सर हम लोग फेंक देते हैं या मार्केट में छोड़ आते हैं, उनको भी हमें लाना चाहिए। उनमें भी काफी अच्छा कैल्शियम है। और साथ ही साथ प्रोटीन के लिए लोग बड़े परेशान होते हैं कि क्या हम दूध लेने लगे, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ हर वर्ग के लोग हैं, तो हमें वो भी देखना है कि कई बार दूध हर फैमिली के लिए ले पाना संभव नहीं है। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, जैसे हमारे पारंपरिक भोजन है, हमारा जैसे पारंपरिक भोजन में मैं फरे की बात करूं या सत्तू का पराठा या सत्तू हो गया, या अगर गुजरात की तरफ जाए तो दाल ढोकली हो गई, या हमारे यहाँ बनारस में उसे दाल की दुल्हन भी कहते हैं, इन सब में भी बहुत अच्छा प्रोटीन है। खिचड़ी हो गई, क्योंकि जब आप अनाज और दालों को मिलाकर कोई चीज बनाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के प्रोटीन्स को पूरक कर देते हैं और ये खाना अपने आप में फर्स्ट क्लास प्रोटीन का रूप ले लेता है। तो हमें जरूरी नहीं है जब कोई कहे हाई प्रोटीन के लिए कि हम कोई सप्लीमेंट लें या कोई पाउडर पीना शुरू करें, उससे बहुत बेहतर है कि हम अपने पारंपरिक भोजन की तरफ जाएं।
1: तो ये जो आज का कार्यक्रम है, ये हमारे जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए तो लाभकारी है ही है, साथ ही साथ जो हमारे सामान्य जन हैं, जो लोग शारीरिक रूप से सक्षम हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। आजकल बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि छोटे बच्चे हमारे आंखों में चश्मे लग गए या उनके अंदर ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो गई, बहुत ज्यादा मोटापा हो गया, उनका फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा कम हो गया। तो जो दिव्यांग व्यक्ति हैं वो तो किन्हीं व्याधियों के कारण फिजिकल वर्क कम कर पा रहे हैं, उनके पास सीमित चीजें हैं, लेकिन जो हमारे सामान्य जन भी हैं वो भी कई बार आलस के कारण, हमें ऐसा कह सकते हैं, या जो शुरुआत में मैंने कहा था कि बिजी लाइफस्टाइल है लोगों की, ध्यान कम रखते हैं अपने शरीर का और सोचते हैं कि जब बीमारी आएगी तब वो देखा जाएगा।
0: जी, हम टेंडेंसी कुछ इसी और हम इसीलिए लाइफस्टाइल डिजीजेस की तरफ हमारा देश काफी जल्दी से बढ़ रहा है, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीजेस वो डिजीजेस हैं जहाँ पे हम अपनी लाइफस्टाइल को बदलने में बिल्कुल इच्छुक नहीं है और वही कारण बन जाता है हमारी प्रॉब्लम्स का। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जीवन शैली में बदलाव लाना है, छोटे छोटे अंतराल पे खाना है, कोशिश करके एक ही बार में बहुत सारा भोजन नहीं करना है, तले भुने भोजन से हमको परहेज करना है, बहुत ज्यादा मसाले मना होते हैं किंतु जो हमारे देश के खड़े मसाले हैं आप उनका प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि उनमें प्राकृतिक रूप से काफी एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, और जितना हो सके मौसमी फल सब्जियों का सेवन करें, क्योंकि वो मौसम के अनुकूल होते हैं और मौसम के अनुकूल होने के कारण वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ाते हैं। इसी के साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि हमें ना दिव्यांग जनों में कई बार उनके खाने के जो उपकरण होते हैं उस पे भी ध्यान देना चाहिए कि वो इतने अच्छी स्पून्स बनी हो।

0: या फोक हो या उनके वो सिपर्स हो जो उनको खाना खाने में किसी तरह का अवरोध ना पैदा करें, तो इस चीज का भी हमें पूरा ध्यान देना चाहिए।
1: तो आपने बहुत अच्छी बात इस वक्त कही कि जो हमारे दिव्यांग जन है, भाई बहन है, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे बर्तन डिजाइन होने चाहिए या अगर हैं तो उनके पास भी होने चाहिए कि उन्हें खाने पीने में कई दिक्कत ना हो। क्योंकि कई बार जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि अस्थि बाधित होते हैं तो उन लोग के लिए कई बार मुश्किल होती है, जो चीजें हम लोग के लिए बहुत आसान है उनको कभी कार वो चीज को काम करने में बहुत समय लगता है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा प्रयास करें कि उनके लिए वो चीजें बहुत इजीली हो जाएं, उनको वो समस्याएं ना रहें। और जैसा कि आपने काफी आज जानकारी दी है कि हमारे जो दिव्यांग जन हैं वो किस प्रकार से पौष्टिक आहार का लाभ ले करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, तो अगर मैं बात करूं कि एक दिनचर्या की शुरुआत की जो शारीरिक रूप से अक्षम है या सक्षम है, जब वो प्रातःकालीन सुबह उठते हैं तो वो किस प्रकार से उन्हें अपनी दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे श्रोताओं
0: जी बिल्कुल। एक तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि सुबह उठते से ही जैसे हम कुछ भिगोए हुए बादाम या अखरोट या एक कप दूध या काली चाय या जिस तरह का है किसी बिस्किट के साथ लेने के बाद, आपका जो पहला मुख्य भोजन होना चाहिए वो आपका नाश्ता होना चाहिए जो अधिक से अधिक प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए। तो अगर आप एक सत्तू का पराठा दही के साथ या घर पे जो भी आम चटनी है या आपको लगता है सब्जी भर के या दाल का पराठा कुछ इस तरीका जो हमारे पारंपरिक भोजन है या सब्जी रोटी एक ग्लास दूध के साथ या दही के साथ या पनीर भर के रोटी, आप कुछ इस तरह की चीज लेकर के अपना दिन शुरुआत करें। बीच बीच में मौसमी फल खा लिया, भुने हुए मखाने हैं, लैया हो गया, और पानी के रूप में पानी अधिक पीना है तो अगर आप पानी नहीं पी पा रहे तो उसके रूप में तरल पदार्थ ले लीजिए, जैसे मट्ठा हो गया, आपका नींबू शिकंजी है, अभी मौसम गया आम के पना, बेल का शरबत, इन सब चीजों का सेवन करके भी आप अपने शरीर को हाइड्रेटेड रख सकते हैं। तो दिन की शुरुआत मतलब आपका नाश्ता वो बहुत अच्छा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए और आपकी जरूरत के हिसाब से आपके शरीर के पोषक तत्वों को पूरा करने वाला होना चाहिए।
1: तो आज आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, तो जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए आप और क्या कहना चाहेंगी कि वो किस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं?
0: देखिए, खाना हमारी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ तीनों को कवर करता है। तो मैं अपने दिव्यांग भाई बहनों से यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल भी आप अपना जब भी खाना खाएं उसको इतने संतुष्ट रूप से और स्वस्थ और सुखी मन से खाएं। जैसा आप जानते हो ना, जैसा खाएंगे वैसा ही हम होंगे। तो आप जितने अच्छे पॉजिटिव वाइब से अपने अन्न को ग्रहण करेंगे उतना ही वो शरीर को स्फूर्ति देगा और पॉजिटिविटी देगा। तो मेरा यही मैसेज है कि जब भी खाएं, जो भी खाएं, स्वस्थ मन से खाएं।
1: तो डॉक्टर पूनम तिवारी जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आई और आज आपने दिव्यांग भाई बहनों के लिए और जो शारीरिक रूप से स्वस्थ लोग हैं उनके लिए भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां दी कि किस प्रकार से वो अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं। और आपने बहुत बढ़िया बात कही कि जब भी आप कोई भी खाना खाइए तो आप एक अच्छे विचार के साथ खाना खाइए, एक पॉजिटिव सोच के साथ खाना खाइए कि ये जो भोजन मैं खा रहा हूँ वे हमारे शरीर के लिए लाभकारी है। तो यकीन मानिए आपको एक अच्छी वाइब्स मिलेगी और आप शारीरिक रूप से स्वस्थ भी रहेंगे। तो आज आप हमारे कार्यक्रम में आई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद इस मंच को देने के लिए।
2: कार्यक्रम संकल्प में आज आपने डॉक्टर पूनम तिवारी से दिव्यांगों के लिए संतुलित आहार विषय पर बातचीत सुनी। भेंटकर्ता थे देवाशीष। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम में पहला गाना लीजिए, सुनिए फिल्म बंटी और बबली से सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में। बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

प्रोग्राम में अगला गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म जानम समझा करो से उदित नारायण की आवाज़ में, जिसके बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत अनु मलिक का है।

प्रोग्राम का आखिरी गीत लीजिए, सुनिए फिल्म मैं हूं ना से अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल की आवाज़ में, जिसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत अनु मलिक का है।

इस आखिरी गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 4:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक झनकार, जिसके तहत आज सुनिए मुन्नू लाल द्वारा गाए भोजपुरी लोकगीत। पहले लीजिए सुनिए इनके स्वर में ये देवी गीत।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: कार्यक्रम चल रहा है लोक झनकार। हमारे आज के कलाकार हैं मुन्नू लाल, और अब लीजिए सुनिए इनके स्वर में ये निर्गुण।

0: अभी आप मुन्नू लाल के स्वर में ये कहरवा सुन रहे थे। अब आज का लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम लोक झनकार समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता भी शामिल हुए। इसमें उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा तथा जैव प्रौद्योगिकी सहित 13 प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के बाहर इस विशेष पहल की मेजबानी को फ्रांस के लिए सम्मान का विषय बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को

0: न केवल अपार प्रतिभाओं से संपन्न देश के रूप में देख रही है, बल्कि नवाचार के देश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में भी देख रही है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद और इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति सहित कई प्रमुख व्यापारिक नेता भी उपस्थित थे। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों आज भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रतिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि राज्य को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रेलवे परियोजनाओं और बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए भी बड़ी राशि दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 1.25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोम्मा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहत ने रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे डेओ को 5-1 से हराया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंगम के एजबेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.1 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत एजबेस्टन बर्मिंगम में भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे शाम 6:30 से 7:18 तक, शाम 7:31 से 8:45 तक और रात्रि 9:30 से मैच की समाप्ति तक। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला आप सुनेंगे रात्रि 11:10 पर। आज का विषय है सशक्त भारत। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग अब से थोड़ी देर में यानी शाम 5:10 पर, जिसमें आज सुनिएगा संक्रामक रोग कारण लक्षण और निदान पर डॉक्टर नीरज कुमार गुप्ता आयुर्वेदिक चिकित्सक से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की भेंट वार्ता। नई उड़ान कार्यक्रम का समय होगा शाम 5:45 पर, जिसमें आज द सोशल सिग्नल के अंतर्गत सुनिएगा डिजिटल आदतें और सामाजिक व्यवहार, स्क्रीन आदतें और सामाजिक व्यवहार, स्क्रीन के उस पार जीवन, आरती की

ओबी पर आधारित ये कार्यक्रम। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की, और आइए अब आपको जानकारी देते हैं कल यानी 15 जून 2026 को आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला आप सुनेंगे कल रात्रि 11:10 पर। कल का विषय होगा विदेश नीति। जिले की हलचल आप सुनते हैं हर रोज प्रातः 9:15 पर। कल सुनिएगा देवरिया और गाजीपुर जिलों की हलचल। उर्दू कार्यक्रम होगा सुबह 9:30 पर, जिसमें कल समात फरमाइएगा इब्ने इंशा शहर 4 और गोपी चंद्र नारंग पर मबनी खसूसी प्रोग्राम। सदाकार होंगे आसिफ इकबाल और शमसुल आरफीन। कृषि चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 6:05 पर सुनिएगा केला की उन्नत बागवानी के बारे में। जानकारी देंगे डॉक्टर टी दामोदरन। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। कलौंजी छोटे दाने बड़े काम के बारे में नीना सोनकर बताएंगी कल की स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में प्रातः 7:00। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रातः 7:31 और रात 10:30 पर सुनिएगा रविनाथ मिश्र का तबला वादन। वंदना शुक्ला और रत्ना शुक्ला के गाए अवधि युगल लोकगीतों का आनंद लीजिएगा लोकरंग कार्यक्रम में प्रातः 9:50 पर, और लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर। बुजुर्गों के कानूनी अधिकार। आनंद कुमार सिंह की ये वार्ता हम आपको सुनवाएंगे कल के घर आंगन कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर। गन्ने में कृषि रक्षा कार्य पर डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता प्रसारित होगी विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 पर, जिसमें कल आप सुनेंगे पत्रकारिता की शिक्षा और रोजगार पर डॉक्टर मनीष कुमार से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की बातचीत। नई उड़ान कार्यक्रम होगा शाम 5:45 पर, जिसमें कल सुनिएगा संकल्प वाणी एट 1947 सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण समरस भारत का संकल्प रीना की ओबी पर आधारित ये कार्यक्रम। गर्मी में स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में डॉक्टर स्मृति जैन बताएंगी लोकायतन कार्यक्रम में शाम 6:30 पर। खेती किसानी कार्यक्रम होगा शाम 6:50 पर, जिसमें कल सुनिएगा पशुओं में नस्ल सुधार पर डॉक्टर संतोष कुमार यादव से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता। स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम में शाम 7:31 पर सुनिएगा वार्ता रेबीज से बचाओ। वार्ताकार होंगे सुनील यादव और किडनी स्वास्थ्य के प्रति रहे सचेत। इस पर जानकारी देंगे डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा। डॉक्टर रविंद्र प्रताप सिंह का काव्य पाठ प्रसारित होगा हिंदी कार्यक्रम में रात 8:00। संजय श्रीवास्तव के गाए भजनों का आनंद लीजिएगा सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर, और कल रात 10:00 आप सुनेंगे नाटक। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग।

0: हेलो नमस्कार गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो साथी आयुषी और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट मांडवी।
1: जी हाँ, और हम दोनों लेकर हाजिर हो चुके हैं आपके अपने प्रोग्राम युवा तरंग। आयुषी, आज रास्ते में आते समय हम एक बात सोच रहे थे। हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, अच्छे मार्क्स, अच्छी जॉब, पहचान, सफलता, लेकिन इस दौड़ में कई बार हम ये भूल जाते हैं कि जो ज़िंदगी है वो सिर्फ मंजिलों का नाम नहीं है बल्कि उन पलों का भी नाम है जिन्हें हम रास्ते में जीते हैं।
0: बिल्कुल मांडवी, और मुझे लगता है कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि

0: हमें हर दिन कुछ नया देखने, समझने और सीखने का मौका देती है। कभी कोई छोटी सी घटना हमें मुस्कुराने की वजह दे देती है, तो कभी किसी अनजान व्यक्ति की एक अच्छी बात पूरे दिन को यादगार बना देती है। खुशियाँ हमेशा बड़ी नहीं होती, कई बार वो हमारे आसपास ही बिखरी होती हैं।
1: एग्जैक्टली। और आजकल हम अक्सर भविष्य की चिंता में ये जो हमारा दिन है या बीता हुआ जो समय है उसकी यादों में इतने उलझ जाते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी प्रेजेंट में चल रही है वर्तमान में, तो वर्तमान को हम खुलकर जी ही नहीं पाते, जबकि यही वर्तमान कल हमारी याद बन जाएगा।
0: और शायद इसीलिए हमें अपने दिन में कुछ ऐसे पल ज़रूर निकालने चाहिए जब हम सिर्फ खुद से बात कर सकें, अपने मन की सुन सकें, अपने सपनों को याद कर सकें और ये महसूस कर सके कि हम किसी कितनी दूर तक सफर तय कर सकते हैं।
1: और हमें लगता है कि शाम का समय इन सभी बातों के लिए जो आपने बोली वो सबसे अच्छा होता है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब थोड़ा सा हम रुकते हैं और हमको समय मिलता है तो मन भी शांत होकर बहुत सी बातें सोचने लगता है।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज की सुहानी शाम में हम भी आपके साथ कुछ नई बातें, नई जानकारियां और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा साझा करने वाले हैं।
1: तो आइए, मुस्कुराइए और थोड़ा आराम कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए,
0: क्योंकि अगले कुछ पल आपके नाम है। शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की एक खूबसूरत से गीत के साथ और गीत के बाद फिर होगी मुलाकात।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: आयुषी,
2: हाँ,
1: हम अभी गाने से पहले बात कर रहे थे कि जिंदगी की असली खूबसूरती सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने में है। और जब किसी जरूरतमंद की मदद की बात आती है तो एक ऐसा कार्य है जिसे दुनिया भर में मानवता की सबसे बड़ी सेवाओं में से एक माना जाता है।
2: बिल्कुल मांडवी, और वो कार्य है रक्तदान। रक्तदान एक ऐसा दान है जो सीधे किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ा होता है। जब किसी मरीज को खून की जरूरत होती है तो उस समय एक रक्तदाता उसके लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। यही कारण है कि रक्तदान को सर्वोत्तम दान कहा जाता है।
1: सही कहा। और हम अक्सर सुनते हैं कि किसी का ऑपरेशन होना है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है या कोई गंभीर रूप से बीमार है, तो ऐसे समय में रक्त की आवश्यकता पड़ती है। अगर समय पर खून उपलब्ध ना हो तो मरीज की स्थिति गंभीर हो सकती है।
2: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खून किसी मशीन या फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। इसकी पूर्ति केवल स्वस्थ लोगों द्वारा किए गए रक्तदान से ही होती है। इसीलिए हर रक्तदाता समाज के लिए एक बहुत जरूरी योगदान देता है।
1: बिल्कुल। और आयुषी, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो रक्तदान करना चाहते हैं लेकिन उनके मन में कई तरह के सवाल होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी या स्वास्थ्य खराब हो जाएगा।
2: हाँ, लेकिन मानवी, ये गलत धारणा है। डॉक्टरों के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित होता है। रक्तदान के बाद शरीर धीरे धीरे उस रक्त की पूर्ति कर लेता है। इसीलिए योग्य और स्वस्थ व्यक्ति बिना डर के रक्तदान कर सकता है।
1: बिल्कुल। और सबसे बड़ा लाभ तो मानसिक संतोष का है। जब हमें ये पता चलता है कि हमारे द्वारा जो रक्तदान किया गया है वो एक जो छोटा सा प्रयास किया गया है वो किसी की जान बचा सकता है, तो एक अलग ही खुशी और संतुष्टि का जो एक अनुभव होता है ना, वो बड़ा ही अच्छा लगता है।
2: बिल्कुल। रक्तदान करने से शरीर में नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया सक्रिय होती है। इससे शरीर को नए रक्त के निर्माण का अवसर मिलता है, साथ ही व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा भी मिलती है।
1: बिल्कुल। और आयुषी, मैंने ये भी देखा है कि आजकल कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में विभिन्न संस्थाओं में रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। युवाओं की भागीदारी भी इनमें काफी बढ़ने लगी है।
2: हाँ, क्योंकि युवा समाज की ऊर्जा है। अगर युवा जागरूक होंगे तो रक्तदान के प्रति समाज में भी सकारात्मक सोच विकसित होगी। आज जरूरत इस बात की है कि हम रक्तदान से जुड़े मिथकों को दूर करें और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं।
1: अच्छा, एक और बात है जो हमें बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि रक्तदान जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता का संदेश देता है। जब कोई व्यक्ति रक्त का दान करता है तो वो ये नहीं पूछता कि उसका रक्त किसे मिलेगा।
2: बिल्कुल, यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक अनजान व्यक्ति की मदद करना, उसके जीवन की रक्षा में योगदान देना और बिना किसी स्वार्थ के समाज के लिए आगे आना, यही सच्ची मानव सेवा है।
1: और सोचिए, हम अपने जीवन में बहुत सी चीजें दूसरों को दे सकते हैं लेकिन कुछ दान ऐसे होते हैं जिनका मूल्य शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। रक्तदान उन्हीं में से एक है।
2: सही कहा। इसीलिए अगर हम स्वस्थ हैं और रक्तदान करने में योग्य हैं तो हमें इस विषय में जागरूक रहना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए, क्योंकि रक्त की जरूरत किसी को भी कभी भी पड़ सकती है।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, रक्तदान सिर्फ एक सामाजिक कार्य नहीं है बल्कि जीवन बचाने का एक माध्यम है। ये जो एक उम्मीद की किरण होती है, जब आप एक उम्मीद की किरण बन सकते हैं किसी के लिए भी जब आप रक्त का दान

0: करते हैं और ये करुणा, सहयोग और मानवता का प्रतीक है।
1: और इसी भावना के साथ हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि रक्तदान सर्वोत्तम दान केवल एक नारा नहीं है, बल्कि किसी के जीवन में नई उम्मीद जगाने का संकल्प है। दोस्तों चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं एक भेंटवार्ता जिसका विषय है संक्रामक रोग, कारण, लक्षण और निदान। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीरज कुमार गुप्ता जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। तो आइए सुनते हैं।
2: हम अपने स्वास्थ्य के लिए तमाम तरह के जतन करते हैं, फिर भी समय समय पर इससे सतर्कता की आवश्यकता होती है। समय समय शब्द इसलिए हमने प्रयोग किया कारण कि संक्रामक रोग जो होते हैं वह जब मौसम परिवर्तन होता है तब विकराल रूप में हमारे सामने आते हैं और आज भी आप देख रहे हैं तरह तरह से लोग सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित होते हुए मिलेंगे। कोरोना काल तो आपको याद है ही कि कितना भयावह स्थिति हुई थी, यह भी एक संक्रामक रोग का हमारे सामने प्रदर्शन था। तो इसकी भयावहता और इस घातक स्वरूप है उसको समझते हुए हमें अपने को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सन्नद्ध रहें, हम सचेष्ट रहें और क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे इसको हम परिणाम में परिवर्तित कर सकते हैं, उसको जानने समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है डॉक्टर कुलदीप चंद रस्तोगी जी को, जो कि यहाँ टुड़ियागंज आयुर्वेदिक कॉलेज जो है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि ये संक्रामक रोग आखिर है क्या।
3: धन्यवाद सर। संक्रामक रोग उन रोगों को कहते हैं जो सूक्ष्म जीवाणु है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है या छोटे छोटे प्रोटोजोन्स हैं, उनके कारण जो रोग होते हैं शरीर में
2: जी
3: उनको संक्रामक रोग कहते हैं। और चूंकि ये एक शरीर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक प्राणी से दूसरे प्राणी में चूंकि संचरित होते हैं तो फैलते हैं सामान्य भाषा में, तो इसलिए उनको संक्रामक रोग कहते हैं।
2: अच्छा।
3: और ये संक्रामक रोग जनरली हम देखते हैं जहाँ पे शरीर में दुर्बलता होती है या व्याधि क्षमता तो बल कम होता है, शरीर की क्षमता
2: प्रतिरोध क्षमता
3: कम होती है, उनमें संक्रामक रोग ज्यादा होते हैं।
2: ये तो आपने बताया कि जो कमजोर होता है वो उसमें, लेकिन क्या यह वातावरण में भी होता है? हम आप मान लीजिए नजदीक नजदीक अभी हैं न रहें, हवा में भी क्या ये संक्रमण के जो विषाणु हैं वह विद्यमान होते हैं?
3: जी जी बिल्कुल, वातावरण में हमेशा हर जगह रहते हैं, क्योंकि जब शरीर कमजोर होता है तो उनका प्रभाव आता है।
2: तो फिर इसके कारण में तो एक छोटा सा आपने कारण बताया कि ये है, लेकिन और क्या क्या इसके कारण हैं जिससे कि संक्रामक रोग
3: उत्पन्न होते हैं? जी संक्रामक रोग अगर हम देखते हैं तो जो हम कभी कभी दूषित खाद्य पदार्थ जैसे बासी खाना खा लिया या कहीं काफी देर का रखा हुआ है, स्मेल आने लगी, ध्यान नहीं दिए, जल्दी में खा लिया या खराब पानी दूषित पानी पी लिया हमने, इन्फेक्शन है किसी कारण से खुला रह गया, ठीक है, या पॉल्यूटेड कई तरह से हो जाता है तो उससे भी हो जाता है हमें, मिट्टियों के द्वारा भी जैसे मिट्टी में हम लोग नंगे पैर चलते हैं तो उसमें भी बहुत से इन्फेक्शन हो जाते हैं, टीनिया सोलियम का है या पल्स पोलियो जो बहुत ज्यादा बच्चों को होता था तो वो भी है उसके कारण, और भी बहुत से कारण है।
2: अच्छा डॉक्टर साहब पानी का
3: जी जी
2: बहुत से लोग आजकल यही आप लोग कहते हैं पानी से संक्रामक रोग
3: ज्यादा फैला खाने पीने से,
2: कहते हैं कि ताजा पानी हो यानी नीचे से निकाला ग्राउंड जो वाटर है होता है उसको जब हम लेते हैं चाहे वो हैंडपंप से या पंप के माध्यम से तो उसका सेवन यानी उसको हम पीने में ले आ दें, उपयोग कर लें कितने समय तक, क्या उसको बासी दूसरे दिन भी पानी रहेगा तो अपने आप दूषित हो जाएगा संक्रामक हो जाएगा या फिर वो शुद्ध बना रहेगा?
3: नहीं जनरली जो ये पानी है ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे तक हम लोगों को पीना, सुबह अच्छा। का पानी तो शाम तक पी लें, लेकिन अगर 24 घंटे से ज्यादा हो जाता है या 12 घंटे के बाद भी तो फिर खराब होने लगता है।
2: अच्छा,
3: तो कोशिश करनी चाहिए जी जी की ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे के अंदर पानी पी लेना चाहिए।
2: तो संक्रामक रोगों के कारण में ये सारी चीजें आएंगी जैसे हुए, लेकिन अगर हम कहें कि इसके प्रसार को रोकने की बात हो या फिर कहें कि इसके बचाव की बात हो
3: जे जे।
2: तो वो क्या क्या हो सकते हैं?
3: अब बचाव की उसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमने आपसे बात करी थी कि जिनमें शरीर में दुर्बलता होती है उनमें ये ज्यादा होता है, तो हम लोग कोशिश करनी चाहिए कि शरीर हमारा मजबूत रहे, रोग प्रतिरोध क्षमता जो है शरीर की वो अच्छी रहे, इम्यूनिटी अच्छी रहे मतलब हमारा, तो उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए, जैसे आहार विहार अच्छा होना चाहिए हमारा, आहार मतलब खाने पीने की चीजें और ड्राई फ्रूट्स हैं या फल सब सेवन करें रेगुलरली, जो खाने में भी चीज़ें हैं दाल चावल तो है ही है, सब्जी है, सलाद है, दही, ये सब मतलब एक बैलेंस डाइट के रूप में रहना चाहिए जिससे शरीर में सब चीज़ जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सब मिलती रहें शरीर को।
2: तो सर एक चीज और कही जाती है कि खाने पीने के लिए हमारे यहाँ जो हमारी भारतीय संस्कृति रही है उसमें विभिन्न क्षेत्रों के अनुरूप उसको जहाँ का वातावरण जैसा है उसके अनुरूप कहें कि वो खाने के लिए कहा गया था,

0: जैसे अपने यहाँ अवध क्षेत्र ले लें या आप यहाँ भोजपुरी इलाका जो है हमारा पूर्वांचल कहलाता है, सावन सागन भादों दही,
1: जी
0: ये दो, और इस पर पूरा हर महीने का
1: बिल्कुल
0: वर्णन है,
1: बिल्कुल
0: तो क्या यह भी विज्ञान की दृष्टिकोण से, मेडिकल साइंस के दृष्टिकोण से भी इसे
1: बिल्कुल
0: अपनाया जा सकता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आप देखिए, साग की बात करिए आपने, सावन साग और दही नहीं खाना चाहिए।
0: जी
1: तो हम देखें अगर, तो साग जो है इस समय पानी प्रदूषित है सब जगह, ज़्यादातर बरसात का पानी रहता है, तो साग मिट्टी में ही रहेगा तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप देखिए पत्तियों में छोटे छोटे छेद टाइप के हो जाते हैं, इन्फेक्शन रहता है उसमें। अगर हम उसको सेवन करते हैं तो नुकसान होगा, जाहिर सी बात है। मना भी किया जाता है इस समय कि बरसात वाले उसमें थोड़ा बचना चाहिए। और दही की अगर बात करें तो आयुर्वेद के हिसाब से दही जो है कब्ज करता है, और
0: अच्छा
1: वर्षा ऋतु में वात की, वात के कारण अग्नि डिस्टर्ब होती है, विषम हो जाते हैं। वायु जब भी चलती है, कभी धीमा चलती है कभी तेज चलती है, तो इसी तरह शरीर में भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो जो अग्नि है वो कभी अच्छी होगी कभी गड़बड़ होगी, तो विबंध या कब्ज का कारण हो जाता है।
0: जी
1: इसलिए बरसात में दही का भी निषेध किया गया, दही और ये सागवा का, ये सब निषेध किया
0: बरसात
1: गया।
0: यानी सावन का महीना,
1: जी जी
0: इसीलिए
1: जी जी
0: निषेध है
1: जी
0: उसमें
1: जी
0: कि
1: नहीं
0: कोई भी
1: लेना
0: नहीं।
1: चाहिए, और रात में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए।
0: बिल्कुल, आयुर्वेद के विशेषज्ञ आप हैं, तो आयुर्वेद की दृष्टि से
1: जी।
0: क्या कुछ होना चाहिए संक्रामक रोगों से बचाव के लिए?
1: संक्रामक रोगों से बचाव के लिए सबसे पहले तो हम लोगों की अपनी जो जीवन शैली है
0: जी
1: उसको सही रखना चाहिए, कि प्रातःकाल जल्दी उठें, है ना, थोड़ा टहलें, पैदल चलें, फिर जहाँ तक वो व्यायाम है आपका, योगा है, आजकल रूटीन में है
0: जी
1: सब
0: जी
1: लोग के
0: जी
1: लिए, जरूरी हो गया है तो वो करना चाहिए, है ना। प्राणायाम कर सकते हैं, और हो सके तो सुबह पानी 1-1.5 गिलास गुनगुना जरूर पिए उसको, है ना। फिर जो दिनचर्या है वो अपनी नियमित रखें, जो ऋतु के अनुसार बताया गया है कि ये खाएं ये न खाएं कैसे रहें, वो सेवन ध्यान रखना चाहिए। और घर में साफ सफाई, वही मल मूत्र है और जो वेस्ट कूड़ा कर कहते हैं जनरली
0: जी जी
1: भाषा
0: जी
1: में,
0: हाँ
1: तो उनके निष्कासन का भी उचित प्रबंध रखना चाहिए, है ना। ये सब
0: सही बात
1: चीजें अगर ध्यान रखेंगे, और नित्य प्रति स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र सुबह शाम मतलब ठीक ठाक पहने, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा, आपके लाइफ स्टाइल का बहुत फर्क पड़ता है।
0: डॉक्टर साहब, एक बात आपने बताई कि सुबह गर्म पानी पीना
1: जी
0: चाहिए।
1: जी
0: अभी कोरोना काल जब था तब उस समय आप लोगों ने गिलोय पीने का भी कहा
1: जी
0: कि
1: जी
0: उसका काढ़ा बनाए, तो क्या हम अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए उसको भी हफ्ता में 15 दिन पर या महीना में एक बार गिलोय का भी सेवन करें या रोज करें, क्या करें? कुछ अभी भी हमें करना पड़ेगा या वो काल बीत गया तो अब उसको नहीं सोचना
1: नहीं
0: है?
1: नहीं गिलोय तो, गिलोय को हम लोग सामान्य रूप से आयुर्वेद में अमृता कहा गया,
0: जी
1: ठीक है, तो जो अमृत के समान लाभकारी है, तो उसका सेवन अगर हमेशा करते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो
0: प्रतिदिन किया जाए तो
1: प्रतिदिन
0: भी वो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: नुकसानदायक नहीं होगा,
1: नुकसानदायक नहीं होगा, किसी भी रूप में नहीं होगा
0: मात्रा उसकी
1: जी।
0: निर्धारित
1: हाँ
0: करनी
1: मात्रा
0: पड़ेगी।
1: निर्धारित, अब जैसे क्वाथ अगर है तो 40 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लोग 1-1 कप 1.5 कप पी रहे थे या 1 गिलास, तो वो नुकसान कर रहा था सब।
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: 40-50 ml रिकमेंडेड है, उतना ले सकते हैं आराम से।
0: बहुत बढ़िया, तो ये एक गिलोय को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें कि उसका क्वाथ बनाएंगे यानी काढ़ा उसका
1: काढ़ा पिए,
0: बनाएंगे।
1: नहीं तो मार्केट में टेबलेट्स आ रही हैं गिलोय घनवट्टी के
0: अच्छा
1: रूप
0: अच्छा
1: में,
0: अच्छा
1: बहुत अच्छा है वो, तो 2-2 टेबलेट सुबह शाम ले लीजिए, कोई
0: लेकिन उसमें तो
1: दिक्कत।
0: पैसे खर्च होंगे,
1: हाँ उसमें जी
0: इसलिए
1: जी
0: मैंने कहा
1: ये
0: ये
1: है,
0: तो आसपास मिल
1: ये तो
0: जाएगी
1: सब
0: अपने
1: जगह
0: घर
1: मिल
0: पे बना
1: जाती
0: लें।
1: है।
0: हाँ
1: और बल्कि कुछ गिलोय जो नीम के ऊपर बेल होता है इसका,
0: जी
1: वो और अच्छी बताई जाती है।
0: हाँ, नीम के जो तत्व होते हैं वो
1: हाँ
0: उसको
1: उस
0: भी
1: पे
0: वो
1: जी, नीम के
0: करता है।
1: पेड़ पे ये तना ही है गिलोय, तो वो अगर उसके ऊपर है तो वो और अच्छा आता है
0: एक
1: रिस्पॉन्स।
0: बात और,
1: जी
0: नहाने
1: जी
0: के लिए भी आपने कहा कि स्वच्छ रहें, नहाएं, लोग साबुन का प्रयोग करते हैं, तरह तरह के साबुन
1: जी जी
0: आए हुए हैं,
1: जी
0: तो इन साबुन का क्या रोल है वह हमें सुरक्षित रखने में? केवल पानी से पहले नहाते थे लोग या फिर कुछ लोग मिट्टी लगा लेते थे, कुछ जो है ऐसे साबुन लगाते हैं जिसमें कास्टिक बहुत कम होता है। आपका एक विशेषज्ञ की हैसियत से आयुर्वेद की दृष्टि अगर इस पे डालते हुए बताना चाहें तो हमें नहाने में क्या सावधानी रखनी चाहिए? क्योंकि एक तथ्य और उसमें समाहित करें कि नींबू निचोड़ करके उस पानी को नहाना कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि करना चाहिए, आपका आयुर्वेद क्या कहता है?
1: नहीं, अगर आप जैसे नहाने के लिए पानी में नींबू निचोड़ के प्रयोग करते हैं तो भी बहुत अच्छा है वो।
0: साबुन लगाना
1: साबुन
0: चाहिए।
1: साबुन बिल्कुल लगाना चाहिए, लेकिन साबुन में ध्यान देना चाहिए, इसमें क्रीम का भी एक कंपोजिशन, TFM लेवल हम लोग देखते हैं,
0: जी
1: तो उसमें क्रीम की मात्रा और कास्टिक कितना, ये सब उसका परसेंटेज होता है। तो जिसमें कास्टिक ज़्यादा होगा उससे स्किन में रफनेस हो जाती है ना, सूखापन हो जाता है, तो वैसे साबुन जनरली नहीं प्रयोग करने चाहिए जिनमें क्रीम की मात्रा सही हो। जिसे बहुत से साबुन हैं, हम नाम
0: हाँ,
1: नहीं लेना
0: जो जो
1: चाहेंगे।
0: निर्मल जो आपको जो जर्म्स हैं या
1: वो
0: वायरस के हैं
1: हाँ
0: उसको साफ करने
1: साफ,
0: की स्थिति में रहे, बस उतने तक
1: उतना
0: आप
1: उतना हो
0: अपनी स्किन को ना
1: ना
0: नुकसान
1: नुकसान
0: पहुंचाए।
1: करे। जी
0: हाँ
1: जी अब जैसे एलोवेरा के सोप हैं बहुत से, है ना, बहुत,
0: जी,, △ △================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

0: से क्रीम है उसमें, क्रीम बेस्ड है, तो उन सबको
1: जैसे ग्लिसरीन के हैं,
0: ग्लिसरीन
1: बहुत सारे
0: का
1: बने
0: तो
1: हुए
0: बहुत
1: हैं,
0: अच्छा है जी जी उनको प्रयोग
1: एलोवेरा से बना हो या ग्लिसरीन से बना हो उसी
0: बना
1: का करें,
0: जी
1: लेकिन जिसमें कास्टिक प्रयोग किया गया
0: वो
1: है
0: कम
1: उसको
0: उसको जी जी
1: और ना करें तो बेहतर
0: वो
1: है,
0: तो बेस्ट है जी जी
1: क्योंकि स्किन तो अपनी है, स्किन भी तो सुरक्षित रखनी
0: जी
1: है,
0: जी जी जी
1: केवल संक्रामक रोगों से ही बचने की बात तो अपनी जगह। लेकिन डॉक्टर साहब चलते चलते एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अगर समग्रता में कहना चाहें आप अपनी तरफ से, तो क्या कह सकते हैं संक्रामक रोगों से बचाव के लिए या इस परिस्थिति में?
0: संक्रामक रोगों से बचाव के लिए एक तो अपने रोग प्रतिरोध क्षमता को सही रखने के प्रयास करें, आहार विहार पे अपना ध्यान दें, ठीक है, और ऋतु के अनुसार जो आहार विहार बताया गया उसको जरूर ध्यान
1: बस वही
0: रखना
1: उतना
0: चाहिए,
1: करें
0: मेन चीज़ जो है
1: तो सुरक्षित रहेंगे
0: सुरक्षित
1: सब
0: रहेंगे।
1: लोग।
0: जी जी
1: बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब, और आपने जिन बातों को यहाँ रखा है हमको लगता है कि सुनने वाले इसे ज़रूर अपने जीवन में शामिल करेंगे, अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे और ख़ुद को स्वस्थ रखेंगे, साथ ही साथ दूसरों को भी स्वस्थ रखने में अपनी भूमिका निभाएंगे। कारण कि संक्रामक रोग जैसा कि आपने बताया कि यह एक दूसरे से फैलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आपने समय निकाला, स्टूडियो आया।
2: तो दोस्तों अभी आपने सुनी एक भेंट वार्ता जिसका विषय था संक्रमण रोग, कारण लक्षण और निदान। वार्ताकार थे कुलदीप चंद रस्तोगी और भेंटकर्ता थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। और आइए अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

उत्तर प्रदेश के प्रथम नैक ए प्लस प्लस मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, बीसीए, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

0: आयुषी, अभी हम रक्तदान जैसे सामाजिक विषय पर बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम आज के हमारे जैसे युवाओं की बात करें तो एक और चीज़ है जिसने हमारे जीवन को बहुत तेज़ी से बदल दिया है, और वो है डिजिटल तकनीक। आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ डिजिटल दुनिया से कोई अछूता रह गया हो।
1: बिल्कुल मानवी, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि डिजिटल तकनीक ने सिर्फ हमारे काम करने के तरीके को ही नहीं बदला है, बल्कि हमारी पढ़ाई, कमाई, खरीदारी और सोचने के तरीके को भी प्रभावित किया है। इसी बदलाव के साथ एक नया शब्द भी सामने आया है, डिजिटल अर्थव्यवस्था यानी डिजिटल इकोनॉमी।
0: वैसे आयुषी, बहुत से लोग ये शब्द सुनते तो हैं लेकिन इसका मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाते। आसान भाषा में अगर समझाएं तो डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है, बताइए।
1: बहुत आसान है, जब आर्थिक गतिविधियां डिजिटल माध्यमों से होने लगती हैं तो उसे डिजिटल अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे ऑनलाइन भुगतान करना, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करना, ऑनलाइन खरीदारी करना, मोबाइल ऐप के माध्यम से सेवाएं लेना या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम करना, आज ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं।
0: सही कहा, और हमें याद आता है कि कुछ साल पहले लोगों को जो बिजली का बिल है वो जमा करने के लिए, फिर ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए, बैंक का काम करने जाने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन आज वही काम हम लोग अपने फ़ोन से कुछ मिनट्स में कर लेते हैं।
1: हाँ, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा समय की बचत भी है, साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ती है। डिजिटल भुगतान के कारण लेन देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है और लोगों को सुविधाजनक तरीके से सेवाएं मिल पाती हैं।
0: बिल्कुल आयुषी, और आयुषी क्यों ना अब अपने दोस्तों को सुनवा देते हैं गीत।
1: चलिए दोस्तों, सुन लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: तो दोस्तों, इसी के साथ आज के युवा तरंग कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब हम आपको बता देते हैं कल के कार्यक्रम का विवरण। कल के कार्यक्रम में हम लेकर आएंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय, बुजुर्गों को सम्मान दें, जिसमें हम बात करेंगे हमारे जीवन में बुजुर्गों के अनुभव, मार्गदर्शन और उनके प्रति हमारे कर्तव्यों की। इसके साथ ही कार्यक्रम में होगी एक विशेष भेंटवार्ता, जिसका विषय है पत्रकारिता की शिक्षा और रोजगार। इस विषय पर हमारे साथ होंगे श्री मनीष कुमार, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में शिक्षा, करियर के अवसरों और रोजगार की संभावनाओं पर अपने विचार साझा करेंगे। तो सुनना ना भूलिएगा युवा तरंग का अगला अंक कल इसी समय और इसी जगह पर। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त आयुषी
1: और मुझे यानी के मांडवी को दीजिए इजाजत। नमस्ते।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग। आकाशवाणी लखनऊ से अब आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम नई उड़ान।

नई उड़ान कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आज शोभित का नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी के साथ जुड़ गया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपसे ये कहकर कि एक दान ऐसा भी है जो किसी मंदिर की घंटियों से नहीं, किसी बड़े मंच से नहीं, बल्कि सीधे किसी की धड़कनों से जुड़ता है। आज है 14 जून, विश्व रक्तदाता दिवस। जरा सोचिए, अगर किसी हॉस्पिटल में एक माँ अपने बच्चे के लिए परेशान बैठी हो, कहीं कोई सड़क दुर्घटना का घायल जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहा हो, किसी थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को हर महीने खून की जरूरत पड़ती हो, और ऐसे समय में कोई अनजान व्यक्ति आगे आकर अगर ये कह दे कि मैं ब्लड डोनेशन के लिए तैयार हूं, तो सच मानिए, केवल वो खून नहीं देता है बल्कि वो देता है एक उम्मीद और एक नया जीवन। दोस्तों, रक्तदान केवल एक मेडिकल प्रोसेस भर नहीं है, ये इंसानियत की सबसे खूबसूरत मिसाल है। और सबसे बड़ी बात यह कि रक्तदान से ना तो शरीर कमजोर होता है, ना ही हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई और परेशानी आती है।

एक खास बात और कि खून का कोई भी कारखाना नहीं होता, यानी किसी भी कारखाने में कहीं कोई खून नहीं बनता। इसे ना ही कोई मशीन बना सकती है और ना ही कोई कंपनी बना सकती है। इंसान के लिए खून केवल इंसान ही दे सकता है, और शायद यही वजह है कि रक्तदाता किसी फरिश्ते से कम नहीं होते। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और आप स्वस्थ हैं, तो आप भी रक्तदान कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा कदम किसी के पूरे जीवन की वजह बन सकता है। आज विश्व रक्तदाता दिवस पर हम सब मिलकर के एक संकल्प लें कि जब भी संभव होगा हम रक्तदान करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि किसी की धड़कनों में अपना अंश छोड़ जाना शायद इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। तो चलिए अब कार्यक्रम में सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत, और गीत के बाद आपके लिए आज हमारे खास सेगमेंट पर स्थल ध्वन्यांकन पर एक कार्यक्रम है, तो बने जरूर रहिएगा हमारे साथ।

0: दोस्तों कार्यक्रम में अब समय है आपका स्थल ध्वन्यांकन पर आधारित हमारा कार्यक्रम सुनने का, जिसमें आज हमारा विषय है डिजिटल आदतें और सामाजिक व्यवहार, स्क्रीन के उस पार जीवन। इसे तैयार किया है हमारी कंपियर साथी आरती यादव ने, तो आइए सुनते हैं इस विषय पर कि लोगों का क्या कहना है।
1: सुबह आंख खुलते ही हम क्या करते हैं? अलार्म बंद करते हैं और फिर बिना सोचे समझे मोबाइल खोल लेते हैं। रात को सोने से पहले आखिरी बार क्या चीज देखते हैं? अक्सर वही फोन, वही स्क्रीन। अच्छा जरा अपने आज के दिन के बारे में सोचिए। सुबह उठे, फोन देखा, नाश्ता करते हुए फोन देखा, ऑफिस या कॉलेज जाते हुए

0: फोन देखा, थोड़ा सा समय मिला, फोन देखा, और रात को सोने से पहले एक बार फिर फोन देखा। यानी हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अब स्क्रीन के साथ बीत रहा है। बस में बैठिए, ट्रेन में बैठिए, रेस्टोरेंट में बैठिए, यहाँ तक कि अपने परिवार अपने अपनों के साथ बैठकर भी हम फोन ही देख रहे होते हैं। आजकल लोग एक दूसरे के सामने होते हैं लेकिन अक्सर जुड़े स्क्रीन से होते हैं। पहले लोग सफर में बाहर देखते थे, नजारों का अनुभव करते थे, अब स्क्रॉल करते हैं। पहले छुट्टियां जी जाती थी, अब रील्स के लिए रिकॉर्ड की जाती हैं। पहले लोग पल को महसूस करते थे और अब पोस्ट करते हैं, और पोस्ट करने के बाद बार बार ये देखने लौटते हैं कि कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, किसने देखा, किसने नहीं देखा, और किसने देख करके भी कमेंट नहीं किया। लाइक्स ज्यादा आ जाते हैं तो खुश हो जाते हैं, फिर कुछ नया वायरल कंटेंट बनाने के पीछे सोच दौड़ते हैं। और अगर कम आते हैं या अपने ही ग्रुप्स में भेजे गए लोग भी देखते नहीं है, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो गुस्सा आता है और फिर लगता है अब तुम कोई पोस्ट करना, मैं भी लाइक नहीं करूंगा, और बढ़ जाती है क्या रिश्तों में खटास। दोस्तों, देखते ही देखते कब हमारी असली दुनिया स्क्रीन के उस पार की दुनिया बन गई पता ही नहीं चला। अब ये अच्छी है या बुरी ये कहना जल्दबाजी होगी, या ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि स्क्रीन के उस पार की दुनिया ने हमें बहुत कुछ दिया है, जानकारी, सुविधा, रोजगार, मनोरंजन। लेकिन इसके साथ कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। क्या हम पहले जितने सामाजिक हैं? क्या हमारी बातचीत कम हुई है? क्या बच्चों का बचपन बदल रहा है? क्या युवा पहले से ज्यादा भटक रहे हैं? क्या हम धीरे धीरे एक ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहां हजारों ऑनलाइन दोस्त हैं लेकिन बात करने के लिए कोई नहीं? आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम नई उड़ान के खास सेगमेंट सोशल सिग्नल के साथ आरती आज आपके संग इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेगी। सबसे पहले बात बच्चों की, क्योंकि आजकल एक दृश्य बहुत सामान्य हो गया है। बच्चा रो रहा है, उसे मोबाइल दे दिया। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल दे दिया। बच्चा परेशान कर रहा है, उसे स्क्रीन के सामने बिठा दिया। धीरे धीरे स्क्रीन बच्चों के खिलौने, दोस्त और कई बार शिक्षक, अभिभावक की भी भूमिका निभाने लगी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बढ़ता स्क्रीन टाइम बच्चों के सामाजिक विकास और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है? क्या इसका कोई संबंध ऑटिज्म जैसी स्थितियों से भी है, या ये सिर्फ एक भ्रम है? इसको और बेहतर समझने के लिए जुड़ते हैं पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपांशु दास जी से, जो वर्षों से बच्चों के न्यूरोलॉजिकल विकास और ऑटिज्म पर काम कर रहे हैं।
1: देखिए, ऑटिज्म में बच्चा सबसे सही तरह से सोशलाइज नहीं कर पाता है, घुल मिल नहीं पाता है, और वो सही तरह से कम्युनिकेट या बात कर नहीं पाता है। एक्चुअली जब उसके पेरेंट बच्चे की तरफ देख के मुस्कुराते हैं, बच्चा वापस मुस्कुराता है, तो वहां से सोशलाइजेशन ऑलरेडी चालू हो जाता है। कोई कोई बच्चा बिल्कुल शुरुआत से ही सोशलाइज करता है, लेकिन जिसमें सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम है, बाकी लोगों से मिलने में उसको दिक्कतें आते हैं, उसको अगर हम लोग मोबाइल देते हैं क्या होता है, उसका एक वे आउट मिल जाता है जहां उसको सोशली एंगेज करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा और वो उसमें डूब जाता है। तो ये समझ लेते हैं कि बच्चे को आप जितना अटेंशन देंगे बच्चा उतना बेहतर सीखेगा। और मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में हम लोग अटेंशन दे नहीं पा रहे, और अगर बच्चे को हम लोग मोबाइल में एंगेज कर देंगे बच्चा मोबाइल से सीखेगा। लेकिन मोबाइल से क्या सीखेगा, नॉर्मली हम लोग मोबाइल से टू वे कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, हम लोग मोबाइल को नहीं पूछते हैं क्या मोबाइल कैसे हो, नहीं पूछते हैं, और वहाँ ऑटोमेटिकली एक वन वे कम्युनिकेशन प्रमोटेड होता है। अगर हम लोग सोचेंगे कि बच्चे को जस्ट मोबाइल दे के शांत बैठा सकते हैं, इनफैक्ट खिलाने में प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वो इसलिए कि बच्चा तब आपके तरफ दिमाग भी नहीं लगा रहा है, और अगर दिमाग नहीं लगा रहा है तो उसको सीखने में ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम होगा। तो ये समझिए कि इसके लक्षण बिल्कुल पहले से थे या फिर बाद में भी आ सकता है, लेकिन मोबाइल के कारण से नहीं, मोबाइल से वो एग्रावेट किया है। अब मैं आता हूँ दूसरा पार्ट में, ये जो मोबाइल है क्या वाकई खतरनाक है या इससे सीखने में मदद मिल सकता है? देखिए, मोबाइल से उसमें जिस तरह से एनिमेटेड तरह से बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक ABCD राइम, बच्चे को ऑटोमेटिकली वो भा जाएगा, मेमोरी में ऑटोमेटिकली वो बैठ जाएगा। तो हम लोग इसे अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। अगर मोबाइल को हम लोग बच्चों के हाथ पे न छोड़ के उसका कमांड हमारे हाथ पे रखते हैं, जब हम लोग बच्चे को साथ में मोबाइल लेके बैठते हैं और जैसे किताब से स्टोरी पढ़ते हैं उसी तरह से मोबाइल में साथ साथ कुछ देखते हैं,

0: और उसको समझाते हैं, देखो ये ऐसा है, ये इंटरेस्टिंग है ना, और हम लोग उसके साथ एंगेज करते हैं। और अगर आप ये कर सकते हैं, बच्चा इम्प्रूव भी कर सकता है।
1: तो बच्चों को लेकर तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट हुई, लेकिन स्क्रीन की कहानी सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। अगर किसी वर्ग ने सबसे तेजी से डिजिटल दुनिया को अपनाया है तो वो है युवा वर्ग। एक तरफ सोशल मीडिया ने हजारों नए करियर दिए हैं, आज कंटेंट क्रिएटर, वीडियो एडिटर, सोशल मीडिया मैनेजर, डिजिटल मार्केटर और ना जाने क्या क्या, यानी स्क्रीन रोजगार का माध्यम भी बनी है। लेकिन दूसरी तरफ एक दिलचस्प सवाल भी उठता है, यहां तक कि भारत के

0: आज कंटेंट क्रिएटर, वीडियो एडिटर, सोशल मीडिया मैनेजर, डिजिटल मार्केटर और ना जाने क्या क्या, यानी स्क्रीन रोजगार का माध्यम भी बनी है। लेकिन दूसरी तरफ एक दिलचस्प सवाल भी उठता है, यहाँ तक कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में भी इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन युवाओं की उत्पादकता और रोजगार क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन कैसे, जब नौकरी भी स्क्रीन से मिल रही है तो फिर स्क्रीन ही बेरोजगारी का कारण कैसे बन सकती है? इस विरोधाभास को समझने के लिए बात करेंगे कुणाल सर से, एक ऐसे शिक्षक जिनकी खुद की पहचान डिजिटल प्लेटफॉर्म से बनी है और जो लाखों युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मार्गदर्शन देते हैं।
1: देखिए, लाभदायक रोजगार के लिए ना हमें दो चीजें चाहिए। पहला है स्किल्स। अभी क्या है कि हमारे पास में यूथ तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है, हर एक व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। जरूरी यह है कि आप किसी एक क्षेत्र में निपुण हो जाएं। वहीं इसके साथ साथ ही स्किल्ड होना ही पर्याप्त नहीं है, जरूरी है कि आपके पास में एक अच्छी हेल्थ भी हो। कुछ लोगों में आदत है रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक जाग रहे हैं और बाद में उनसे पूछा जाए कि क्या कर रहे हो, स्क्रोल कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रोलिंग के लिए इतना अधिक समय बिता रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि आपने उस समय में जो आप बाकी चीजें कर सकते थे वो नहीं कर पाए और आपने अपना समय गलत जगह पर इन्वेस्ट कर दिया। अब इस दौरान क्या हो रहा है कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति कंपनी में हायर किया जा रहा है तो उसके अंदर फिर दो चीजें निकल करके आ रही है, ना तो दिमाग अच्छा है, ना हेल्थ अच्छी है। अब जब दिमाग अच्छा नहीं होगा, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो उसके बाद देखा जाएगा कि जिस भी कंपनी को आप ज्वाइन करेंगे, जिस भी सेक्टर से आप जुड़ेंगे, उस जगह पर आप प्रोडक्टिविटी को गिराएंगे, ना कि आप बढ़ाएंगे। एक समय हुआ करता था, लोग जानते ही नहीं थे कि हाँ इंट्रोवर्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता था, गाँव में बैठ जाया करते थे एक जगह पर, वहीं चाचा ताऊ सब गाँव के इकट्ठे हो जाया करते थे, वहीं बैठ जाया करते थे और उसके बाद वहीं पर चाय चल रही होती थी, बातें चल रही होती थी, सभी चीजें रहा करती थी। अब आजकल कह दे रहे हैं कि जनरेशन ही पूरी की पूरी एंजियस हो गई। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की बातें बाहर ही नहीं आ रही है, किसी दूसरे की बातें भी नहीं आप सुन पाए। जो मन की बातें थी, फीलिंग्स थी अंदर की, आपके अंदर बात चीजें चल रही थी, चाहे कोई टेंशन चल रहा, तनाव चल रहा था, खुशी थी, वो बाहर निकल के नहीं आई। जब ऐसी चीजें अंदर रह जाती है तो ये आपको लंबे समय तक दिक्कत देती है, बहुत ज्यादा परेशान करती है। यह भी देखने को मिलता है दिमाग के अंदर होती है नर्वसनेस, हेजिटेशन। ये कब टूटता है? जब हम लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बातें करते हैं, तब जाकर के हम सोशल हो पाते हैं। अगर आप सोशल हो गए तो समझ लो मेंटल इल नहीं रहोगे, काफी सारी चीज सुधरेंगी, आपके अंदर एंजाइटी नहीं रहेगी, आप सबको फेस करने में सक्षम हो जाए। अब क्या हो जा रहा है, बहुत सारे लोग जब कंपनीज वगैरह भी ज्वाइन करते हैं तो जो एंशियस स्थिति चल रही है उसकी वजह से अगर कोई दो बातें कह देता है तो लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। एक बात कहने के बाद क्या होता है, चीजें डिस्कस नहीं होती, लोगों को लगता है कि मेरे इमोशन हट हो गए, सेल्फ रिस्पेक्ट हट हो गई है, मैं काम छोड़ के चला जाऊंगा, जॉब नहीं करूंगा, या बाकी और बवाल हो जाता है, नहीं करती चीजें सूट। क्यों? क्योंकि आप एक सोशल एनवायरनमेंट में नहीं रहे। यदि आप एक सोशल एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रेशर भी होता है, हैप्पीनेस भी होती है, कनेक्टिविटी भी होती है, डिस्कनेक्शंस भी होते हैं, सब कुछ होता है। जब आप हर एक इमोशन देख लेते हैं तो उसके बाद इंसान फिर एक प्रकार से स्ट्रांग हो जाता है, और जब चीज़ें स्ट्रांग हो जाती है तो आपको फिर वह लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं देती। दिक्कतें होंगी, थोड़ी बहुत होंगी, थोड़े टाइम के लिए प्रभावित होंगे, लेकिन चीज़ें सुधर जाएगी। तो ज़रूरी है कि चीज़ों को सुधारा जाए, आगे बढ़ा जाए और मामले को देखा जाए।
0: कहानियां और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि समस्या सिर्फ समय बर्बाद करने की नहीं है, समस्या ये भी है कि स्क्रीन के उस पार दिख रही दुनिया हमेशा सच्ची नहीं होती। स्क्रीन पर लोग खुश दिखते हैं, सफल दिखते हैं, सबकी जिंदगी बड़ी परफेक्ट सी दिखती है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? जितनी चीजें दिखाई जाती हैं, क्या वास्तव में उतनी ही सच्ची होती हैं? हम किसी की पूरी जिंदगी नहीं देखते, हम सिर्फ उनकी अच्छी तस्वीरें देखते हैं, लेकिन तुलना अपनी पूरी जिंदगी से कर लेते हैं, और यहीं से शुरू होता है दबाव। कई लोग लाइक से अपना आत्मविश्वास जोड़ने लगते हैं, कई लोग लगातार दूसरों से तुलना करते हैं, कई लोगों को लगता है कि उनकी जिंदगी दूसरों जितनी अच्छी नहीं है। और ये सारी भावनाएं सुनने में आम लग सकती हैं, लेकिन आम है नहीं, बल्कि स्क्रीन के उस पार की ये दुनिया तमाम तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों का कारण बन जाती है। किस तरह की समस्याएं होती हैं और क्या हो सकते हैं निवारण, समझने की कोशिश करते हैं जानी मानी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता अड़ातिया जी से, जिनका अनुभव 5 महाद्वीपों तक फैला हुआ है।
2: पहले तो मैं ये बता दूं कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जो है, जिसको हम डिजिटल डिमेंशिया बोलते हैं। डिमेंशिया मतलब बिल्कुल याददाश्त खत्म हो जाना, ओरिएंटेशन नहीं रहना, मूड काफ़ी सुस्त हो जाना। अल्जाइमर्स डिमेंशिया एक कॉमन बीमारी आजकल होने लगी है, 1700% राइज जो है वो आगे के टाइम में आने वाला है। बहुत ही शॉकिंग ये फिगर है, बिकॉज 60 इयर्स एंड अबाव जो हो रहा था वो अभी धीरे धीरे धीरे श्रिंक करके काफ़ी यंगर एज में भी हमें देखने को मिल रहा है। डिजिटल डिमेंशिया मतलब बार बार आप कंज्यूम कर रहे हैं स्क्रीन्स के थ्रू कंटेंट को, तो आपकी याददाश्त कम हो सकती है। पर लेकिन अब हम करें क्या, बच्चों के स्क्रीन के एडिक्शन को हटाना है तो हमें क्या करना होगा? हमें एज एडल्ट्स हमारी स्क्रीन को कंजम्पशन

0: को कम करना होगा, क्योंकि बच्चे जो है वो एब्सोल्युटली मिरर करते हैं, वो हमें कॉपी करते हैं। और ब्रेक नहीं हो रहा है, वाईफाई को लॉक कर दे, पासवर्ड्स रखे, सर्टन डेज बिल्कुल ऑफ स्क्रीन डेज कर दो। जैसे मेरी लाइफ में हफ्ते में एक दिन बिल्कुल स्क्रीन ऑफ डे होता है। ऑडियो, आप कुछ सुने, आप देखे नहीं, आप कुछ सुने, ताकि आपकी जो सुनने की शक्ति भी होती है वो भी बढ़ पाती है। यू नो, टच समथिंग, यू गो एंड प्ले समथिंग, गो एंड डू समथिंग विद द हैंड्स, काइंडनेस थेटिक जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि सारी तीनों की तीनों शक्ति जो है वो ब्रेन में अलग अलग स्टिम्यूलेशन करती है, अलग अलग काम करती है। सो नॉट कि आप कंटिन्यूस एक ही विजुअल, एक ही देखने की ही उससे आप करते रहे, तो बहुत ज़रूरी बात है कि डिजिटल फास्टिंग। दूसरी चीज़ ये है कि 20-20-20, जब आप कोई भी स्क्रीन के साथ काम कर रहे हैं तो 20 मिनट के बाद 20 फुट की दूरी पे 20 सेकंड तक देखा करें। कभी कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाना, 5 फीट की दूरी पे आपका जो है वो मॉनिटर होना चाहिए, पोस्चर, आप कैसे उसको देख रहे हैं वो भी बहुत मायने रखता है। वरना टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, जो गर्दन है उसकी जो हड्डी होती है और उसके अंदर जो डिस्क होती है, उस पर भी नुकसान हो सकता है। आई कम्फर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राई आई कैन कॉज हेडेक्स, ड्राई आई की वजह से आगे जाके ब्लाइंडनेस, एंड फॉर दैट रीज़न ऑल्सो अ परसिस्टेंट वियर्ड पेन अराउंड द आई, जो वो ड्राई आई की वजह से रह सकता है। तो जो रोज़ वाटर आता है काफ़ी हद तक हेल्प करता है। अच्छा, ब्लू आई, आई कम्फर्ट शील्ड होता है, वो ज़रूर लगा लें। और बिकॉज हमें स्क्रीन के साथ तो काम करना ही है, एक बैलेंस, एक संतुलन लाना बहुत ही ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, संतुलन तो बहुत आवश्यक है, और इस संतुलन का पैमाना हम अपनी उम्र के हिसाब से तय कर सकते हैं। तो किस उम्र के हिसाब से क्या स्क्रीन टाइम ठीक माना जा सकता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तृषा अग्रवाल जी से।
2: 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक्चुअली में 0 स्क्रीन टाइम इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने बताया है। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन जरूर है, आपको दादी से बात करनी है, नानी से बात करनी है, चेहरा दिखाना है, तो डेफिनेटली आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। बट मोबाइल पे रील्स या फिर कार्टून्स या वीडियोस या मूवीज, 2 साल से नीचे के बच्चे को बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट एज ग्रुप होता है 2 से 5 साल के बच्चों। तो 2 से 5 साल के बच्चों के लिए जो रिकमेंडेशन है वो है लेस देन 1 आवर ऑफ स्क्रीन टाइम एवरी डे। इसमें भी सिर्फ अमाउंट ऑफ स्क्रीन टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जरूर इम्पोर्टेंट है कि आप किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। ये जो कंटेंट होना चाहिए क्लीन होना चाहिए, बच्चों को पॉजिटिविटी सीखने को मिले, और पेरेंट्स उनसे डिस्कस करें कि अभी ये क्या हुआ, उनको कैसा लगा, सही लगा, गलत लगा, जिससे बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट भी स्क्रीन देखने के साथ साथ। जो नेक्स्ट एज ग्रुप है वो है 6 से 17 साल वाला एज ग्रुप। इनके लिए जो रिकमेंडेड स्क्रीन टाइम है वो है लेस देन 2 आवर्स, क्योंकि ये ग्रोइंग एज होती है, और इसमें अगर आपका नियर स्क्रीन्स देखने का काम, लाइक फोन वगैरह देखने का काम अगर ज्यादा होता है, तो मायोपिया या चश्मे का नंबर बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इसीलिए इसमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उनको छोटे स्क्रीन्स नहीं देने हैं। अगर कुछ पढ़ाई भी करनी है तो वो लैपटॉप या फिर टीवी पे करनी चाहिए, एंड उसमें कंटेंट को हमको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। कोई भी वायलेंट कंटेंट नहीं होना चाहिए, नेगेटिव कंटेंट नहीं होना चाहिए, एंड ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिसे देख के उनको खुशी हो। अब बात करते हैं एडल्ट्स की, जो कि 18 साल से ऊपर होते हैं। एडल्ट्स के लिए कोई स्ट्रिक्ट स्क्रीन टाइम लिमिट नहीं है, बट जनरली 2 से 4 घंटे का स्क्रीन टाइम सेफ माना जाता है। बट जब एडल्ट स्क्रीन यूज कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखें कि जैसे आपको जैसे ऑफिस वर्क करना है या लैपटॉप वर्क करना है तो प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें, प्रॉपर अपना पोस्चर मेंटेन करें, रूम ब्राइटली लिट होना चाहिए जिससे कि आईज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़े, एंड जब भी आप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं ध्यान रखें कि फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करना है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज 20-20-20 रूल, जिससे कि हमारी आईज जो है वो बीच बीच में रिलैक्स होती रहती हैं डिस्टेंस और नियर के लिए, और मसल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ता है। एडल्ट्स के लिए कोई स्क्रीन टाइम लिमिट नहीं होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ऑफिस के बाद 5 से 6 घंटे हम स्क्रीन्स पे बिता रहे हैं, क्योंकि डिजिटल बैलेंस और डिजिटल डिटॉक्स तो हर एज के लिए जरूरी होता है।
1: दोस्तों, स्क्रीन के उस पार क्या है, अच्छाई या बुराई, सवाल शायद ये नहीं है। सवाल ये है कि स्क्रीन हमारी जिंदगी को चला रही है या हम स्क्रीन को चला रहे हैं, क्योंकि आज पढ़ाई भी स्क्रीन पर है, काम भी स्क्रीन पर है, मनोरंजन भी स्क्रीन पर है। इसलिए समाधान स्क्रीन छोड़ना नहीं बल्कि स्क्रीन को समझना है। हर उम्र की जरूरत अलग है, हर व्यक्ति का काम अलग है। किसी के लिए 2 घंटे ज्यादा हो सकते हैं तो किसी के लिए 8 घंटे भी जरूर।

0: लेकिन इतना तय है कि अगर स्क्रीन के उस पार की दुनिया में खोते खोते हम अपने आसपास की दुनिया को भूल जाएं, तो नुकसान शुरू हो जाता है। इसलिए अगली बार जब आप मोबाइल अनलॉक करें तो बस एक सवाल खुद से पूछिएगा, स्क्रीन को हम देख रहे हैं या स्क्रीन हमें देख रही है। सोचिए और निकालिए अपनी स्क्रीन का समाधान और भरिए अपनी नई उड़ान।
1: तो दोस्तों, कार्यक्रम में अब समय है आपको विकास समाचार और अवसरों के बारे में जानकारी देने का। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से नई औद्योगिक परियोजनाओं पर काम जारी है। सरकार ने होटल, अस्पताल और औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि और सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया है। इससे आने वाले समय में प्रदेश में रोजगार सृजन की गति और तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। बस्ती जिले में पर्यटन विकास परियोजनाओं को गति मिली है। कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के विकास कामों के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इससे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और होटल, परिवहन तथा छोटे व्यापार से जुड़े लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत लाखों युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम जारी है। हाल ही में जारी बजट दस्तावेजों के अनुसार प्रदेश में अब तक 9 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जा चुका है। प्रदेश में जून महीने के अंत तक विभिन्न जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 30 जून तक 13 बड़े रोजगार मेले लगाए जाएंगे, जिनमें 6,000 से अधिक पदों पर भर्ती की संभावना है। युवाओं से ऑनलाइन पंजीकरण कराने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने के लिए सरकार की पहल लगातार तेज हो रही है। महाराजगंज जिले में ODOP योजना के अंतर्गत करीब 250 युवाओं को फर्नीचर निर्माण का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। तो ये थे आज के विकास समाचार और अवसर। आइए कार्यक्रम में अब सुन लेते हैं एक और गीत, और गीत के उस पार आपसे मिलते हैं।

दोस्तों आपके सुझाव हमारे कार्यक्रम को और बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए हमारा पता और पत्र के माध्यम से आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। हमारा पता है नई उड़ान द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ। हमारा पिन है 226001। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली मुलाकात तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।

0: अभी आप हमारा कार्यक्रम नई उड़ान सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
2: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
1: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर और 2400 घंटे DTH और आपके मोबाइल पर। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
6: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 आकाशवाणी लखनऊ पर।

0: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए
1: फिल्मी दुनिया का एक बेहद चमकीला स्टार
0: विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में मीडियम वेव पर शॉर्ट वेव पर एफएम पर विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: घर आंगन माहे बाहर कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। शाम के 6:20 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

अभी आप आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत एजबेस्टन बर्मिंघम में भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जा रहे टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में

0: प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
5: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
6: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
5: बिल हो रहा है।
6: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
7: RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहाँ हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
9: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान, आगरा में लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के कई जिलों में जनप्रतिनिधियों ने किया संवाद। बाराबंकी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कल से शुरू होंगी वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। लखनऊ से सुबह 7:05 पर रवाना होकर 8:05 पर नोएडा पहुंचेगी पहली फ्लाइट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सुपोषण मिशन दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की नई पहचान बनी है और नई तकनीकों को अपनाकर उत्तर प्रदेश अब इमारू राज्य की जगह देश का ग्रोथ इंजन बन गया है।
10: यूपी की एक नई पहचान बनी है, कहीं भी आप चले जाइए गौरव के साथ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आज अपनी इस पहचान के साथ जाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का देश का सबसे अच्छा नेटवर्क है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, मेट्रो बन रही है, प्रदेश में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बन रही है, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही है, और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने का कार्य भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
9: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की। श्री योगी ने सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ समय से उन्हें पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए, और विवरण हमारे प्रतिनिधि से।
11: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों के PWD के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान श्री योगी ने संबंधित अधिकारियों से दोनों मंडलों में संचालित पुराने और निर्माण

0: अधीन परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सड़क निर्माण के कार्यों में तेजी लाने और सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अंदर पूरा किए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने देवरिया में निर्माणाधीन मोहन सेतु के कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली और अधिकारियों को कार्यस्थल का मुआयना कर सेतु निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री योगी ने अधिकारियों पर जोर दिया कि वे जन प्रतिनिधियों से मिले प्रस्तावों के आधार पर प्राथमिकता तय कर सड़कों का काम जल्द शुरू कराएं ताकि आम नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिल सके। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप की 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप का शौर्य, त्याग और उनका संघर्ष भुलाया नहीं जा सकता। श्री सिंह ने कहा कि देश में आज हमारे जवानों को खुली आज़ादी है कि वे आतंकवाद का सीमा पार करके भी सफाया कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश को नक्सलवाद से पूरी तरह से छुटकारा मिला है और पिछले 12 सालों में विश्व स्तर पर भारत की पहचान बदली है।
2: आज भारत ने दुनिया के दूसरे देशों के साथ अपने जितने अच्छे रिश्ते बना लिए हैं, सारी दुनिया आज हमको सम्मान की नजरों से देखती है। आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 के बाद से दुनिया के 38 देशों के साथ व्यापार करने का समझौता भारत ने किया है। इसके पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही है। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है। डिफेंस फैक्ट्रियां अब इधर भी लगेंगी, लखनऊ से लगनी शुरू हो गई है, चित्रकूट में लगी, कहीं न कहीं कोई न कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की लगती चली जाएगी। अभी तो यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है मेरे बहन भाइयों, समय की प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में संवाद कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस क्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज बाराबंकी में मीडिया से बातचीत कर पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री पाठक ने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जनकल्याण को शासन को मूल आधार बनाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी वर्गों के कल्याण के साथ साथ किसानों को मुख्यधारा में लाने का काम किया है। अम्बेडकर नगर में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से युवाओं, किसानों और महिलाओं को बड़ा लाभ मिला है। आगरा में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की मौजूदगी में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों की यात्रा ने देश की तस्वीर ही नहीं, तकदीर भी बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं कल से शुरू हो रही हैं। पहली उड़ान सुबह 7:05 पर लखनऊ से रवाना होकर 8:05 पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। इसके बाद नोएडा से बेंगलुरु के लिए पहली नियमित वाणिज्यिक उड़ान संचालित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला यह एयरपोर्ट भविष्य

0: में 22.5 करोड़ यात्रियों का वैश्विक हब बनेगा। अंतिम चरण में 5 रनवे होंगे जो इसे विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल करेगा। पश्चिम यूपी, दिल्ली, NCR और आसपास के राज्यों के लिए यह नया एविएशन गेटवे बनेगा। इंडिगो चरणबद्ध तरीके से लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़, अमृतसर समेत 16 से अधिक शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगी। इसी के साथ अन्य उड़ान कंपनियां उड़ान भरेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया था। इस हवाई अड्डे की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 नवंबर 2021 को रखी गई थी। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
1: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नीपेन मिश्र ने आज अयोध्या में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि श्री राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले में सरकार ने SIT का गठन किया है। श्री मिश्र ने कहा कि जांच समिति की संस्तुतियों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
2: राज्य सरकार जब इस गति से निर्णय ले रही है, 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट, 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट और जो भी कमेटी की संस्तुति होगी उसका कार्यान्वयन होगा।
1: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के 13 विषयों की प्रारंभिक परीक्षा 2025 का अशांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के 67 जिलों में बनाए गए 891 परीक्षा केंद्रों पर ये भर्ती परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे की पाली में कराई गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान। आगरा में लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। केंद्र में NDA सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के कई जिलों में जनप्रतिनिधियों ने किया संवाद। बाराबंकी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कल से शुरू होंगी वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। लखनऊ से सुबह 7:05 पर रवाना होकर 8:05 पर नोएडा पहुंचेगी पहली फ्लाइट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: Hey guys,
4: hi, congratulations.
3: आज तो पार्टी चाहिए।
5: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
6: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
3: पिज्जा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
6: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
3: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
6: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण, मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर। ICC वोमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत एजबेस्टन बर्मिंघम में भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनवाने के लिए आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं।

0: अभी आप आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत एजबेस्टन बर्मिंघम में भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जा रहे टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को

0: ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
0: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
1: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
3: The world seeks trusted and reliable partners.
4: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
3: And a scale that few can match.
1: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
5: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर

0: तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
3: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
2: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
4: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
5: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
2: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाश

वाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ।

0: नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग। This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defence, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noël Barrot and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolos. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders, and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors, including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, clean energy, and others. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: Highlighting the strength of India-France ties, Mr. Modi said, while many nations engage in trade and strategic cooperation, only a few relationships are guided by a shared vision as well as common interests.
2: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
1: Addressing the gathering, French President Macron praised India's emergence as a global innovation powerhouse and said the question today is no longer whether India is innovating, but who will innovate with India.
3: a country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and research, knowledge and training as many engineers as Europe and the US combined, more than 1 million per year. So

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खसूसी आलमी जाम शराकत दारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की। दोनों लीडरों ने पैरिस डेस एक्सपोजिशो में भारत इन्वेस्ट का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक खाई में एक गाड़ी के गिरने से 8 यात्री हलाक हो गए। ओमान साहिल के करीब एक जहाज से इंजन खराब होने के बाद अमले के तमाम 14 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। और क्रिकेट में बर्मिंघम में आईसीसी खवातीन के T20 आलमी कप के ग्रुप मरहले के मैच में भारत ने पाकिस्तान के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। फरीकैन के दरमियान तबादले ख्याल में दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा, टेक्नोलॉजी और तिजारत समेत कलीदी शोबों में खसूसी आलमी जाम शराकत दारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और सीनियर हुक्काम मौजूद थे। सदर मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और खारिजी उमूर के वजीर जीन नोएल बैरोट और दिगर सीनियर हुक्काम थे। दोनों लीडरों ने विला केरलोस में वॉक एंड टॉक इजलास के दौरान भी बातचीत की। इससे कबल दिन में वज़ीर आज़म मोदी और फ्रांस के सदर मैक्रों ने नीस में पहले देश एक्सप्रेसियो में भारत इन्वेस्ट्स तकरीब का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। तीन रोज़ा ये अहम तरीन तकरीब भारतीय डीपटेक स्टार्टअप्स, इख्तराकार, मुहक्किकीन और सरमायाकारों को आलमी इख्तराई फंड्स और फुटप्रिंट के साथ यकजा करेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत इन्वेस्ट्स भारत के टैलेंट और यूरोपीय कैपिटल के दरमियान एक पुल के तौर पर उभर रही है, जो नौजवान इख्तराकारों को आलमी महारत के साथ मुंसलिक होने के नए मौके वज़ा कर रही है। भारत के स्टार्टअप इनकलाब को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवान आलमी चैलेंजों के लिए उन शोबों में हल तैयार कर रहे हैं जो मसनूई जहानत और खलाई टेक्नोलॉजी से लेकर माहौल साजगार तवानाई, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और दिफाई इख्तरा तक का अहाता करते हैं। उन्होंने वाजे किया कि आज भारत में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं और ये इंसानियत के लिए टेक्नोलॉजी के उसूल के जरिए इंसान मरकूज जिद्दतकारी की क्यादत के मॉडल को फरोग दे रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत फ्रांस ताल्लुकात की तकवीयत को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि जब बहुत से मुल्क तिजारत और जाम तआवुन में मसरूफ हैं, ऐसे में चंद मुल्कों के ताल्लुकात को ही मुश्तरका विज़न के साथ साथ एक जैसे मफादात की रहनुमाई हासिल है। उन्होंने भारत फ्रांस शराकत दारी को एक ऐसी

0: इंडिया दूर दराज के इलाकों और हाशिया पर रह रहे लोगों की जिंदगियों में माविन साबित हो रहा है। गुज़श्ता 12 बरसों में एनडीए हुकूमत ने शहरियों के मेयारे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम किए हैं, जिसमें आवामी सहूलियात और आसान तर्ज जिंदगी सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत की शक्ल अख्तियार कर चुका है। यह हुकूमत के रहनुमा उसूलों पर कारबंद रहने के अज़्म की अक्कासी करता है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज बताया कि भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 8 से 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 40 से 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि ये पेशरफ्त पॉलिसी असलाहत बढ़ती हुई निजी शराकत दारी और तेजी के साथ तोसी पाते हुए अख्तराई इको निज़ाम के बायस है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत के खलाई शोबे की कायापलट तब्दीली मुल्क भर में होने वाली वसीतर तब्दीली की अक्कासी करती है, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज से बाहर निकलकर कौमी शऊर का एक हिस्सा बन गई हैं। उन्होंने कहा कि हालिया वर्षों की इंतहाई नुमाया कामयाबियों में से एक साइंस और माशरे के दरमियान बढ़ता हुआ राबता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजीर मौसूफ ने कहा कि अवामी मुबाइसे में साइंस और टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई अहमियत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस विजन की अक्कासी करती है, जिसके तहत उन्होंने साइंस पर मबनी इकदाम को मुसलसल कौमी धारे में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ओशन मिशन और गगनयान जैसे प्रोग्रामों ने साइंस और इख्तरा को भारत की तरक्की के सफर के मरकज में लाने में अहम रोल अदा किया है। चंद्रयान 3 जैसे मिशन ने खलाई साइंस को वसीतर अवामी दिलचस्पी का मौजू बना दिया है, जिसके नतीजे में मुल्क भर के शहरियों में गैर मामूली बेदारी और दिलचस्पी पैदा हुई है। खला, जौहरी तवानाई और जदीद टेक्नोलॉजी जैसे अहम शोबों में भारत की बढ़ती हुई सलाहियतों ने आलमी सतह पर मुल्क की पोजीशन को मजबूत किया है। इन हसूलियाबियों से पैदा होने वाले एतमाद ने मकामी टेक्नोलॉजी की साख्त में इजाफा किया है और भारत को एक काबिल एतमाद टेक्नोलॉजी के शराकत दार के तौर पर मुस्तहकम किया है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले में आज दोपहर पेश आए एक हादसे में बच्चों समेत 8 अकीदतमंदों की उस वक्त मौत हो गई जब उन्हें ले जाने वाली एक पिकअप गाड़ी सड़क के किनारे खाई में गिर गई। ये हादसा मलाशिरस तालुका में महासवण पंढरपुर पर वाक़े तुंदलवाड़ी के करीब पेश आया। अकीदतमंदों का ताल्लुक पंढरपुर तालुका के रजनी गांव से है और ये सब सिद्धनाथ मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद वापस आ रहे थे। जख्मियों को इलाज के लिए पंढरपुर मुंतकिल किया गया है। इस दौरान महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है। इसके साथ उन्होंने महलूकीन के लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख रुपये माली मदद का ऐलान किया है। ओमान में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि भारतीय परचम परदार तिजारती जहाज विराट 1 के तमाम 14 भारतीय अमले के अफराद को बचा लिया गया है। इस जहाज के इंजन में ओमान के साहिल के करीब खराबी हो गई। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में सिफारतखाने ने कहा कि अमले के अफराद महफूज हैं और सेहतमंद हैं। उन्हें दूसरे जहाज MV जबले अली 9 पर पहुंचा दिया गया है। सिफारतखाने ने मजीद कहा कि अमले के अफराद मुंबई के लिए रवाना किए जा रहे हैं। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सफारतखाने ने आज कहा कि भारतीय बाशिंदे निशांत उधनम के से मुतल्लिक ओमान के मकामी हुक्काम, बंदरगाह के हुक्काम और जहाजरानी कंपनियों के साथ फाल तौर पर ताउन कर रहा है। क्रिकेट में खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के इफ्तिताही मैच में बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक पाकिस्तान ने 5 ओवर्स में एक गेंद में एक विकेट पर 40 रन बना लिए थे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका के ह्यूस्टन में ग्रुप ई के मैच में जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच आज रात 10:30 बजे खेला जाएगा। डलास में ग्रुप एफ एक के मैच में दूसरा मुकाबला नीदरलैंड्स और जापान के दरमियान होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 1:30 पर खेला जाएगा। ईरान ने कहा है कि उसने मुजवजा मुफाहमत नामे से मुतल्लिक अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया है, जिसका मकसद अमरीका और इसराइल के दरमियान कशीदगी को खत्म करना है। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल

0: स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महसवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France today after holding extensive discussions with French President.

0: साक्षात्कार कर रहे हैं गौरव श्रीवास्तव।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो हमने देखा है कि बीते एक दशक में, या यूं कहें कि जब से मोदी सरकार आई है, बीते 12 वर्षों में लगातार इसमें प्रगति देखने को मिल रही है। और ये प्रगति इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो अलग अलग तरीके से इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए और लगातार जो इस पर फोकस किया गया, उससे आज जो क्रांति आई है वो बदलते दौर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। इन तमाम अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इसके अलावा स्पेस सेक्टर हो, इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब कुछ इतना बड़ा हुआ है बीते 12 वर्षों में, अभी हाल में कहां पे है और किस तरह से जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो क्या कुछ कहता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद।
1: पहला सवाल सर यही है, 12 साल और उसके बाद जो लगातार इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत बड़ी गति मिलती हुई नजर आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कैसे इस सफर को देखते हैं और क्या बड़ा होने वाला है जिससे भविष्य और ज्यादा बेहतर भारत का नजर आता है?
2: जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, जहां तक विज्ञान को लेकर के अगर हम बात करें या साइंस टेक्नोलॉजी की, तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ
1: जी।
2: उसका प्रमुख बिंदु एक तो ये था कि इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता हासिल हुई। पहले साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित विषयों को बहुत ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं मिलती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि लेने लगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, ये समझते हुए कि अगर आज की दुनिया में हमें इससे आगे बढ़ना है तो हम साइलोज में नहीं चल सकते
1: जी।
2: और तीसरा, विज्ञान में जहां ईज ऑफ रिसर्च वो तो लाजिम अनिवार्य है, उसके साथ साथ अंततः उसका लक्ष्य है ईज ऑफ लिविंग फॉर अ सिटीजन, तो उसको सिटीजन सेंट्रिक भी बनाया गया
1: जी।
2: हमारे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव गत 12 वर्षों में ऐसे रहे हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक नागरिक के साथ है या नागरिक के जीवन के साथ है, और जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया, जो पहले विज्ञान संबंधी समाचारों को या गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता था, उसमें भी जिस तरह से हमारा स्पेस की अचीवमेंट्स हुई, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्पेस हैज गिवन अस स्पेस इन मेन स्ट्रीम मीडिया, चंद्रयान के माध्यम से। अरोमा में जब लेवेंडर आया, अभी हाल ही में दो या तीन दिन का कैंप था मुंबई
1: जी,
2: में
1: जी।
2: तो हमारे युवा लगभग 30, 40 या 50 लाख का लेवेंडर तेल फरोख्त करके आए हैं, तो एक नया एवेन्यू रोजगार का आ गया। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं क्वांटम की, तो मीडिया का भी उससे ताल्लुक है
1: जी,
2: डिफेंस का भी ताल्लुक है, और इसलिए सबको रुचि भी आई। हमने अपने लिए 8 साल का टारगेट रखा था, उसमें से आधा हिस्सा जो हमें 4 साल तक तवक्को थी कि हम पूरा कर लेंगे, वो 3 साल में ही मुकम्मल हो गया। तो अनेकों ऐसे अब स्काई कास्ट जो भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके माध्यम से जब कोहरे का मौसम होता है तो बहुत दिक्कत आती है फ्लाइट्स में
1: जी,
2: पायलट को भी दिक्कत आती है, यात्रियों को भी असुविधा होती है, तो उसमें बहुत सारी बेहतरी हो कि इस प्रकार से फॉग की प्रेडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज हो टाइमिंग। तो ये चूंकि नागरिकों के साथ संबंधित ये विषय है, इसी प्रकार चाहे आप हमारा गवर्नेंस का ले लीजिए, तो हमारा सीपी ग्राम मॉडल है जिसको हमने एआई चैटबॉट के साथ जोड़ दिया, अभी 2 ही दिन पहले की बात है, तो उससे भी आम नागरिक, जहां एक जमाने में 2014 से पहले कुल मिलाकर के हमारे यहाँ सरकार में 2 लाख शिकायतें आती थी पूरे हिंदुस्तान में साल भर में, आज वही संख्या बढ़कर के 25-30 लाख हो गई, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ी, क्योंकि वी वर प्रॉम्प्ट, वी वर रिस्पॉन्सिव, वी आर फॉलोइंग टाइमलाइन। हमारे 95-97% जहां पुराने जमाने में 2-2.5 महीने लगते थे अगर जवाब आए, जवाब कई बार आता ही नहीं था, वहां हमने ये सुनिश्चित किया कि हर ग्रीवेंस का जवाब भी आएगा, एआई ड्रिवन भी होगा और कोई ह्यूमन बात भी करेगा उससे, और उसकी टाइमलाइन घटा करके 12-13 दिन कर दी गई और बहुत जल्दी 1 हफ्ता हो जाएगी।
1: बिल्कुल सर, इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो भी हमें हाल ही में देखा कि बहुत बड़ा कीर्तिमान और उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आया, कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि होमी बाबा ने इसकी नींव बहुत पहले रखी थी कि इसको अलग अलग फेजेस में किया जाएगा, पहला दूसरा फेज और उसके बाद तीसरे की ओर आगे बढ़ना, थोरियम क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है। ये मात्राएं किस तरह से दिखाती हैं कि भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है?
2: बहुत अच्छी बात कही, बल्कि मैंने उस दिन जिस दिन हमारा ये टारगेट अचीव हुआ तो मैंने ये कहा था कि होमी बाबा ने जो स्वप्न देखा था उसकी पूर्ति मोदी जी के हाथों से हुई है, द विंडिकेशन ऑफ होमी बाबाज ड्रीम हैज हैपेंड थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अगर आप जरा गंभीरता से गहराई से सोचे तो समझ में आएगा कि होमी बाबा कितने दूरअंदेश व्यक्ति थे, हिंदुस्तान की परिस्थितियों को समझते हुए,
1: बिल्कुल
2: हमारे साधनों की लिमिटेशंस को समझते हुए उन्होंने हमें एक 3-स्टेज प्रोग्राम दिया, जो 3 स्टेजेस उन्होंने दी थी उसमें धीरे धीरे प्रगति हो, उस तरह से कैसे उन्होंने तय किया कि पहले स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। हैवी वाटर होता है थोड़ा सा अलग किस्म का, जैसे आम पानी को आप H2O कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये होता है D2O, ब्यूट्रोस ऑक्साइड, लेकिन उसमें लाभ ये रह,

0: ताकि उसमें आम यूरेनियम इस्तेमाल होता है जो आपको पहाड़ों से या कोस्टल एरिया से मिलता है, उसमें कुछ एनरिचमेंट नहीं करनी ट्रीटमेंट, तो उसको इस्तेमाल से वो यूरेनियम 239 इस तरह से,
1: उसकी मात्रा भी सर कम है,
0: मात्रा भी कम है, और उसका जो स्पेंट फ्यूल निकलता है प्लूटोनियम, तो होमी बाबा का ये तस्वुर था, ये कल्पना थी कि जब हम उसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेंगे तो उस प्लूटोनियम जो वहां का स्पेंट फ्यूल निकलेगा उसी को हम दूसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। कैसे? उसको यूरेनियम 239 के साथ जोड़ के जो थोड़ा सा एनरिच्ड है
1: जी।
0: तो एनरिच्ड यूरेनियम को जब हम प्लूटोनियम के साथ जोड़ेंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है
1: जी,
0: तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी इजाद होगी, और साथ ही साथ उसी रिएक्टर के बैग में हम थोरियम रख देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा कि सबसे अधिक स्टोर दुनिया का हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द थोरियम इज फाउंड इन इंडिया, और मेनोजाइट हमारा मिनरल उसका एक हिस्सा है। तो उस थोरियम को जब हम बैग में रखेंगे तो जब वो रिएक्टर का दोनों यूरेनियम और प्लूटोनियम अपना काम कर रहे होंगे एज मिक्स फ्यूल, तो प्लूटोनियम से जो उसमें से कुछ एक न्यूट्रॉन्स निकलेंगे पॉजिटिव न्यूट्रॉन, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा थोरियम एज ए रिजल्ट ऑफ सम सर्टेन केमिकल सीक्वल ऑफ रिएक्शंस, और इसको एक अलग किस्म के फ्यूल में कन्वर्ट करेगा जो होगा यूरेनियम 233, जो एनरिच्ड नहीं है लेकिन है वो ईंधन ही, फ्यूल ही है। और इस तरह से थोरियम से प्राप्त हुआ, थोरियम से पैदा किया गया यूरेनियम हमें मिलेगा, जो हम तीसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे, और जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि ये थोरियम तो हमारे घर में मौजूद है। तो इस तरह से किया था, और ये जो आपने कहा अप्रैल मास में हम दूसरी स्टेज पर पहुंच गए, यहाँ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इजाद किया गया, और इसकी धूम सारी दुनिया में है। साथ ही साथ चूंकि शांति एक्ट भी आया, वो भी प्रधानमंत्री जी के ही हस्तक्षेप से हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जरूरत बात होती है कि न्यूक्लियर सेक्टर को खोल देना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और किसी ने इसकी
1: प्राइवेट सेक्टर के लिए जब खोला गया, न्यूक्लियर का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और खोला गया, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं उन लोगों के लिए जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं?
0: बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया पूछा। पहली बात तो ये है कि एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय था, बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर के लिए खोला है
1: जी।
0: तो इसके लिए भी जैसे मैंने कहा, इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज, पॉलिटिकल कन्विक्शन, वो मोदी जी के कारण संभव हुआ। अब जब खुल गया तो कई लोग जो शायद सिनिसिज्म की वजह से कहते हैं या आलोचना की दृष्टि से कहते हैं कि साहब अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के लिए खोला गया, ऐसा नहीं है, बल्कि जो हमने शांति एक्ट लाया है उसमें अलग अलग स्लैब्स रखी हैं। अगर आप 1000 मेगावाट का लगाना चाहे तो आपकी स्लैब कम है, बड़ा लगाना चाहे ज्यादा 100 मेगावाट का लगाएं। अब तो स्मॉल रिएक्टर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हैं, दूसरे स्मॉल रिएक्टर्स जो 200 मेगावाट से भी कम कैपेसिटी के होते, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा इकोसिस्टम बनाया गया है पिछले 12 साल में, जिसको आप कंबाइन करके कुछ एक लोग अगर युवा मिल जाएं, एक ग्रुप बनाए स्टार्टअप का एंड देन मैच्योर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, तो जैसे हमारा RDI फंड भी है, 50% सरकार की ओर से मिलता है बहुत कम इंटरेस्ट पर, तो आप एक छोटा रिएक्टर भी लगा सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि शांति एक्ट के आने के बाद और प्राइवेट सेक्टर खोलने के बाद, बड़े हाउसेस तो अलग बात है, लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं स्टार्टअप्स के, एंटरप्रेन्योर्स के, उनके लिए भी लाइवलीहुड रोजगार का एक नया साधन और बड़ा ल्यूक्रेटिव साधन होगा, और आने वाले जमाने में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये युग है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का होना लाजिम रहेगा ही रहेगा।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और, एक बड़ी उपलब्धि जो लगातार हम देख रहे हैं कि आपके नेतृत्व में भी आगे बढ़ती हुई नजर आई है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके नेटवर्क को लेकर। कहां तो 8 साल का एक रोड मैप तैयार किया गया था 2000 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर 2 साल के अंदर अंदर पूरा हो गया, क्या चैलेंजेस इसके पीछे और कैसी उपलब्धि इतनी जल्दी हासिल की गई?
0: क्वांटम मिशन हमने लॉन्च किया था सन 2023 में, और 8 साल के लिए एक प्लान बनाया था। उस समय भी मैंने ये कहा था कि क्वांटम मिशन की लॉन्चिंग मात्र फिजिकल लॉन्चिंग नहीं है, इसमें एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज भी गया है, वो ये कि हम उन चंद एक 4-5 देशों में हैं जिनका क्वांटम मिशन है। यानी वो जमाना जाता रहा, एक दुनिया भर में ये पैगाम गया कि वो जमाना जाता रहा जब कोई इनिशिएटिव कोई और देश लेता था और फिर 10-15 बरस के बाद हम उसका अनुसरण करते, चाहे वो टेलीविजन था, चाहे वो इंटरनेट था, चाहे वो मोबाइल थे, जो अमरीका में 1950 के दशक में, यहाँ पे 1970 के दशक में पहुंचे या सीखे, अब हम बराबर चल रहे हैं। तो क्वांटम में, और फिर हमने जब 8 साल का टारगेट बनाया, क्योंकि उसके 4 verticals हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मटेरियल्स, तो उसके लिए 8 साल के अलग अलग टारगेट्स बनाए गए। और जैसे आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण रहता है कम्युनिकेशन, क्योंकि एनक्रिप्टेड सिक्योर, हालांकि अभी भी आपके व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है, लेकिन वहां ऐसा होगा कि वो संभव ही नहीं होगा उसको अनक्रिप्ट करना। डिफेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। उसमें हमने टारगेट रखा था कि हम 2000 किलोमीटर तक क्षमता विकसित करेंगे 8 वर्षों में क्वांटम कम्युनिकेशन।

0: करने की, लेकिन उसमें से आधी जो 1,000 है हमने 2 या 3 सालों में कर ली
1: जी,
0: यानी हम 8 साल का टारगेट हो सकता है 8 साल से पहले ही कर ले और हम उससे आगे बढ़ जाए।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और आता है कि जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, क्योंकि हमने तमाम क्षेत्रों को देखा कि किस तरह से उनमें प्रगति नजर आई, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम उम्मीद प्रोग्राम की बात करते हैं, किस तरह से ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा किफायती होगा, उनको सुविधा पहुंचाता हुआ नजर आएगा जो जेनेटिक डिजीजेस से कहीं ना कहीं 2-4 हो रहे हैं और कई बार टेस्ट भी कराते हैं लेकिन पता नहीं चलता, क्या है सर ये उम्मीद प्रोग्राम और कैसे लोगों को फायदा मिलेगा?
0: ये बात करने से पहले मैं ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये इसलिए संभव हुआ कि वहां पर भी अभी कोई 2-3 साल पहले हमने बायो E3 पॉलिसी लाई, उसमें भी हमारी पहल है। बहुत चंद एक देशों में जिनकी एक डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है, बायो E3, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और वो भी तभी संभव हुआ जब प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी के आगे रखी गई तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी ये समझाया कि आज शायद इसका महत्व ना समझ आए लेकिन कल हम किसी देश से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, जेनेटिक ड्रिवन होगी, रीसाइक्लिंग होगा, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का होगा, यानी इकोनॉमी का शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से हट करके सर्कुलर की तरफ चला जाएगा, जेनेटिक्स की जाएगा। और उसमें भी हमने पहल कर ली है और हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ पर जीन्स को ले तो बड़ी डाइवर्सिटी है
1: जी।
0: हमने उसमें भी सीक्वेंसिंग 10,000 देशवासियों की करने में हम अभी तक सफल हो चुके हैं, हमारा इनिशियल टारगेट है अबाउट 1 मिलियन। इसी प्रकार रेयर डिजीजेस, वो जेनेटिक डिजीजेस जो पैदाइश से होती हैं, कभी कभी उनके सिम्टम्स हो सकता है पैदाइश के समय या जन्म के समय जाहिर ना हो, थोड़ा आगे चल करके हो, क्योंकि इन बीमारियों की संख्या बहुत कम हो रहती है, बहुत कम, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया है, चाहे वो नी वेन पिक डिजीज है, इस तरह के, इसलिए इसको प्राथमिकता भी कम मिलती थी, इसलिए इसके डायग्नोसिस की सुविधाएं भी दुर्लभ थी, इसलिए इसकी दवाई भी बहुत महंगी थी। लेकिन कोई छूट ना जाए कोई भी नागरिक हमारे शोध से, हमारी सेवाओं से, तो इसलिए ये उम्मीद का कार्यक्रम शुरू किया जिसके तहत लगभग अभी भी 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ पहुंचा है
1: जी।
0: और उसमें हम अलग अलग चरणों में उसमें जो रेयर जेनेटिक डिजीज हैं उनमें किस तरह से सहयोग दिया जा सके मरीज को, डायग्नोसिस कैसा हो, अर्ली डिटेक्शन हो, उसके बाद टेस्ट की क्या फैसिलिटी रहे, औषधियों की क्या रहे, उसको लेकर के
1: जी।
0: और इसी तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप देखें तो बायो E3 पॉलिसी के ही तहत हिंदुस्तान का सबसे पहला एंटीबायोटिक भी हमने याद किया है। अभी तक जितने एंटीबायोटिक थे, जब पहला एंटीबायोटिक आया था सन 1948 के लगभग, पेंसिलिन, उस समय पाउडर का था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसका पाउडर थोड़ा इस्तेमाल किया गया था वुंड्स पे, तो वहां से पता चला कि सभी इन्फेक्शन के लिए फायदेमंद रहता है। उसके बाद इसके इंजेक्शन बने, बाद में टेबलेट बनी, तो उसको इस समय क्वीन ऑफ ड्रग्स कहा जा रहा था। लेकिन तब से लेकर के जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हुई है, चाहे वो पेंसिलिन के बाद क्लोरोफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेटा, वो सारी बाहर से सॉल्ट आते हैं। पहली बार हमने यहाँ ट्रायल किया, यहाँ सॉल्ट ट्रायल किया और प्राइवेट पार्टनर के साथ उसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं।
1: सर अब बात करेंगे स्पेस की, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा काम हुआ है, गगनयान मिशन पर सबसे ज्यादा नजर है, क्या तैयारियां उसको लेकर, और बीते दिनों में जो हमने देखा चाहे चंद्रयान मिशन हो या इसके अलावा अलग अलग जो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं उसमें कितनी प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है जो गगनयान मिशन को बहुत सक्सेसफुल बनाएगी?
0: मुझे लगता है कि स्पेस सेक्टर में सबसे पहला क्रांतिकारी मोड़, जैसे एटॉमिक को लेकर के आपने शांति की बात की, वो था 5 बरस पहले, जबकि जैसे मीडिया ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर, पहली बार स्पेस को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि विज्ञान, शोध, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कमर्शियलाइजेशन तभी संभव है कि आप प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन से ही साथ लेके चले।
1: सर ये इससे भी कनेक्टेड है जो प्राइवेट रॉकेट्स भी लोग जो बना रहे हैं अलग-अलग कंपनी।
0: निश्चय, अब देखिए आज से 5 साल पहले हमारा स्पेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी, आज हमारी स्पेस इकोनॉमी लगभग $9 बिलियन और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि आंकलन ये लगाया जाता है, हमारी जो प्रोजेक्शंस इंडिकेट करती हैं कि अगले 8-10 सालों में हम 5-6 गुना बढ़ करके $40-45 बिलियन हो जाएंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि स्पेस इकोनॉमी विल बी एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एज वी मूव टूवर्ड्स 2047। और हमारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 400 से बढ़ गए, और एक हाल ही में शुरू हुआ स्टार्टअप हमारा यूनिकॉर्न भी हो गया पिछले ही कुछ दिन पहले। अब प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट्स भी बनाए जा रहे हैं, लॉन्चिंग्स भी हो रही हैं, और वो इसलिए संभव हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर का सहयोग पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो रहा है और दोनों एक समन्वय बना करके कोलैबोरेटेड अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और आने वाले समय में हिंदुस्तान की ये भी खासियत है, हमारे रॉकेट्स तो जा ही रहे हैं, रॉकेट से खबर हमारी बड़ी ज्यादा बनती है, जैसे चंद्रयान के लेकर के, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग साइट, लेकिन हिंदुस्तान की ये विशेषता है कि हमने स्पेस सेक्टर को जितना स्पेस मिशन के लिए इस्तेमाल किया है

0: से अधिक नागरिक जीवन में सुविधा लाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग, उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सुझाव पर गति शक्ति शुरू किया
1: जी।
0: गति शक्ति इज अ ग्लोबल मॉडल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी टाइमलाइंस को निर्धारित तरीके से संभालने में, उसकी जो बाधाएं हैं, तो ये गति शक्ति इज अ स्टोरी। हमारा लैंड फार्म्स को लेकर के जो कार्यक्रम है, ड्रोन्स और स्पेस को लेकर के, उसमें भी हमारा स्पेस का ही काम आ रहा है। हमारे मीडिया और टेलीविजन चैनल्स तो हैं ही हैं, तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा स्पेस सेक्टर इज वर्चुअली इन एवरी हाउस होल्ड, एवरी इंडियन हाउस होल्ड टूडे। और वॉरफेयर आपने देख ही लिया ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें दो ही विभाग थे मुख्य तौर पर, एक स्पेस सेक्टर और दूसरा न्यूक्लियर सेक्टर। तो ये सारा वॉरफेयर, उससे हमारी क्षमताएं, और आज ये स्थिति है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हम ना केवल इंडिजिनस बना रहे हैं बल्कि इंडिजिनस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा डिफेंस सेक्टर अधिकतर इम्पोर्ट्स पर डिपेंड करता था 2014 से पहले, 2025 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ से अधिक है और हमारा एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 23,000 करोड़ दूसरे देशों के। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम में जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है, और बहुत सारे है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स यूरोपियन देशों में, फ्रांस इत्यादि में जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे स्टार्टअप्स में, हम जब शुरू हुए तो 350-400 थे, आज हम तीसरे दर्जे पहुंच गए लगभग 2,26,000 से अधिक
1: जी।
0: और उनके माध्यम से जो जॉब्स जनरेट हुए उनकी संख्या लगभग 24 लाख है। इसी प्रकार हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम नंबर ऑलमोस्ट 90-80 थे, अभी हम करके 38 आ गए। पेटेंट्स में हम नंबर 6 है दुनिया में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसमें से 55% ऐसे हैं जो रिजाइडिंग इंडियन है, बाहर जाके शोध करते थे। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने यहीं शोध किया, यहीं पले बले और यहीं से उन्होंने पेटेंट फाइल किए, और यही कारण है कि आज विश्व हमें निगाह उठाकर देखता है, बड़ी तवक्को के साथ देखता है कि अब वो नहीं रहा कि वी आर नॉट देयर टू बी लेड, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस टू लीड। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा भी माइंडसेट बदला है और दुनिया का नजरिया बदला हमारे प्रति।
1: भारत टेक्नोलॉजी क्योंकि क्रिएटर बन रहा है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं, और तमाम क्षेत्र, चाहे हम क्वांटम की बात करें वो भी, और इसके अलावा रक्षा की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से जो नई गति है वो देते हुए नजर आ रही है, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो?
0: नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसा टूल है
1: जी,
0: जो अभी इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी, ये तो इस्तेमाल में होगा ही, चाहे कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, लेकिन वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने जो कई ऐसे प्रयोग किए हैं जहाँ हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित हुए, यानी जैसे हमारा सीपी ग्राम्स है, ग्रीवेंस रिट्रेसल, उसमें हम एआई के द्वारा चैटबॉट भी रखा है, एआई के द्वारा डिस्पोजल भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के बाद शिकायतकर्ता से बातचीत वार्तालाप एक व्यक्ति करता है, उससे उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। इसी तरह से हमने टेलीमेडिसिन में भी कुछ प्रयोग किए हैं जहां हम एक फिजिकल डॉक्टर बिठाते हैं साथ में एआई डॉक्टर। एआई का लाभ ये है कि अगर आप चिकित्सा जगत को ले लें, या जीन्स की बात कर रहे थे, तो इतने सारे जीन्स को स्क्रीन करने में हमें कई दशक लग जाएंगे, यहाँ मिनटों में बात हो जाती है। ईज ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज, उसका हमने इस्तेमाल किया है। एग्रीकल्चर के लिए अलग बनाए हैं, मौसम विभाग के लिए अलग मॉडल्स बनाए हैं, वो भी चूंकि मौसम विभाग भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हमने अब नव कास्ट का रखा है। नव कास्ट यानी आप घड़ी देख के 3 घंटे का प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपने कहीं मीटिंग पे जाना कि छतरी लेके जाएं कि ना जाएं, और हमने शुरू उसको किया जो ज्यादा रेन प्रोन एरियाज थे, जैसे मुंबई है, चेन्नई है। इसी प्रकार अब नव कास्ट के ही तर्ज पर स्काई कास्ट शुरू किया, जो फॉग डिटेक्शन कर सकता है, जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए। तो हर क्षेत्र में इस तरह से टारगेट्स रखे गए कि हम दुनिया के दूसरे देशों की बराबरी कर सके। और इस वक्त अगर दुनिया में हिंदुस्तान की साख बड़ी है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की टेक्नोलॉजी इनोवेशन में तरक्की का है।
1: सर, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से किस तरह से आप इसको देखते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से क्या कदम उसकी ओर बढ़ाए जा रहे हैं?
0: ग्रीन हाइड्रोजन में भी हमारा मिशन है, इस सरकार ने 2023 में हमने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, उसमें भी हमारे 4 अलग अलग है, AI कंप्यूटिंग, AI डेटा, AI इनोवेशन सेंटर्स, AI फ्यूचर स्किलिंग, और इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन भी लगभग उसी समय में लॉन्च हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन में हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। हमने बजट में भी जो घोषणा की गई थी कि हमारे 5 स्मॉल रिएक्टर्स होंगे
1: जी,
0: तो स्मॉल और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टिल 2033, उनमें से हमारे 3 पर काम शुरू हो चुका है, 3 में से 1 है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन में हमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उसको स्केल अप करने में, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह जो हमारे हैं उनका शायद अभी कैपेसिटी कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम स्केल अप करेंगे तो उसकी कीमत भी घटेगी और उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, और ये सारा एक पूल बनेगा, हाइड्रोजन सोर्स, न्यूक्लियर सोर्स, रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल में भी विंड सोर्स, सोलर सोर्स के हम

0: नए नए एरियाज तलाश कर रहे हैं। जैसे हमने ओशन, क्योंकि डीप ओशन मिशन भी इसी सरकार ने शुरू किया, वहां पर एक और कंपोनेंट हमने ओशन एनर्जी का रखा है, यानी समुद्र के पानी के ऊपर, समुद्र के तट के ऊपर आप अगर सोलर शीट्स बिछा दे तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी, समुद्र में चलती हुई तेज हवाओं का आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी एनर्जी, समुद्र में जब नदी जाकर के तेज रफ्तार से जुड़ती है तो उसके बीच जो फ्रिक्शन पैदा होती है उससे भी एनर्जी, समुद्र में जब टाइड आता है तो खतरे का बायस तो ही है लेकिन साथ में जैसे कहते हैं कि एवरी एडवर्सिटी इज अकंपनीड विद अ वर्चू, उससे भी बिजली याद होती है। तो समुद्र से भी अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जीज, और मुझे लगता है कि सन 2047 जो हमने कहा वहां 100 गीगावाट तो न्यूक्लियर एनर्जी होगी, जो लगभग 10-15% पूरे हमारी जरूरत का हिस्सा बनेगी, लगभग 60-70% हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होगी।
1: बिल्कुल सर, हमें कोई फाइनल मैसेज 12 साल और उसके बाद जो लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम हुआ है उसको लेकर दर्शकों तक?
0: मुझे लगता है कि 12 साल और इसके आगे हम कैसे जाएंगे, 2047 का हम लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे, अक्सर चर्चा की जाती है लेकिन इसको साइंटिफिक ढंग से नहीं सोचा जाता
1: जी।
0: वो उन सेक्टर से जो पहले ना तलाशेंगे ना तराशेंगे, इधर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड, जैसे हमारा ओशन है। भारत एक ऐसा देश है जिसका 11-12 हजार लंबा समुद्री तट है, 12-13 प्रदेश इसके तट पर बसते हैं, उसके अंदर संपत्ति ही संपत्ति है, माइंस, मिनरल, किसी ने नहीं देखा, अगर हम उसको तराश सके। हमारा दूसरा सरमाया हिमालयास, आज वहां से लेवेंडर निकल रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन आया है, फ्लोरिकल्चर जो प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में हुआ तो उसमें जो ऑफरिंग की गई थी उसमें ट्यूलिप हमारे पालमपुर के इंस्टीट्यूट से आया, तो फ्लोरिकल्चर। तो ये जो सेक्टर्स थे जो पहले पूरी तरह स्पेस सेक्टर जिनको पूरी तरह से एक्सप्लॉयड नहीं किया गया था, अगर हम इनको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है हमें 2047 से पहले ही उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2047 का शताब्दी वर्ष मना सकें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े इसमें और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये भारत के बढ़ते हुए कदम है जो लगातार और ज्यादा सशक्त होते हुए नजर आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, और जो नई नई तकनीकी जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, बात चाहे क्वांटम एनर्जी को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, इसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख रहे हैं उसमें हो, तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि किस तरह से भारत और ज्यादा प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही वो तस्वीर है जो भारत को और ज्यादा सशक्त करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे गौरव श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: We now bring you an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer is Anil Padmanabhan, journalist.
4: On 26th May 2014, the National Democratic Alliance, led by Prime Minister Narendra Modi, took the oath of office. It marked the beginning of a new political chapter in India. What followed over the next 12 years was not just a change in government, but an attempt to reshape the Indian state, economy and society at a staggering scale. Bharat Reloaded, a special series to mark the 12th anniversary of the NDA, will look back at these momentous years through conversations with policymakers, economists, entrepreneurs and investors. It will take stock of a decade that sought to reimagine India. I am your host, Anil Padmanabhan. Much of the conversation around development focuses on policies, budgets and reforms. But the real test of governance is the ability of institutions to deliver outcomes at scale. This, in turn, shines the light on state capacity. In the last 12 years, India has banked 50 crore people, conducted seamless vaccination of 100 crore people to combat the COVID-19 pandemic, and lifted more than 30 crore people out of abject poverty. Has India then cracked the code on execution? Developed the administrative capacity it lacked? To answer all this and more, we have with us today Ashish Dhawan. As founder and CEO of the Convergence Foundation, Ashish is someone who has spent years working at the intersection of philanthropy, public policy, institution building, and helping develop state capacity, and hence a perfect person for this conversation. Ashish, thank you so much for speaking.
5: Thank you for having me.
4: Ashish, I wanted to begin with your work, which is basically at the intersection of philanthropy, public policy, institution building, and strengthening state capacity. Based on this experience, has India finally begun to crack the code on execution, or what you often say, acquire the trans-